सुमधुरभाषि

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये केंद्र है। शख्स वर्ष 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि तदनुसार 17-26 इस समय हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम सौ 7 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:05 हुई है।

किसी कला से कर सुसुप्त शिशु की सामान्य हंसी।

sacas Hasan.

होती है। खुशी विवादों और झगड़ों ताकि हंसी का उजला पक्ष से बचाया जा सके। या सामान्य खुशी चाहिए

দুঃখী থাকে হারে লোক, भरपूर मनोरंजन किया जाता है, प्राप्त करते हैं। प्रदर्शन की भूमि हुआ है।

0: हंसी खुशी से भर जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, हम आकाशवाणी प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जो सुनवाने जा रहे हैं मुकेश की आवाज में भक्ति गीत, रविंद्र जैन की संगीत है रविंद्र जैन का।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारत

0: विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। ग्रीस की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये द्वीप 1875 सात नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल द्वीप है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये द्वीप बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादन किया था, बंगला दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818 में। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने द्वीप का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहला सुर दिया जदु भट्टो ने। सुर मीन इस द्वीप का धुन बनाया जदु भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये द्वीप आया था और उसी दिन से या उसी टाइम से द्वीप का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये द्वीप। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए मिशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्तों ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस द्वीप का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्रेशन हुआ इस द्वीप में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नवलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli Jela mein Gopalchandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram Gheet Desh Mallar Dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein Gheet ka parikalpana Murshidabad Jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai Swadesh ko aage karane ke liye. ये द्वीप हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये द्वीप 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका द्वीप का प्रसार हुआ। उसके बाद ये द्वीप हमारा नेशनल द्वीप हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रतिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

साहब की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: इस गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ट्रांसमिट हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा। विषय है बकरियों में नस्ल संवर्धन क्यों जरूरी है। वार्ताकार हैं डॉक्टर रामनाथ बंजारी, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न पशु चिकित्सालय खरसिया।
1: किसान

कार्बनिक पदार्थ देते जेकर केंद्रले संपर्क बकरियों के नस्ल सुधार के लिए जो मुख्य बातें हैं होना चाहिए उसमें जो चाहिए जिससे क्या है कि वो बकरी का 50% और बकरा का 50% में उसका जो क्योंकि 3 साल के बाद जेनेटिक डिजीज उसको बदलना पड़ता है और मतलब उसका अनुवांशिक गुण अच्छा होना चाहिए डोनेट कर सके 15 महीना से लेकर के आना चाहिए उस से बहुत सारी समस्या आने लग जाएंगी। जितने दिन तक उसको बच्चा देना चाहिए नहीं दे पाते हैं, कमजोर होना चालू हो जाते हैं और जो अच्छा क्रॉस ब्रीड बच्चे हैं उनको हमको बढ़िया से रख रखाव के साथ रखना चाहिए, उसका प्रबंधन करना चाहिए। जो ही बकरा है या फिर बीटल का बकरा है इसका उपयोग कर सकते हैं और वो 2 बार बच्चा देती है तो कोशिश ये करना चाहिए कि जैसे बर्बरी है ब्लैक बंगाल है ये लगभग 1 बार में 2 बच्चा देने का तो 2 बच्चा होगा वो बढ़वार की श्रेणी में आएगा, उससे हमको ज्यादा फायदा होगा। इन सब बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पीरियड 19 दिन में रिपीट होता है और

जाता है जिसमें यीशु ने शांत रहेगी भीड़ से। हम उस लक्षण रखते हुए हम उसको बकर से चाहिए और जो बंदी कराने हैं, बंधियाकरण कराना बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए हमको। हमको अपनी देसी बकरियों का उद्धार करना है जिससे हमको अच्छा प्रोटीन मिलेगा और वही प्रोटीन के लिए उसको एक

0: अहुए लगा
1: हरी खाद ल अपनाव धरती दाई के स्वास्थ्य ल बचाव।
0: ज्यादा जानकारी बर अपन नजदीकी कृषि कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर में संपर्क कराओ।
2: अभी थे कृषि चर्चा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर अब आपको जानकारी दे दी आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद 6:40 पर सुनेगा रामचरितमानस, 6:50 पर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी का अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जाएगा 7:10 से। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 7:30 पर। विश्व रक्तचाप दिवस पर विशेष भेंट वार्ता, उच्च रक्तचाप को कैसे नियंत्रित करें, 7:50 पर। समय होगा 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा 9:00 से। सुबह संगीत 10:10 पर। फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा 10 पर। प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा 11:00।

0: श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मरगोट का प्रसारण होगा शाम 5 बजे कराएंगे 5:10 पर, शाम 5:30 पर। साथ ही शाम 7 बजे बात का विषय है पोषक तत्वों का महत्व। आज का मंडी भाव, आज का मौसम, साथ ही 10:00 बजे मगर 10:30 पर अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम 107.7

श्री रामचरित मानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं, उनके सामने बार बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है।

भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो तुलसी जैसे अज्ञानी सेवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु सौ सौ बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहां राम के रूप में परम ब्रह्म और कहां पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर। परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।

से ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी आप सुन रहे थे मानस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर चबक कर 50 मिनट हुए। प्रस्तुत है देश का

अभी आप सुन रहे थे रही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। पञ्चदेशानां यात्रायाः द्वितीये दिने ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागम् अकरोत्। अत्र सामुदायिक सम्पर्कः डच राजपरिवारेण सह मेलनं च अन्यतमे आस्ताम्। हेगनगरे भारतीय समुदायं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रवर्तमानं दशकम् आपद्दशकत्वेन वर्णितवान्, यद्धि बहुविधैः संकटैः ग्रस्तमस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशो वैश्विक समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं विश्वस्तायाः पारदर्शिन्याः च भविष्यापूर्ति व्यवस्थायाः निर्माणार्थं सम्भूय कार्यरतौ स्तः। सः अवदत् यत् विश्वं सर्वादौ कोविड 19 महामारीं तदनन्तरं च युद्धं सम्मुखीकृतवत्। साम्प्रतम् एतत् ऊर्जा संकट समं विकट समाह्वानं सम्मुखीकरोति। सः समाहितम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या यदि निराकरणं न भवति चेत् वैश्विक विकासलाभः प्रबाधितः भविष्यति, जनसंख्यायाः विशालः भागः च निर्धनताग्रस्तः भविष्यति। आर्थिकस्थितिव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विकान् प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशो संयुक्तरूपेण सुदृढा पूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणाय कटिबद्धौ स्तः। ध्यानास्पदमस्ति यत् एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बन्धेभ्यः अधिका महत्वपूर्णा वर्तत। नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री अद्य स्वयात्रायाः तृतीय चरणे स्वीडन देशस्य यात्रां करिष्यति। सः अद्य गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्नोति। स्वीडन देशस्य एकदिवसीय यात्रा नवदिल्ली स्टॉकहोमयोः वर्धमान पारस्परिक सम्बन्धेषु ऐतिहासिकः पदक्रमः अस्ति। श्रीमोदी स्वीडन समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धपरकं सम्भाषणं करिष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा नवम कक्षायाः छात्रेभ्यः भाषात्रयस्य अध्ययनं जुलाई मासस्य प्रथमदिवसात् अनिवार्यं कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-अधिक-2000-तमाब्दीयायाः राष्ट्रिय शिक्षानीतेः 23-अधिक-2000-तमाब्दीयस्य राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु तिसृषु भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीय मूलकं भवेत्। भारतीयर्थविभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहाय पश्चिम बंगाले हिमालयस्य अधोवर्ती क्षेत्रेभ्यः सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारंगवारणकी संचेतना प्रसारिता। केरलम् माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यन्तरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वंद्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 39 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं धर्मशालायां, अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और जेनेल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो जीफे और नूरुजद्दीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम रही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। भेंट हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब थोड़ी ही देर बाद 7:10 पर सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी, जिसका अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जाएगा। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 7:30 पर। 7:50 पर आप सुन सकेंगे विश्व रक्तचाप दिवस पर विशेष भेंट वार्ता, उच्च रक्तचाप को कैसे नियंत्रित करें। बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा का समय होगा 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा 9:00।

0: से सुगम संगीत का समय होगा 10:10 पर। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा सुबह 11 बजे से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ
1: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का समय होगा शाम 5 बजे। बजट समय आप सुन सकेंगे 5:10 पर। चित्र पर संगीत का आनंद लीजिएगा 5:30 पर। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण किया जाएगा शाम 6:05 पर। शाम 6:20 पर, साथ ही शाम 7 बजे अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जाएगा 6:30 से। किसान समय होगा शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व। आज का टिप कृषक प्रश्न मंच, भाव, आज का मौसम लेकर आएंगे 8:20 पर। फिल्म संगीत का पालन ले सकेंगे 8:30 पर, साथ ही रात्रि 10 बजे 10:30 पर वाले का

megahertz, but की वाणी आप प्रसारण अब रद्द किया जाएगा।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। और श्रोताओं, अब समय है हमारे विशेष कार्यक्रम का। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी। इसमें सुनिए आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री समीर शुक्ला से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुत करता है दीपक खटवार।

0: Sánchez. रहे हैं इस तारीख को जब भारत में रेडियो प्रसारण को ऑल इंडिया रेडियो का नाम मिला। बीते सालों में इस नाम के साथ कई काम जुड़े उपलब्धियों के, कई नाम जुड़े कीर्तिमानों के, आकाशवाणी को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचाने वालों ने अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन की आवाज को आवाम तक पहुंचाया। जिनकी सृजन यात्रा को यादगार बनाया उन्हें प्राप्त पुरस्कारों ने। देश की वाणी आकाशवाणी में आप मिलने जा रहे हैं आकाशवाणी की सृजन यात्रा के एक ऐसे ही पथिक से। आप हैं आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री समीर शुक्ल। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आपका भी धन्यवाद जो आपने याद किया।
0: समीर जी, अगर हम रेडियो से आपके जुड़ाव की बात करें तो आकाशवाणी में आपके आगमन के पूर्व आपके जीवन में रेडियो का आगमन किस तरह से हुआ?
1: बात बहुत पुरानी है, संभवतः 1972 और वो बरसात के दिन, और हमारे पिताजी एक छोटा सा रेडियो खरीद के घर आए, शाम को 7:30 बजा होगा, और जैसे ही उन्होंने रेडियो चालू किया उससे पहली आवाज जो निकल कर आई, आज भी वो गीत मेरे कानों में गूंजता है, वो गीत था डुआ डुआ पानी कोकई काटा।
0: क्या बात,
1: गंगाबाई गेडाम जी का गाया हुआ ये गीत, और बस वहां से एक लंबी यात्रा शुरू हुई सुनने की, और बस रेडियो से एक चुपके से जैसे उम्र का साथ हो जाता है।
0: 1972 में जैसे कि आपने बताया कि आपकी उम्र बहुत कम थी, तो उसके बाद जब आपने होश संभाला तो एक उम्र ये भी होती है ना कि अपने के लिए हम किसी राह के बारे में सोचते हैं, तो क्या आपने उस वक्त ही ये सोच लिया था कि आपको करियर के लिए आकाशवाणी को ही चुनना है?
1: आकस्मिक ये सब घटनाएं दीपक, रोजी रोटी की तलाश, और इस संदर्भ में यहां से उत्तर प्रदेश लखनऊ होते हुए दिल्ली होते हुए मैं मुंबई पहुंच गया, और एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवा की होती है, जो शायद सबसे बड़ी थी उस समय, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन हम छोटी जगह से गए थे तो बंबई की चका जो आकर्षित करती थी, और आपको याद होगा कि उस समय दूरदर्शन का नया नया चलन चला हुआ था, और खासकर एशियाड के बाद जो दिल्ली का एशियाड हुआ था, तो उसमें जो विज्ञापन आते थे मुझे बड़ा आकर्षित करते थे, तो मुझे लगता था कौन बनाता होगा ये विज्ञापन। और उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में ट्रेनिंग के दौरान हम शाम को फाइल लेके निकल जाया करते थे, अचानक मेरी निगाह उस बड़े से बोर्ड पर पड़ी जिस पर उस कंपनी का नाम लिखा हुआ था, और मैं बरबस अंदर चला गया, और वहां जाकर मैंने बड़ी मासूमियत से कहा कि मैं भी आपकी कंपनी से जुड़ना चाहता हूं। तो पहले तो वहां बैठी जो महिला अधिकारी थी उन्होंने ध्यान से देख के एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे कहा, कितनी उम्र है तुम्हारी? तो मैंने कहा 21 साल। तो बोले, अगर आपको विज्ञापन एजेंसी से जुड़ना है तो आपको 3 चीजें आनी चाहिए, पहली आपकी भाषा, एक मातृभाषा, एक राष्ट्रीय भाषा, और तीसरा अंतरराष्ट्रीय भाषा, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। दूसरा, आपको भावनात्मक पक्ष किसी भी वस्तु का जो होता है उसके बारे में सोच आपकी होनी चाहिए, और तीसरी ये कि आपको ऑडियो मीडियम का अनुभव होना चाहिए। तो मैंने पूछा ऑडियो मीडियम क्या होता है, उन्होंने कहा रेडियो। तो मैंने कहा रेडियो क्यों, टेलीविजन क्यों नहीं? तो बोले इसलिए क्योंकि रेडियो में आप कोई चीज दिखा नहीं सकते, हर चीज आपको ध्वनि प्रभाव और आवाज से प्रस्तुत करना होगा, ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। बस उस सूत्र को लेकर मैं वापस आ गया, और ये कहा जाए कि किस्मत ने वापस रायपुर में जब लाया, तो चूंकि मैंने मार्केटिंग की ट्रेनिंग की हुई थी तो मुझे एक अंतरराष्ट्रीय कुरियर कंपनी की मार्केटिंग का मौका मिला। तो उसमें होता यह था कि जो भी वस्तु आती थी कहीं डिलीवर करने के लिए, तो हमारे कुरियर बॉय ना जाके, मार्केटिंग के लिए मैं जाया करता था कि इसको डिलीवर भी कर दूंगा और मार्केटिंग भी करूंगा। उस बीच श्री लक्ष्मण चोपड़ा के नाम से एक पैकेट आया, जो आकाशवाणी रायपुर में काम करते थे उनके नाम से उनको डिलीवर करना था। जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने यहां का माहौल देखा, बचपन की वो सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई मेरी इच्छा जागृत हो गई, एक तरफ लक्ष्मण चोपड़ा जी और एक तरफ बैठे थे कमल शर्मा जो मेरे पहले गुरु रहे, बस उनसे मेल जोल का सिलसिला चला और धीरे धीरे उनकी प्रेरणा मैं परीक्षा देकर उसमें सफल हुआ, यहाँ पर आकाशवाणी मेरी पदस्थापना हो गई।
0: ये किस सन की बात थी जब आप आकाशवाणी में पदस्थ हुए?
1: ये 1991 की बात है जी।
0: समीर जी, 1991 आकाशवाणी रायपुर से एक प्रशासी के पद पर आपकी नियुक्ति हुई
1: जी,
0: और उसके बाद एक सफर जो चल पड़ा तो फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इस सफर में केवल आकाशवाणी रायपुर ही शामिल रहा या अन्य केंद्र भी रहे?
1: दीपक, आकाशवाणी रायपुर से मैंने शुरुआत की, उसके बाद यहाँ करीब 7-8 साल रहने के बाद 1997 में मेरी पदस्थापना या कहे स्थानांतरण बिलासपुर के लिए हुआ। बिलासपुर एक छोटा स्टेशन था, FM स्टेशन था, वहां भी अपनी चुनौतियां थी, सीखने लायक बहुत सारी चीजें थी। फिर 2 साल बाद मैं यहाँ वापस आ गया, लेकिन उसके बाद 2005 में फिर मेरा स्थानांतरण अंबिकापुर के लिए हुआ और ये स्थानांतरण लगभग 4-4.5 साल तक मैं वहां रहा और उसके बाद वापस आकर यहीं पर रायपुर में फिर अपने ये कहा जाए कि अपने करियर के आखिरी जो वर्ष थे मैंने बिताया और यहीं से सेवानिवृत्त हुआ।
0: स्टेशनों में रहते हुए समीर जी, आपके पास अनुभवों का एक बहुत बड़ा खजाना एकत्रित हुआ है और उस खजाने में बहुत सारी उपलब्धियां भी जुड़ी हुई हैं, चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। अगर हम आपके जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण काम की बात करें तो किन किन कार्यों को याद करना चाहेंगे?
1: दीपक, सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि यहाँ रायपुर में 1991 में पदस्थापना के 1 साल के अंदर अंदर मेरे परम श्रद्धे जो प्रथम गुरु रेडियो के रहे कमल शर्मा, उनका स्थानांतरण वेद भारती हो गया और 1 साल के अंदर अंदर उनके स्थान पर मुझे युववाणी का प्रभार सौंप दिया गया। मैं बहुत घबरा गया कि जिस ऊंचाई पर कमल शर्मा जी ने युववाणी को पहुंचाया है, अगर मैं उसको मेंटेन भी कर लूं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैंने प्रयास किया और उसमें कहां तक सफल हुआ यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कि उस जमाने में रीना शर्मा नाम की एक कॉम्पियर हुआ करती थी, बड़ी प्रतिभाशाली, उन्होंने युववाणी से मेरी विदाई हुई संजय पांडे के आने के बाद, तो उन्होंने उस जगह कहा था कि समीर कम नहीं थी और उसको मानता हूं। चुनौती बड़ी बहुत सी आई, लेकिन मुख्य रूप से शुरुआती दौर में जो चुनौतियां आती हैं वो सपनों चुनौती थी। एक
0: सभी के निर्माण तक जुड़े रहे हैं, अगर हम कार्यक्रमों के निर्माण की बात करें या प्रतिभागिता की बात करें तो वे कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको याद आते हैं?
1: कार्यक्रमों के निर्माण से जुड़ने की जहां तक बात है तो सबसे पहले मुझे वो तमाम बड़े बड़े महान प्रसारक याद आते हैं जिनकी मदद से या जिनके मार्गदर्शन में मैंने कार्यक्रम निर्माण सीखा। और मैं बड़ी श्रद्धा से नाम लेना चाहता हूँ श्री किशन गंगेले जी का, श्री लाल राम कुमार सिंह जी का, श्री मिर्जा मसूद जी का। ये तीनों आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जैसे किशन गंगेले जी, इनको प्यार से हम दादा कहा करते थे। सबसे पहले नाटक का पहला बीज मेरे अंदर उन्होंने रोपित किया और उसको पल्लवित पुष्पित किया श्री लाल राम कुमार सिंह ने, और डायरेक्शन और इन सब चीजों की पहली जो पाठशाला थी वो मिर्जा भाई से सीखने को मिला। उसके अलावा प्रसारण से संबंधित जो छोटी मोटी बारीकियां होती थी, जो चुनौतियां होती थी, उसमें अगर मैं श्रद्धा से और एक दो नाम लेना चाहूं तो उसमें श्रीमती कल्पना यादव का नाम याद आता है, श्रीमती सुषमा गांगुली का नाम याद आता है कि कर्तव्यस्थ कक्ष में काम करते हुए इन लोगों का सानिध्य बड़ा मिला, बहुत स्नेह प्राप्त हुआ और बस इन्हीं सब भावनाओं के साथ और इन सब का निचोड़ अंत में जो शुरू से आखिर तक मेरे साथ एक हमकदम बन के रहा, मार्गदर्शक के रूप में, बड़े भाई के रूप में, और चुनौतीपूर्ण समय में किस तरह से अपने नजरिए के साथ कार्यक्रम को कैसे प्रस्तुत किया जाए, तो परम श्रद्धे मेरे कमल भैया, कमल शर्मा जी का। एक तो छोटी छोटी चीजें हैं दीपक,

0: जो मुझे याद आती हैं, मीटिंग में स्टेशन डायरेक्टर महोदय हुआ करते थे श्री कुलकर्णी जी। कुलकर्णी साहब ने कहा एक कोई शेर पकड़े हैं यहाँ पर, वो नंदन वन में रखे हैं, वो बहुत चोटिल हो गए हैं। तो कमल भाई ने कहा सर एक इंटरव्यू कर लेते हैं शेर का। तो उन्होंने बड़े सीरियसली कहा ठीक है कमल आज आप इंटरव्यू करिए, शाम को मैं सुनूंगा। मैं सुन के घबरा गया, मैं तो सीखने के लिए उन्हीं के साथ रहता था। दीपक आप विश्वास नहीं करेंगे, वो उस जगह पे पहुंचे, मैं भी उनके साथ था वहां पर। अब चूंकि वो चोटिल था शेर, तो वो अलग अलग तरीके से दहाड़ता था, कभी बिल्ली की तरह मिमियाता था, अलग अलग तरीके से उसकी दहाड़ कमल शर्मा जी ने करीब 2 घंटे बड़ी पेशेंस के साथ रिकॉर्ड किया। फिर उसको जो शिकारी पकड़ के लाया था उससे छोटा सा एक इंटरव्यू किया, छोटे छोटे सवाल। अब उन्होंने जो बताया था और शेर की दहाड़, इन दोनों को मिला के उन्होंने एक क्वेश्चनेयर बनाया, प्रश्नावली बनाई, और उस दहाड़ को वो जो शिकारी थे उनकी कही गई बातों के साथ मिलाकर उन्होंने एक पूरा का पूरा एक ऐसा कार्यक्रम 10 मिनट का बनाया जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे शेर से वो बात कर रहे हैं। और उसकी टाइटल थी एक साक्षात्कार वनराज से।
1: क्या बात।
0: एक छोटा सा उदाहरण उसमें प्रश्न का बताता हूं। अच्छा आप तो हैं इस बड़े से जंगल के राजा, तो जब बाहरी कोई आदमी आता है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाहरी आदमी आपके घर में आकर उसमें पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको कैसा लगता है? तो शेर उस समय जो गुस्से से दहाड़ता है वो आवाज उन्होंने मिस की। अच्छा ये आपको ये रहते हुए चोट कैसे लग गई? ये तो बहुत दर्द होता होगा इसमें। तो बिल्कुल बिल्ली की तरह मिमियाने वाली आवाज उसमें मिक्स की। इस तरह से पूरा का पूरा इंटरव्यू और शाम को सुना गया।
1: क्या बात,
0: पसंद किया
1: क्या
0: गया। इस तरह से हम लोगों ने सीखना आरंभ किया था।
1: समीर जी जिन कार्यक्रमों को आपने एक अलग सोच के साथ बनाया, लीक से हटकर बनाया, विषय भी बिल्कुल लीक से हटकर थे, और उन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर के आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार भी मिले, अब हम चाहेंगे कि उन कार्यक्रमों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: वार्षिक पुरस्कार आकाशवाणी का जो होता है वो बहुत ही ये कहा जाए कि प्रेस्टिजियस एक अवार्ड होता है। पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग स्टेशन 300-350 स्टेशन से कार्यक्रम वहां पहुंचते हैं और अलग अलग श्रेणियों में उनको पुरस्कृत किया जाता है। आम लीक से हट के अलग कुछ ऐसी सोच अगर आपकी है तभी आप उसमें दखल दे सकते हैं, अपना स्थान बना सकते हैं। और इसका बीज सबसे पहले मेरे अंदर बोया, मैं श्रद्धा से नाम लेना चाहूंगा, श्री चंद्रमणि बेसेकर जी का, जो युवाणी में रहते हुए मेरे कार्यक्रम अधिशासी हुआ करते थे और वो बहुत अच्छे पेंटर थे। तो ये कहा जाता है दीपक कि रचनात्मकता किसी को सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन आप मेरा विश्वास करिए कि रचनात्मकता के बीज उन्होंने मेरे अंदर बोए और उनके मार्गदर्शन में या उनके नेतृत्व में पहला पुरस्कार हम लोगों को 1992 में मिला था
1: जी।
0: और वो था नूपुर क्रंदन करके, नृत्य पेशा महिलाओं के ऊपर एक रूपक था और वो चीज अंदर दबी छुपी थी हमारे। बाद में तो इस दिशा में काम करते हुए करीब 5 या 6 और पुरस्कार मैंने प्राप्त किया राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें सबसे ज्यादा संतोष मुझे मिला वो था कि इनोवेटिव कैटेगरी एक होती है, अभिनव श्रेणी बिल्कुल अलग, और नवाचारी श्रेणी कहा जा सकता है जिसको, उसमें आपको रूपक बना के भेजना था। तो मैंने एक रूपक बनाया था जिसका टाइटल था मैं कुछ नहीं करती। घर में काम करने वाली जो हमारी माताएं बहनें और गृहणियां होती हैं वो लोग संभवतः दुनिया का सबसे महान कार्य करती रहती हैं, लेकिन जैसे ही उनसे पूछो कि आप क्या करती हैं तो बहुत ही मासूमियत से वो कहेंगी मैं कुछ नहीं करती। और बस इसी विषय पर इसी बिंदु पर केंद्रित वो कार्यक्रम था, उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला था।
1: क्या बात।
0: और उसके बाद फिर एक नाटक पानी की कमी पर, पानी की कमी से आज से मतलब ये कहा जाए कि 50-60 साल बाद पानी नहीं होगा तब कैसे होगा, तो उस पर एक नाटक था उसको पुरस्कार मिला। उसके बाद एक महिलाओं का समूह था जो नशा मुक्ति अभियान, और उस पर एक मतलब रायपुर के एक सबब इलाके में नारंगी गैंग के नाम से एक कार्यक्रम बनाया गया था उसको पुरस्कार मिला था। उसके बाद दामिनी एक कार्यक्रम था युवाणी कैटेगरी में। दामिनी एक ऐसी बच्ची है जिसके बचपन से दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन अपनी जिद और कुछ करने की ललक के साथ वो बच्ची आगे बढ़ रही थी और उसने एक मकाम हासिल किया अपने जीवन में, तो उसके जीवन पर केंद्रित यह कार्यक्रम था। और इसमें सबसे मजेदार बात दीपक ये थी कि जो लेखक थे वो मुझे समय नहीं दे पा रहे थे इस रूपक को लिखने के लिए, तो मैंने कहा चलो चुनौती स्वीकार किया जाए, एक नया नवाचारी तरीका इसमें अपनाया जाए, हम इस कार्यक्रम को बिना आलेख के बनाएंगे। और वास्तव में बिना आलेख के उस कार्यक्रम को हमने बनाया और संभवतः वही चीज राष्ट्रीय स्तर पर वहां पर जो सुनने वाले थे उनको अपील की और उसको भी पुरस्कार मिला। उसके बाद आखिरी पुरस्कार हम लोगों ने चौपाल या जो ग्रामीण कार्यक्रम होता है उसमें मोरसन के नाम से बनाया था, जो पद्मश्री फुलबासन देवी जी जो है हमारी, उनके जीवन पर और कृतित्व पर केंद्रित था और उसको भी पुरस्कार मिला था।
1: आकाशवाणी में लंबे समय तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समर्पित रहे। जब समीर शुक्ल आकाशवाणी के कैंपस से बाहर जाते हैं, अपने परिवार के बीच, समाज के बीच, तो लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपके साथ रही हैं, किस तरह का नजरिया रहा है, क्योंकि आप व्यक्ति रहे हैं।
0: ये कहा जाए कि ये आवाज का माध्यम है, और जैसा मेरे पुराने बड़े वरिष्ठ रहे हैं जिन्होंने मुझे रेडियो में और आवाज की दुनिया में काम करने की प्रेरणा दी और सिखाया, वो हमेशा ये कहते थे कि बेटा यहाँ पर कुछ दिखता नहीं है, हर चीज आपको आवाज से, संगीत से और उस पदचाप से प्रस्तुत करनी है कि उसके दिमाग में एक ध्वनि चित्र बने। ये रचनात्मकता जो है आपको भीड़ में सामान्य तरीके से बात करने वालों से अलग करती है। मैं किसी दुकान में जाऊं, किसी शादी समारोह में जाऊं, किसी संस्था में जाऊं, मेरे बोलने के ढंग से एक ना एक सवाल अवश्य होता है कि आप थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं, कहां से हैं आप, ये सवाल आता है। और उस समय इस महान संस्था को मैं प्रणाम करता हूं और एक ही चीज कहता हूं दीपक चलते चलते, वो यह है कि बचपन में माँ ने बोलना तो सिखा दिया था, लेकिन बोलने का शऊर इस संस्था ने सिखाया।
1: क्या बात है। तो समीर जी, आकाशवाणी नौकरी के वर्ष पूर्ण होने के बाद जब आपने अलविदा कहा, तो उस वक्त उस दिन बहुत से ख्याल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, कैसा लग रहा था आपको?
0: मुझे ऐसा लगा दीपक कि अलविदा तो अंत है, और अंत किसने देखा, ये जुदाई ही वो मिलन है जो हमने देखा।
1: क्या बात।
0: ये कहा जाए कि एक एक शुरुआत थी, एक नई शुरुआत थी, कि जैसे एक पीढ़ी आती है दूसरी पीढ़ी चली जाती है और एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी की उंगली पकड़ के उसको थोड़े आगे तक चलती है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे जैसे सूर्य अस्ताचलगामी होता है, उसकी लालिमा आकाश में बिखरती है, वो इस बात का सबूत नहीं होती कि थोड़ी देर में एक काली रात आ जाएगी, बल्कि इस बात का प्रमाण होती है कि सूर्य फिर से उगेगा एक नई उम्मीद के साथ, नए बच्चों के साथ। तो वो पीढ़ी जो मेरे साथ, जिस पीढ़ी का अवसान हो रहा था प्रसारण के क्षेत्र में, उस दिन बड़ा संतोष यहां से जाते हुए ये हो रहा था कि मेरे बाद की जो पीढ़ी है वो मजबूत हाथों में प्रसारण की दुनिया मैं शायद सौंप कर जा रहा हूं, और आप भी मेरे बाद आए और मेरा समय समय पर हम लोगों ने हाथ भी एक दूसरे का थामा।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे मजबूत हाथों में प्रसारण को देखकर सुरक्षित और ज्यादा चमकीला और ज्यादा आकर्षक होगा, इस संतोष के साथ मैंने इस संस्था को विदा कहा था।
1: समीर जी, सेवानिवृत्ति के बाद भी एक कार्यक्रम है जिससे आप बिल्कुल लगातार सक्रिय हैं उस कार्यक्रम में, और वो है माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का छत्तीसगढ़ी अनुवाद
0: जी,
1: जो आप कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं।
0: यह स्वाभाविक की बात है कि लंबे समय से वो लगातार अनवरत चल रहा है और आज भी मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ।
1: तो समीर जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से आप यूं ही आते रहें, और आपके चेहरे पर अभी भी जो आभा झलक रही है, जो रौनक दिखाई दे रही है, और सृजन की जो संतुष्टि दिखाई दे रही है, उस संतुष्टि के साथ आप यूं ही स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। इस कार्यक्रम के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए

0: देश की वाणी आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री समीर शुक्ल से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुतकर्ता थे दीपक हटवार।
1: अभी आप सुन रहे थे देश की वाणी आकाशवाणी। था हम मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जिसमें बनवाने जा रहे मनाली चतुर्वेदी की आवाज में भूत फिल्म का ये गीत, जिसे काशी कश्यप ने तथा काशी रिचर्ड ने।

0: में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रतिक्रिया।
1: जय जोहार, मैं राहुल, मैं रायगढ़ का रहने वाला हूं और काफी लंबे समय से आकाशवाणी का पक्का श्रोता रहा हूं। आज हमारा अपना आकाशवाणी 90 साल का हो गया है तो मुझे और मेरे परिवार को बहुत ज्यादा खुशी हुई। सालों रेडियो सिर्फ एक बजने वाली मशीन नहीं है बल्कि हमारे घर परिवार के एक सदस्य के जैसा है जिसकी आवाज के बिना हमारा दिन पूरा नहीं होता। मुझे आकाशवाणी के लगभग सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन किसानवाड़ी मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम है। इसमें खेती किसानी से लेकर के काम की बातें, मौसम का हाल, सही जानकारी ये सब मिलती है तो हमारे किसान भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे खेती के नए तरीकों को समझने में काफी मदद भी मिली है। मुझे अमर लोकगीत सुनना भी बहुत ज्यादा पसंद है। रेडियो पर अपने छत्तीसगढ़ के मीठे लोकगीत बजते हैं, हम अपनी मिट्टी से और गहराई से जुड़ जाते हैं। इसे सुनकर दिन भर की सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। आजकल के मोबाइल, टीवी, इंटरनेट के इस नए जमाने में भी रेडियो सुनने का जो असली मजा और सुकून है वो किसी और चीज में बिल्कुल नहीं है। मैं आकाशवाणी रायगढ़ में काम करने वाले सभी लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यही चाहूंगा कि हमारा और आपका यह प्यारा रिश्ता ऐसा ही हमेशा हमेशा बना रहे।
0: कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे नवराज हंस निकिता गांधी की आवाज में हंस उनका गीत जैसे लिखा है वरुण ग्रोवर ने।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें मुंबई विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भाषा की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तुषार जोशी की आवाज में ब्रह्मास्त्र फिल्म का ये गीत, जिसे भट्टाचार्य ने तर्ज बनाई है प्रीतम ने।

0: एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: संगीत अब संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं 107.7 मेगाहर्ट्ज पर ट्रांसमिट हुए हैं। लीजिए अब सुनिए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर विशेष भेंट वार्ता। विश्व उच्च रक्तचाप को कैसे नियंत्रित करें, डॉक्टर चेतना सनप्पा से भेंट करता प्रियंका श्रीवास्तव की बातचीत।

0: तड़पता है, उस टाउन का प्रेशर है, आते हैं तो दूसरा वाला जो उस टाइम का प्रेशर है। हाँ हाँ
1: जी,
0: तो प्रेशर जो रहता है तो हम जैसे प्रियंका जी पूछे, जैसे हाइपरटेंशन को इसी

ब्लड प्रेशर, उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। बिल्कुल जी, तो वही मोटापा जो है 40 साल, उसके बाद थोड़ा रिस्क रहता और फैमिली क्यों नहीं होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल कुछ लोगों में, जैसे फैमिली में, जैसे डायबिटीज, किडनी का प्रॉब्लम, जैसे नहीं आती है हेरिडिटी से लेकर ब्लड प्रेशर का भी हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, हाइपरटेंशन है कि नहीं है। जी हाँ डेफिनेटली जी, तो जा सकती हैं हम सब करो फिजिकल क्या है नॉर्मल के साथ मिनट ब्रिस्क वॉक करो, नहीं तो एक एक्टिविटीज करना पड़ेगा जो अपने जो भी ज्यादा 5 महीने में

करो, प्राणायाम करो, उनका आपको वुमेन्स डे मनाते हैं, हाइपरटेंशन भी टेंशन मनाना चल इसको मनाना अच्छा आते जी हाइपर इसका टेंशन को हम कंट्रोल बताने से है ना अब जानते हैं

सब आपको जागरूक करो, तो आप जांच करवा लो, जानकार पर्टिकुलरली है तो है ना, माइक्रो वही तो।

0: जी
1: कांडी स्लीप इनफ नो नो इसका मतलब यह है नहीं मानते हैं वैसे है ना 18 मतलब यह है कि सात अपना फिजिशियन से और ऐसा होता है अरे यार मैं अलग लेने में ये

डॉक्टर जब जब ये बुलाते हैं, प्लीज आप। जी जी जी है।

0: पर होंगे।
1: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच

0: व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक है। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: जी लवली, इन खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार।
7: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi

कार्यक्रम बाल सभा में आज स्मृति और आपके लिए लेकर आई हूँ आपका मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। तो तैयार हैं आप सभी? वैसे भी बच्चों गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो आप खेल कूद मौज मस्ती में व्यस्त होंगे। बच्चों ये वो समय होता है जिसे आप अपने परिवार वालों के साथ दोस्तों के साथ गुजार सकते हैं। आप ज्यादातर समय उनके जीवन के अनुभवों को जानने में, आसपास घटने वाली घटनाओं को जानने में, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने में लगाएं। बच्चों इन छुट्टियों का आप सदुपयोग करें, खुशियां बांटें और खुश रहें। रही बात सरसा पार्टी की, तो चलिए आज हम आपको अलग अलग देशों के म्यूजियम यानी संग्रहालयों के बारे में बताते हैं। बच्चों यदि देश की संस्कृति, प्राचीन सभ्यता और इतिहास के बारे में जानना हो तो हमें ये सारी जानकारी मिल जाती है संग्रहालयों से, क्योंकि बच्चों यहाँ संसार की विचित्र अनूठी वस्तुओं को संग्रहित करके रखा जाता है। संग्रहालय या अजायब घर में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। बच्चों ये म्यूजियम कई तरह के होते हैं, साइंस, फिजिक्स, स्पोर्ट्स, कला, साहित्य, इतिहास, टेक्नोलॉजी से संबंधित जिस विषय का संग्रहालय होता है उसी से संबंधित खास वस्तुएं इसमें प्रदर्शित की जाती हैं। बच्चों संग्रहालय को हम म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं और यह अंग्रेजी का शब्द है जो कि ग्रीक भाषा के शब्द माउसिन से बना है। पता है बच्चों म्यूजियम यानी कला की देवियों का मंदिर इसका मतलब होता है। जानते हैं बच्चों संसार का पहला संग्रहालय ईसा से 3 शताब्दी पहले अलेक्जेंड्रिया में बनाया गया था। यहाँ अनुसंधान यानी खोजकर्ताओं को ज्ञान देने वाली संसार की अनेक वस्तुओं का संग्रह किया गया था। यहाँ विद्यार्थी रहते थे और अनुसंधान कार्य किया करते थे। बच्चों इसके बाद ऐसे संग्रहालय बनाए गए जिनमें ज्योतिष विज्ञान और शल्य चिकित्सा से जुड़े यंत्र, जानवरों की खाल, हाथी दांत जैसे बहुत से सामान रखे गए थे। 19वीं शताब्दी में राजाओं को भी संग्रहालय बनाने का शौक हुआ, लेकिन केवल ये राज परिवार के लिए ही होता था, आम जनता के लिए नहीं। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद सन 1793 में पेरिस के लौरोए में एक राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी बच्चों, जो जनता के लिए खुली थी। वहीं सन 1830 में जर्मनी के बर्लिन शहर में बहुत सुंदर आल्टस म्यूजियम बनाया गया था। आज संसार के सभी देशों के बड़े बड़े शहरों में म्यूजियम बन गए हैं। आपको पता है बच्चों आधुनिक ढंग का सबसे पुराना संग्रहालय ऑक्सफोर्ड में है। इसे सन 1689 में बनाया गया था और इसका नाम अश्मोलियन म्यूजियम है। बच्चों हर साल 18 मई को वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया जाता है और इसे मनाने की शुरुआत सन 1977 में संग्रहालयों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए की गई थी। चलिए आज हम आपको भारत में मौजूद कई खास म्यूजियम के बारे में बताते हैं। वैसे तो बहुत सारे म्यूजियम हैं, लेकिन हम कुछ चुनिंदा म्यूजियम के बारे में ही बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं डॉल म्यूजियम के बारे में। बच्चों डॉल म्यूजियम भी कई हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के डॉल म्यूजियम की। इसकी स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने सन 1965 में की थी। बच्चों इसकी शुरुआत में 1000 डॉल से हुई थी, लेकिन आज के समय देशों के करीब 6500 से भी अधिक गुड़ियों का कलेक्शन है। वहीं जयपुर के डॉल म्यूजियम में 40 देशों के करीब 500 से अधिक डॉल्स म्यूजियम है। सन 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ भारत के अलावा कई देशों की डॉल्स रखी हुई है जिसे भारतीय संस्कृति वाली कार्टून कैरेक्टर वाली गुड़िया भी शामिल है। बच्चों भारत का सबसे पुराना और देश में स्थित सबसे बड़ा संग्रहालय है कोलकाता का इंडियन म्यूजियम। इसकी स्थापना हुई थी सन 1814 में। इसे पुराने जमाने की चीजें, युद्ध सामग्री, गहने, सिक्के, मम्मी, कंकाल, पेंटिंग का संग्रह है। बच्चों सन 1922 में स्थापित मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, जहां सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ प्राचीन अवशेष, मध्य युग के मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी से बनी शानदार मूर्तियां, कलाकृति युद्ध के सामान रखी गई हैं। बच्चों सन 1977 में दिल्ली में नेशनल रेल संग्रहालय स्थापित किया गया, जहां पर भारत की पहली रेल और इंजन का मॉडल है। साथ ही बच्चों भारत की पुरानी दुर्लभ रेलगाड़ियां भी यहां रखी हुई हैं और है साथ में टॉय ट्रेन। बच्चों छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में रायपुर की बात कर रहे हैं और रायपुर में छत्तीसगढ़ी कल्चर को दिखाने वाला म्यूजियम है पुरखौती मुक्तांगन म्यूजियम। बच्चों इस म्यूजियम में छत्तीसगढ़ की जनजातियों से जुड़ी चीजें, लोक कलाएं, इस्तेमाल किए जाने वाले सामान, चित्रकारी, लोक संगीत की झलक मिलती है। बच्चों इसी तरह भारत में बहुत से संग्रहालय हैं जो शिक्षा और ज्ञान देने वाले हैं। अगर आप भी कहीं घूमने जाते हैं तो उन अगर हो तो आप उसे जरूर देखने जाएं, क्योंकि यही आपका ज्ञान बढ़ाएगा। चलिए इस छोटी सी जानकारी के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, और ये गीत है दुर्गागन की छांव में इस फिल्म का।

डगर न खले, जहां हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार एक थे से।

बच्चों इस गीत की बात चली बारी है एक कहानी की, तो आज की कहानी तुलना मत करो। बच्चों चंपक थे जिनमें मोर भी था। मोर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है ना। एक बार घटा छा गया और बादलों को देखकर मोर ने अपने पंख फैला लिए और सुनने लगा। हल्की हल्की बूंदाबांदी में मोर के हरे नीले पंख फैले हुए थे और उसका नृत्य सबको मनमोहक लग रहा था। एक कछुआ झाड़ियों के बीच से ये सारा नजारा देख रहा था। थोड़ी देर बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और झाड़ियों से बाहर आकर उसका नृत्य देखने लगा। अचानक कछुए को देखकर मोर ने अपना नृत्य रोक दिया। कछुए ने मोर को पुकारते हुए कहा कि मित्र तुम कितना सुंदर करते हो, मैंने कभी तक नृत्य नहीं देखा। कछुए की बात सुनकर मोर ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन कछुए कि मोर उदास है, उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। तो कछुए क्या सुंदर है, लेकिन मेरी आवाज, तुमने कोयल की आवाज सुनी है ना, उसकी है मेरी आवाज। ऐसा बोलकर मोर और उदास हो गया। कछुए मोर की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। बच्चों कछुए पूरा ये कछुआ भी होशियार था। उसने मोर को समझाया कि मित्र हम सबकी अपनी अपनी खूबियां और कमियां होती हैं और इसलिए हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर से मुकाबला करूं तो मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा, क्योंकि मैं जमीन पर बहुत ही धीरे चलता हूं और तेज करा सकता। मोर को खरगोश की बात समझ में आ गई। उसने अपनी खराब आदतों को और अपनी कमियों की बजाय अपनी सुंदरता के लिए आभारी होने का फैसला किया। बच्चों हर व्यक्ति अद्भुत होता है और सब में अपनी अपनी खूबियां और कमियां होती हैं। हमें अपनी खूबियों को पहचान कर उसे निखारना चाहिए, न कि अपनी कमियों पर पछतावा करना चाहिए, है ना। तो ये है छोटी सी सीख देने वाली।

0: बनी। बच्चों बचपन से खरगोश और कछुए की कहानी सुनते आ रहे हैं और फुर्तीला था वही कछुआ धीरंत भी। लेकिन बच्चों वास्तविकता कछुए में कई सारी खूबियां भी होती हैं जो उसे खास बनाती हैं। चलिए हम आपको आप बताते हैं कुछ कछुए के बारे में। तो एक है कछुआ, इसे विश्व की प्राचीन जीवित प्रजातियों में से एक मानी जाती है और बच्चों इनकी उम्र 150 से 200 साल के करीब होती है। 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ धरती पर रहते हैं, इन्हें टॉर्टोइस कहा जाता है और बच्चों कुछ पानी में रहते हैं जिन्हें टर्टल के नाम से जाना जाता है। बच्चों कछुए के शरीर पर आपने देखा होगा एक भारी सा खोल होता है जिसे उनके शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चों ये खोल उनके शरीर से नसों द्वारा जुड़े रहते हैं जिसकी वजह से वह सुरक्षित महसूस करते हैं। खतरे का अनुमान लगने पर वे इस खोल में छिप जाते हैं। इसके कवच में करीब 50 हड्डियां होती हैं और इनके वजन की बात करें तो ये 70 से 1500। जानते हैं बच्चों धरती पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला कछुआ जोनाथन था जो 187 वर्ष से अधिक समय तक जीवित था। बच्चों कछुए बस एक पतली प्लेट जैसी हड्डी होती है जो उन्हें खाना खाने में मदद करती है और बच्चों ये अपने पास के गंध को सूंघने के लिए अपने गले का उपयोग करते हैं। बच्चे कछुए के कवच का मुंह उनके रहने के स्थान का तापमान बता सकता है क्योंकि बच्चों होता है और वहीं ठंडी जगह पर रहने वाले कछुए का कवच गहरे रंग का होता है। इनकी एक खासियत ये भी होती है बच्चों कि ये लंबे समय तक सांस रोककर रह सकते हैं। इनके देखने और सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनकी दौड़ने की रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बच्चों कछुओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए और उनके संरक्षण के उद्देश्य से हर साल 23 मई को दुनिया भर में जाता है। इसलिए बच्चों आज हमने आपको टर्टल के बारे में बताया। तो चलिए इस छोटी सी जानकारी के बाद अब सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।
1: मैंने

0: सपने।
1: बच्चों अब हम आपको तेनालीराम की एक प्यारी सी कहानी सुनाते हैं। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय जब भी कहीं जाते अपने साथ तेनालीराम को ही लेकर जाते थे और ये बात उनके दरबारियों को खटकती थी और अक्सर वे तेनालीराम से चिढ़ते थे। एक दिन कुछ दरबारी राजा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि आप अपने साथ हमेशा तेनालीराम को ही लेकर जाते हैं, कभी किसी दूसरे को भी बाहर जाने का मौका दीजिए महाराज। राजा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, इस बार मैं तुम लोगों को साथ ले चलूंगा। अब दौरे में निकले, उन्होंने तेनालीराम के बजाय दो अन्य दरबारियों को अपने साथ ले लिया। घूमते घूमते वे गांव में पहुंच गए। वे खेतों के बीच से जा रहे थे। खेत में एक झोपड़ी थी जहां कुछ किसान बैठकर बातचीत कर रहे थे। राजा के पास पहुंच गए और उनसे पानी मांगकर पिया। फिर उन्होंने किसानों से पूछा कि कहो भाई, गांव अपने ये सब को लगा कि वे राजा के सिपाही हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में खूब शांति है, सब लोग सुखी हैं, दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं और रात को चैन की नींद सोते हैं। हमारे राजा हमें अपनी संतान की तरह प्यार करते हैं, तो किसी को दुखी रहने का सवाल ही नहीं उठता। गांव के लोग राजा को कैसा समझते हैं ये भी बता दो। राजा के इस सवाल पर एक किसान खड़ा हुआ और गन्ने की खेत से एक मोटा गन्ना तोड़ लाया और बोला, हमारे महाराज इस गन्ने की तरह है। अपनी तो देखकर राजा सकपका गए, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने एक दरबारी से पूछा कि इस बूढ़े किसान के कहने का क्या अर्थ है। दरबारी यह सुनकर दंग रह गया लेकिन जवाब नहीं दे पाया। फिर हिम्मत करके बोला कि इस बूढ़े किसान के कहने का मतलब है कि राजा इस गन्ने की तरह कमजोर है, उनको एक झटके में उखाड़ सकता है। उसकी बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने किसान से कहा कि तुम नहीं जा। किसान डरकर कांपने लगा। तभी झोपड़ी में से किसान का एक साथी बाहर आया और बोला, महाराज आपके साथी ही आपके असली रूप को नहीं जानते, मेरे मित्र ने तो आपको बहुत अच्छे से पहचाना है। मेरे मित्र के कहने का मतलब है कि हमारे महाराज प्रजा के लिए गन्ने के समान कोमल और रसीले हैं, किंतु दुश्मनों के लिए कठोर भी हैं। उस बूढ़े ने एक कुत्ते पर गन्ने से वार करते हुए ये सारी बातें कह डाली। अब उसने अपना लबादा उतार कर फेंका और नकली दाढ़ी मूंछ भी उतार दिए। राजा उन्हें देखकर चौंक गए क्योंकि बच्चों ये थे तेनालीराम। राजा ने कहा कि तुमने यहाँ भी हमारे, तो तेनालीराम ने कहा कि यदि मैं पीछा न करता तो आप तो इन किसानों को मौत के घाट ही उतार देते। राजा ने कहा कि तुम ठीक कहते हो तेनालीराम, मूर्खों का साथ हमेशा दुखदायी ही होता है। दरबारी मुंह लटकाए खड़े थे और तेनालीराम मुस्कुरा रहे थे। इस बार फिर तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता की पहचान करा दी थी। तो सच है बच्चों, अगर हम किसी मूर्ख की संगत में रहते हैं तो हम भी मूर्खतापूर्ण बातें या हरकत कर ही जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे इंसान का साथ रखना चाहिए जो बुद्धि से काम लेता हो। ये थी प्यारी सी कहानी और इस कहानी के बाद चलिए सुनते एक प्यारा सा गीत।

बच्चों, गर्मी के मौसम में हम कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं ताकि हमें ठंडक महसूस हो। कभी कूलर के सामने बैठ जाते हैं, या तो एसी चालू कर लेते हैं, या फिर कई ठंडी जगह घूमने चले जाते हैं। लेकिन बच्चों, जानवरों के पास गर्मी से बचने के लिए भी कई तरीके होते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जानवर कैसे अपने आप को गर्मी से बचाते हैं। बच्चों, घोड़े और जानवर जो होते हैं वो इंसानों की तरह पसीना निकालकर शरीर का तापमान कम करते हैं। इसके उल्टे कुत्ते के शरीर में पसीने की ग्रंथियां नहीं होती या बहुत कम होती है, इसलिए ये जानवर अपनी जीभ को बाहर निकालकर और सांस के जरिए गर्मी को दूर करते हैं। ऊंट की बात करें तो ऊंट जैसे जानवर पानी की अत्यधिक कमी में भी जीवित रह सकते हैं। बच्चों, इनका शरीर पानी का संरक्षण करता है और वे कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। इनके शरीर में बहुत ज्यादा पानी जमा करने की क्षमता होती है। कई स्थानीय सरीसृप गर्मी के दौरान ज्यादा एक्टिव नहीं होते। वे अपनी अधिकतर गतिविधियां सुबह या शाम के समय जब तापमान कम होता है तब करते हैं। दिन में तेज धूप के समय वे आराम करते हैं और इस प्रकार गर्मी से बचते हैं। बच्चों, कंगारू जैसे प्राणी अपने शरीर से गर्मी कम करने के लिए नसों द्वारा शीतलन तकनीक का उपयोग करते हैं। कंगारू अक्सर अपने पैरों को चाटते हैं या उन पर लार फैलाते हैं। जब यह लार वाष्पित होती है तो यह वाष्पीकरणी शीतलन के माध्यम से शरीर से गर्मी को दूर करती है। बच्चों, जानवरों के लिए भी शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए पानी जरूरी है। ज्यादातर प्राणी गर्मी के दौरान ज्यादा पानी पीते हैं ताकि वे शरीर में पानी की कमी से बच सके और शरीर का तापमान नियंत्रित कर सके। कुछ छोटे जानवर जैसे कि चूहे, सांप आदि जो होते हैं, वे सभी गर्मी से बचने के लिए अपने बिलों या गुफाओं में छिप जाते हैं। ये जगह उन्हें गर्मी से सुरक्षित रखती है और ठंडी रहती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि गर्मी के समय में भैंस जो होते हैं वो पानी में डूबे हुए होते हैं, तो हाथी, भैंस और सुअर जैसे कुछ जानवर गर्मी से बचने के लिए तालाबों में, नदियों या फिर झीलों में जाकर पानी में खुद को ठंडा करते हैं। यह उन्हें न केवल ठंडक प्रदान करता है बल्कि शरीर से गर्मी को भी बाहर निकालता है। तो ये थी छोटी छोटी तकनीक जिसे जीव जंतु जो है वो अपने आप को ठंडक महसूस करवाते हैं। बच्चों, अभी आपकी छुट्टियां चल रही हैं तो आप कहीं न कहीं जाने के प्रोग्राम बना रहे होंगे या फिर कुछ बच्चे तो चले भी गए होंगे। चलिए हम आपको कुछ खास जगह बताते हैं भारत में जहां आप घूमने जा सकते हैं। कुल्लू हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। पैराग्लाइडिंग के लिए यह पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वहीं मनाली की बात करें तो यह भी कुल्लू के पास ही है और एक तरफ हिमालय की शान नगर के बीच से गुजरती ब्यास नदी सेबों के बाद पर्यटकों का मन मोह लेते हैं और ये जगह बहुत ही सुंदर है। बच्चों, सोनमर्ग भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू और कश्मीर बसा एक लोकप्रिय पर्यटन है यह सोनमर्ग, जहां एडवेंचर्स एक्टिविटीज के लिए यह बेहतरीन जगह मानी जाती है। बात करें माउंट आबू की तो बच्चों, माउंट आबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर खींचती रही है। दार्जिलिंग तो आप सभी नाम सुने ही होंगे, ये भी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। बच्चों, इसकी मुख्य पहचान है विश्व धरोहर की सूची में शामिल टॉय ट्रेन या पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। केरल में मुन्नार, कन्नूर, कोवलम, बाकला, अलप्पू, बिक्कल आदि स्थान जो है वह सभी घूमने के लायक अच्छी जगह है। तो आप भी इस गर्मी में ऐसी जगहों पर जाएं और अपने आप को ठंडक महसूस करवाएं। लेकिन सिर्फ घूमना फिरना ही सही नहीं है बच्चों, इस मौसम में अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। तो आप मौसमी फल भी खाएं और अपने आप को लू से और धूप से बचाने का प्रयास भी करें और खूब पानी पिए। तो इस छोटी सी जानकारी के साथ ही अब वक्त हो रहा है कार्यक्रम की समाप्ति का। तो अनुमति दीजिए अपनी दीदी स्मृति को। जय हिंद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना आप सुन रहे हैं लक बाय चांस फिल्म से। जावेद अख्तर के बोल, महालक्ष्मी अय्यर और अमित पॉल की आवाजें, म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।

कार्यक्रम का अगला गाना जीरो फिल्म से। अब है जोधपुरकर की आवाज में इरशाद कामिल के बोल, अजय अतुल का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: कार्यक्रम का अगला गाना मेट्रो इन दिनों फिल्म से पेपॉन की आवाज बोल है गालिब के और म्यूजिक प्रीतम का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना द स्काई इज पिंक फिल्म से अरिजीत सिंह और निखिल डिसूजा की आवाजों में गुलजार के बोल प्रीतम का म्यूजिक।

अरिजीत सिंह और निखिल डिसूजा के साथ आप सुन रहे थे अंतरा मित्रा की आवाज। आज के चित्रलोक कार्यक्रम को और इस रोमांचक सप्ताह को देते हैं एक हैप्पी एंडिंग। 30 मार्खा फिल्म के इस गाने के साथ अभिजीत सावंत, हर्षित सक्सेना, प्राजक्ता शुक्री की आवाजों में, अन्विता दत्त के बोल और म्यूजिक है विशाल शेखर का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार। जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

0: करते।
1: 1980 का दौर होगा जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब।

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम हैं। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उदास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उदास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए। कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

अब बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उधास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहर।

0: पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय खर्चों में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आज छत्तीसगढ़ आएंगे और कल शाम रायपुर सहित अनेक जिलों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, कई स्थानों पर पेड़ गिरने से बिजली और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय खर्चों में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इन निर्देशों का उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना और सार्वजनिक व्यय में अनुशासन स्थापित करना है। निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और अन्य पदाधिकारियों के कारकेड में केवल अत्यावश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। राज्य के शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा और ईंधन खर्च कम करने के लिए वाहन पूलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। शासकीय सेवकों की विदेश यात्राओं पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। बैठकों में वर्चुअल माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सरकारी भवनों में ऊर्जा संरक्षण उपायों को भी अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 19 मई तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि डायल 112 आपातकालीन सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह 18 मई को रायपुर में 400 नए वाहनों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री राज्य को एक नई फॉरेंसिक लैब और जांच के लिए 33 सर्व सुविधा युक्त वाहनों की सौगात भी देंगे। श्री शर्मा ने बताया कि बस्तर का नेतानार सुरक्षा केंद्र पहला ऐसा सुरक्षा शिविर होगा जिसे जन सुविधा केंद्र के रूप में बदला जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपने बस्तर प्रवास के दौरान इस केंद्र का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी जगदलपुर द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ सुबह 6 बजे दंतेश्वरी मंदिर के सामने से हुआ, फिर संजय मार्केट, चांदनी चौक और कमिश्नर कार्यालय होते हुए यह आकाशवाणी केंद्र परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस आयोजन में आकाशवाणी के अधिकारी, कर्मचारी, उद्घोषक, कंपियर, कर्मचारियों के परिवारजन तथा आम नागरिकों सहित लगभग 300 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों में बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की भी उल्लेखनीय सहभागिता रही। इस अवसर पर आकाशवाणी जगदलपुर की कार्यक्रम प्रमुख चंद्र ऋषि ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी केवल प्रसारण का माध्यम नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाली एक सशक्त सांस्कृतिक धरोहर है। वाकथान के माध्यम से आकाशवाणी ने स्वास्थ्य, अनुशासन और सामाजिक सहभागिता का संदेश देने का प्रयास किया। रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने संगठित सट्टा और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए गोवा में छापेमारी कर 6 सट्टा संचालकों को गिरफ्तार किया है। यह नेटवर्क रायगढ़, रायपुर, शक्ति और खरसिया समेत कई शहरों से लेकर गोवा तक फैला हुआ था। पुलिस ने मौके से 10 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। रायगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध सिंघनपुर गुफा में का रिसर्च करने के लिए निरीक्षण करने पहुंची रायपुर की एक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की 5 सदस्यीय टीम पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज रायगढ़ के एक अस्पताल में जारी है। मौसम। कल रात शाम राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अनेक जिलों में तेज हवा और आंधी के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में ओले गिरने की भी खबर है। शाम को हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। इससे कई स्थानों पर पेड़ गिर गए जिसके कारण बिजली और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और पिंडरा रोड सहित कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कल से मौसम साफ होने की उम्मीद है, उसके बाद तापमान में वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय खर्चों में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आज छत्तीसगढ़ आएंगे और कल शाम रायपुर सहित अनेक जिलों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, कई स्थानों पर पेड़ गिरने से बिजली और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में 11:55 पर सुना जा सकेगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में अब से 10 मिनट पर सुनेगा सुगम संगीत। कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा सुबह 11 बजे से।

भारती हमरकोट का प्रसारण होगा शाम 5 बजे 5:10 पर। 5:30 पर जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जाएगा शाम 6:05 पर। फिर लेकर आएंगे शाम 6:20 पर, साथ ही शाम 7 बजे की बात का अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जाएगा 6:30 से।

कॉल का समय होगा शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है ढेंचा लगाए और मृदा स्वास्थ्य अपनाए। आज की नसीहत में सुनिएगा फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व, आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम।

गैर फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे। रात्रि 8:20 पर फिल्म संगीत का पालन भी सकेंगे 8:30 पर, साथ ही रात्रि 10:00 सूर्यावने का समय होगा 10:30 पर। ये सारे तौरों में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती, अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम, सब्जेक्ट फील्ड में लिखना

0: आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ, किसने बताया?
1: मेरे, मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: खुशबू तो
1: अब तो यह पत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन

हम आकाशवाणी बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 104.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। पहले सुनिए आशा भोसले की आवाज में गाई ये गजल, जिसे लिखा जयदेव ने, तर्ज बनाई है जयदेव ने।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद हुसैन की गाई ये गजल, जिसे लिखा अमी खम्फी ने, तर्ज बनाई है।

संगीत अब संपन्न होता है। हम से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में सफर फिल्म का ये गीत, जैसे लिखा है दीवार में तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को रायगढ़ से लक्ष्मण विमला, मास्टर हर्ष, शुभ खुशी बाधवानी, साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश की इंदिरा नगर रायगढ़ से शानू अब्दुल जमीर, मोहम्मद अली, मासिफ नईम राजा, कुमार दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा। पसंद का ये गीत

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ब्रो ये फटा है। सुन फटे फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
5: वाओ नया नोट मिलेगा।
4: हाँ जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
6: प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्रोता प्रतिक्रिया में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लव प्रधान की प्रतिक्रिया।
7: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लता प्रधान है। मैं खैरागढ़ की राजनांद गांव जिले से हूँ। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी को 90 वर्ष पूर्ण होने की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि हम सब मिलजुल कर इस यात्रा में आगे बढ़े, अनंत वर्षों तक कार्य करते रहे। आकाशवाणी तब से हमारे साथ है जब बहुत कम सीमित संसाधन हुआ करते थे। एकमात्र सहारा रेडियो हुआ करता था जो कि पूरे देश दुनिया की जानकारी और रोजमर्रा में उपयोग होने वाली चीजों को जान पाते थे। बचपन में याद है हमें, हम मनोरंजक बॉलीवुड के गाने सुनने के लिए, चुटकुले कविताएं सुनने के लिए कितने उत्सुक हुआ करते थे, जो रेडियो के माध्यम से ही हमें सुनने को मिलता था। इसी प्रकार हमें नई नई जानकारियां और अच्छी चीजों को लोगों तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद।

दर्शन जयश्री पिंकी रिंकी नीतू मोहम्मद फारूक ललन मिश्रा ढोली साकरा से जयंत कुमार पर आकी सुनते आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें

आपको सुनवाने जा रहे हैं सुरैया शाम की आवाज में दिल लगी फिल्म का ये गीत। मैं इस गीत को सुनने की फरमाइश की है राशि शीतल पाटिल, इमरान आलम

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
0: विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला,
0: हवा महल, 22 करोड़ की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
2: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
5: कार्यक्रम की फरमाइश में सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में जीने की राह फिल्म का ये गीत तर्ज बनाई है। इस गीत को सुनना चाहते हैं किशनपुर से आलम लश्कर दिलकश, सबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदनी नाज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका बलविंदर, जयतक, मीका बैरक, बाटापारा दतरंगी से इस गीत को सुनने की फरमाइश की है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, छाविंद्र कुमार वर्मा, सुनिए गीत।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला,
0: हवा महल, 22 की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज
4: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून दिल की आरती
1: सुरीली संदली।
5: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जशपाल सिंह हिमलोता की आवाज में नदिया के पार, रविंद्र जैन सीता अर्चना अरुणा अनुराधा यादव दुर्गा परा राय छन्नूलाल यादव अनुराग अभिषेक अलका नामिका बलदाऊ रानू खुशी प्रवीण साहू सी यादव बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी कमलकांत विजेंद्र विजकांत सारथी प्रशांत वर्मा चंद्रकांता सीमा शारदा दामिनी वर्मा सुनते आप सबकी पसंद का ये गीत

0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 11 बजे हैं। अविविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को अमरकांत
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार। मनीषा जी, विविधा का एक और खूबसूरत और कीमती अंक लेकर हम हाजिर हैं। कीमती इसलिए कह रहा हूँ कि विविध भारती के खजाने से निकलने वाले हर एक मोती की जो कीमत है वो हम नहीं जानते, वो हमारे श्रोता ही जानते हैं।
1: बिल्कुल सही फरमाया
0: आप, लोगों ही उसकी सही कीमत का अंदाजा लगा पाते हैं। हमने जो खजाना आप तक पहुंचाया उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट में हमें आपका प्यार मिल रहा है
1: और हम आपके इस प्यार को दोनों ही हाथों से बटोरते हैं। एक बहुत मशहूर शेर है अमर जी, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये एक बहुत ही मशहूर शेर है
0: जी, बिल्कुल।

0: एक कदम बढ़ा दिया है तो यकीन जानिए कुछ कदम चलने के बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप अकेला नहीं पाएंगे खुद को।
1: बहुत सही फरमाया आपने। और इस शेर को हमारे श्रोताओं के लिए जब मैंने पढ़ा तो उसकी वजह ये थी कि इसे लिखने वाले एक मशहूर शायर का जिक्र आज हम करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी, उनका ये बहुत मशहूर शेर है
0: जी। और इस शेर को अगर मैं विविधा से जोड़ दूं तो
1: ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी।
0: अब देखिए, वो मैं इस तरह से जोड़ रहा हूँ उसको कि विविधा भी विविध भारती के इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में अकेली शुरू हुई और अकेले धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते आज जब वो मुड़कर देखती है तो उसे समझ में आता है कि मेरी तो एक अलग जगह बन गई है। और ये अलग जगह बनाने वाले हैं आप।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता
0: जी।
1: तो असरारुल हसन खान साहब, यानी जिन्हें हम सब मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं, श्रोताओ 24 मई उनकी याद का दिन है।
0: लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, एक बहुत लंबी पारी मजरूह साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में गीत लेखन, शायरी, सब कुछ तो मजरूह साहब की कलम से निकला और ऐसा निकला कि आज भी लोगों के जहन में, लोगों के होठों पर रहता है। 1 अक्टूबर 1919 को जन्म हुआ मजरूह साहब का।
1: जी जी।
0: और 24 मई सन 2000 को मजरूह साहब ने इस बड़े से कारवां से अपने आप को अलग कर लिया।
1: लगभग 6 दशकों तक मजरूह साहब फिल्मों में लिखते रहे। नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, एस जी बर्मन जी, रोशन साहब, रवि साहब, एन दत्ता, शंकर जयकिशन, ओ पी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनु मल्लिक, आर डी बर्मन, राजेश रोशन, न जाने कितने नाम। और अब आते आते आते आते पता चलता है कि 80 के दशक में मजरूह साहब आनंद मिलिंद के लिए लिख रहे हैं, जतिन ललित के लिए लिख रहे हैं, यानी लगभग 2 पीढ़ियों तक उनका काम चलता रहा।
0: यही बात मैं कहने वाला था कि पिता के साथ भी काम किया है, पुत्र के साथ भी काम किया है। और पिता के जमाने में जो फिल्में थीं वो भी उनकी कलम से यूं निकली जैसे उन्हीं के लिए निकली हैं जो सुनने वाले हैं। और उसके बाद जब 80 और 90 के दशक में उन्होंने गाने लिखे तो ऐसा लगा कि आज की जनरेशन के ही हैं मजरूह साहब।
1: बिल्कुल।
0: तो ये खासियत मजरूह साहब की रही है। और एक और खास बात बताऊं मैं आपको, मनीषा
1: जी,
0: जनरली होता क्या है, आदमी जब अपना स्ट्रगल शुरू करता है, चाहे वो फिल्म लाइन हो चाहे कोई भी लाइन हो, तो वो धीरे धीरे नीचे से शुरुआत करता है और फिर ऊपर तक पहुंचता है। लेकिन मजरूह साहब वो फनकार रहे हैं जिनकी शुरुआत छक्के से हुई, यानी जो सिक्सर मारा है उन्होंने।
1: जी जी जी।
0: एक जमाना कुंदनलाल सहगल साहब का था और मजरूह साहब ने जब पहला अपना करियर शुरू किया
1: जी।
0: तो वो करियर जब दिल ही टूट गया, गम दिए मुश्तकिल, अरे साहब, नौशाद साहब का
1: क्या
0: संगीत
1: है, क्या बात है।
0: और यहाँ तक उनको पहुँचाया था कारदार साहब ने।
1: बिल्कुल। और एक गजल है मजरूह साहब की, हमें लगता है कि फिल्मों में शायद ही कोई दूसरी गजल हमारे सुनने में आई है जिसमें शायर का नाम, यानी जो गजल का मक्ता होता है जिसमें शायर अपना नाम लिखते हैं, अपना तखल्लुस लिखते हैं, वो गजल है फिल्म दस्तक की, हम हैं मताए कूचाओ। आइए इस गजल को सुनते हैं लता जी की आवाज में, संगीत मदन मोहन साहब का, और दे दे हैं अपने श्रोताओं के दिलों पे।

0: मजरूह लिख रही हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। क्या लाफानी गजल, वाह।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप अगर गुनहगार की तरह खड़ी नहीं होना चाहती हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जल्द से जल्द मजरूह साहब की कोई रिकॉर्डिंग सुनवाइए, वरना हमें गुनहगार करार दे दिया जाएगा।
0: तो श्रोताओं, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आइए सुनते हैं वही रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग की खास बात है, हम अपने श्रोताओं की ही फरमाइश पर इस रिकॉर्डिंग को इसके पूरे अनाउंसमेंट के साथ सुनवा रहे हैं। एक जमाने में चित्रशाला प्रोग्राम हुआ करता था, 5 मिनट का, याद है ना?
1: मेरी खुशकिस्मती है कि उस समय मैं था
0: जी,
1: और मैंने भी कई चित्रशाला उनमें अपनी आवाज दी है
0: जी, हाँ।
1: लेकिन खास बात यह है कि आज जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे उसमें हमारी बेहतरीन अनाउंसर, हिंदुस्तान में जिनका नाम हाउसहोल्ड माना जाता था,
0: जी,
1: हर
0: जी,
1: घर
0: जी,
1: में
0: जी,
1: वो
0: जी।
1: नाम लोग जानते थे, और वो नाम था कांता गुप्ता। हालांकि उनका पूरा नाम था चंद्रकांता गुप्ता
0: जी, हाँ, लेकिन वो मशहूर थी कांता गुप्ता जी के नाम से। तो शुरुआत में श्रोताओं आप सुनेंगे अनाउंसमेंट कांता जी की आवाज में, और बाद में है मजरूह साहब की आवाज।
2: चित्रशाला, आज इस कार्यक्रम में सुनी मजरूह सुल्तानपुरी से टिप्पणी सहित एक गजल।
3: अर्ज करता हूँ, देखिए हमारी जिंदगी बड़े हुदूद में रहती है, इसके बावजूद इंसान अपने एस्थेटिक सेंस के बदौलत उस थोड़े से अरसे को जिसे जिंदगी कहते हैं बड़ी कारामत बहुत खूबसूरत बना लेता है, ये जानने के बावजूद। तो चूंकि गजल की जबान इश्क की जबान है, इसलिए हमारी अलामतें भी जो होती हैं उसी तरह की होती हैं, इश्क और माशूक की अलामतों से। लेकिन उसमें सिर्फ मैं महबूब का जब जिक्र करता हूँ तो गोया वो सिंबलाइज करती है हमारे एस्थेटिक सेंस को। तो अर्ज किया है कि गो रात मेरी, रात जिसे बुजुर्गों ने उम्र कहा है, जिंदगी कहा है, गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सुबह तक चलेगी जरूरी नहीं है शायद सुबह ना देखे, सुबह के साथ खत्म हो जाएगी। गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है,

0: सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है, ये रंगे है ना, ये हमारे स्थेटिक सेंस को प्रवोक करने वाले मजाहिर, ये चीजें जो जब तक जिंदा हैं, हमारी रात रात रहे, हमारी जिंदगी रात रहे, सुबह हम देखें या न देखें, हम इसी में उजाला पैदा कर लेते हैं कि गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है। इंसान साहब बड़ा ही खुदगर्ज है, तो इतना गम और इतना रंज जो हमें गवारा है, वो शायद उसमें भी कोई लाग है कि इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, काकुल जुल्फ, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है कि कुछ जख्म ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, कुछ जख्म ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है, कुछ जख्म ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है, चाहे वो किसी का हो लहू, अर्ज किया है कि चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है, चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है। देखिए एक शेर मुलाहजा कीजिए कि हमारे यहाँ गमे दुनिया और गमे इश्क को दो खानों में रखा गया है। खुद गालिब ने भी कहा है कि गमे इश्क गर्न होता गमे रोजगार होता, मुझे दोनों में एक रिश्ता नजर आया। देखिए शायद ये चीज आपको पसंद आए, कुछ नया एक अंगिल है इसमें, मुझे दोनों एक ही लगे हैं कि अब कार गहे दहर में लगता है बहुत दिल, अय दोस्त कहीं ये भी तेरा गम तो नहीं है। अर्ज किया है कि इसमें देखिए हम लोग जब मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मैं एक सिंबल होता है एक मैनकाइंड का, आम इंसानियत का। तो ये कहा है कि इस कायनात के जो मौजूदात हैं, ये जो मौजूदात हैं इनमें इंसान अहम तरीन चीज है, उसने दुख भी सबसे ज्यादा उठाए हैं सुख भी सबसे ज्यादा उठाया है। तो अर्ज किया है कि सहरा में बगुला भी है मजरूह सबा भी, सहरा में बगुला भी है मजरूह सबा भी, हमसा कोई आवारे आलम तो नहीं है। शुक्रिया।
1: तो ये आपने रिकॉर्डिंग सुनी, ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने कांता जी के साथ भी काम किया है
2: जी।
1: और अब ये चीज तो क्लियर हो गई मनीषा जी,
2: जी
1: कि हम अपने वादे के अनुसार न सिर्फ गाने सुनवाते हैं बल्कि ऐसी शानदार और जानदार आवाजों में उनकी अपनी बातें उनके अपने ख्यालात तक हम अपने श्रोताओं तक पहुँचाते हैं
2: जी। हाँ।
1: तो अब आप ये बताइए कि मजरूर साहब की अपनी आवाज में जो ये रिकॉर्डिंग हमने अपने श्रोताओं तक पहुँचाई है कुछ और भी है आपके पास?
2: बिल्कुल है, और यही हमारी भी खुशकिस्मती है, एक इंटरव्यू है और हमारे विविध भारती के ही एक और अनाउंसर जो हुआ करते थे खुद शायर अहमद वसी साहब, उन्होंने बातचीत की थी मजरूह साहब से। तो आइए इस बातचीत को भी हम आज सुनवाते हैं। तो श्रोताओं की खिदमत में पेश है ये रिकॉर्डिंग।
3: मजरूह साहब, पहले तो आप ये बताइए कि आप यूपी की फजा में पले बढ़े जवान हुए, लखनऊ में आप बाकायदा हकीम की हैसियत से
4: जी
3: यानी जाने जाते थे, फिर बम्बई कैसे आपने हिजरत की या माइग्रेट हुए, यहाँ आने की क्या वजह हुई?
4: साहब मेरी जिंदगी कुछ बड़े दिलचस्प हादसों से गुजरी है
3: जी।
4: मिसाल के तौर पर मेरी खानदानी हैसियत एक खाते पीते किसान की है, हम लोग कभी जमींदार हुआ करते थे मगर वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते वो किसान की हालत रह गई। सुल्तानपुर में हमारी पैदाइश जो किसानों की जिंदगी और सामाजिक हैसियत से हुई, और कांधे पर लाठी लेके चलना
3: जी।
4: और हमारे यहाँ ठाकुरों की वो सारी रस्म रिवाज बाकी थे उस वक्त तक, धोती पहनना कुर्ता पहनना लाठी लेके चलना। अब
3: शायद यही बागपन जो है आपकी शायरी में है, और आपका ये शेर की सर पर हवाए जुल्म चले सौ जतन के साथ अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ, शायद ये उसी का
4: वो हम लोगों का
3: नतीजा है
4: जी। हाँ, हम लोगों का मिजाज वो है, सही बात है, आपने बिल्कुल सही तजिया किया। तो साहब ये सन 21 में जब खिलाफत तहरीक चली अंग्रेजों के खिलाफ, उस जमाने में विदेशी कपड़े जला दिए जाते थे, विदेशी हर चीज का बायकॉट शुरू हो गया था
3: जी।
4: और तहरीक से गांधी जी भी मुत्तफिक हो गए थे वक्ती तौर पर। तो मेरे वालिद ने ये तय किया कि साहब मैं उनका अकेली औलाद उनकी
3: जी,
4: उन्होंने ये कहा कि साहब मैं अपने बेटे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा।
3: अच्छा।
4: चुनाचे मेरी तालीम हुई अरबी फारसी की, अब वो हवादिस की बात कर रहा हूँ, अरबी फारसी की तालीम होने के बावजूद मैं मौलवी न बन सका और वहां से रिस्ट्रिकेट हुआ अपनी आजाद अरबी पर
3: जी।
4: और रिस्ट्रिकेट होने के बाद फिर मैं चला आया लखनऊ और वहां मैंने तिब की तालीम हासिल की। तिब की तालीम हासिल करने के बाद मैंने कुछ दिन तबाबत की भी और कामयाब तबाबत की, लेकिन साथ ही साथ मेरे सुल्तानपुर में, जैसे कि उस जमाने में अवध के हर कस्बे कस्बे में शायरी शेर शायरी का माहौल रहता था तकसीम से पहले, मेरे यहाँ भी था। चुनाचे कुछ मुशायरा वगैरह हुआ तो उसमें एक आध गजल मैंने लिखी और वो साहब सबसे ज्यादा पसंद की गई। तो जाहिर है कि ये दाद जो है ऐसी रिश्वत और ऐसा ढोस है
3: जी।
4: चुनाचे हुआ यही कि मेरी प्रैक्टिस पर असर पड़ने लगा और मैं शायरी और मुशायरों में ज्यादा जाने लगा।
3: यानी शायर जो था वो हकीम पे हावी होने लगा।
4: हकीम पे हावी होने लगा और हो गया आखिरकार
3: जी।
4: चुनाचे ऐसे घूमते घामते हमारे कुछ दोस्त अहबाब लेके हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहाँ प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, जो हमारे बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े उस्ताद और बहुत बड़े साहिब तर्ज थे, उन्होंने भी सुना और उन्होंने कहा मुताला कीजिए। तो मैंने कहा साहब सुल्तानपुर में तो मुताले की कोई गुंजाइश है नहीं, बहुत छोटी सी जगह है। खुदा जाने उनके दिन जी में क्या आई, हालांकि उनके पास मुझ जैसे हजारों पहुंचा करते थे, इसमें कोई शुबाई नहीं। और ड्यूटी सोसाइटी जो ऐसे तलबा जो अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, उनकी देख रेख के लिए और उनकी फीस अदा करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए एक ड्यूटी सोसाइटी थी।
3: अच्छा,
4: उसके चेयरमैन
3: थे।
4: तो उनको ऐसे लड़कों की कमी नहीं थी जिनको अपने यहाँ रख लेते, मगर किसी से ना कहा, मुझसे कहा उन्होंने कि आप हमारे यहाँ जाइए।
3: अच्छा।
4: तो मैं वहां तीन साल रहा सन 44 के आखिर तक
3: जी।
4: सन 45 में एक मुशायरा बम्बई में हुआ तो जिगर साहब वहां से गुजरे और मैं उनके जेरे साया, शेर तो पहले कहता ही था
3: जी।
4: लेकिन गजलें कहने की तरफ उनके जेरे साया राजी हुआ, हालांकि मुझसे किसी ने कहा कि तुम गजलें कहो। लेकिन वहां पर जो सुनने वाले आते थे, मौलाना असद मोहाली, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन,
3: दानिश्वर
4: बड़े बड़े आते थे और रशीद साहब शाम के खाने पर मुझे और जज्बी को दो को बुला लिया करते थे और हमें शेर सुनाने पड़ते थे। तो पहले मैं मुशायरे मार शायरी किया करता, जैसे आप बहुत से मुशायरे के चौरा को देखते हुए मेरी आवाज बड़ी अच्छी थी। मैंने गौर किया कि भाई यहाँ तो कुछ संजीदगी से बात चलेगी, इन लोगों से दाद लेनी है तो फिर ये मुशायरे उशारे का चक्कर छोड़ो, जरा कुछ समझबूझ की बात की जाए। वहां से दरअसल मगज आना शुरू हुआ मेरी शायरी में, थोड़ा बहुत
3: शऊर आया।
4: हाँ, शऊर आया, लेकिन उस शऊर की कोई संत मुहैया नहीं थी। और बस शऊर एक ऐसा कि कोई मुसबत बात, कोई अच्छी बात, कोई चाहे वो इश्क की हो, जमालियात की हो, समाजी हो, अखलाकी हो, लेकिन सियासी हो, लेकिन वो मुसबत हो, मनफी बात ना हो, निगेटिव
3: नहीं हो।
4: हाँ, लो इतना तो जरूर रहा,
3: पॉजिटिव एटीट्यूड।
4: अच्छा, तो जिगर साहब जब तशरीफ लाए वहां एक दिन, तो कहने लगे भाई तुम मेरे साथ मुशायरे में चलोगे बम्बई। मैंने कहा चलिए। 1944 में मुझे लेके बम्बई के एक मुशायरे में, उस जमाने में यहाँ और वो इकबाल डे बनाया करते थे और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुशायरा होता था, उसमें लेके आए मुझे। और यूं रात को मुशायरे में कुछ मेरी हवा बंद गई, वो जैसे होता ना एक शायर की हवा बन जाती है। तो मौलाना असरत मोहानी प्रिसाइड कर रहे थे।
3: अच्छा।
4: जिगर मुरादाबादी उस महफिल में मौजूद, यगाना मौजूद, बड़े बड़े शोरा मौजूद, लेकिन वो एक गवैये लड़के की चल गई मेरी आवाज बड़ी।
3: नहीं, सिर्फ गवैये नहीं है, शायर भी अच्छे हैं।
4: एनीवे, कारदार साहब उस जमाने में फिल्म, एक शाहजहां फिल्म बनानी चाहते थे मुगल पीरियड से के मुतल्लिक से के ताल्लुक से, और वो चाहते थे कि कोई उनको नया लिखने वाला जो गीत लिखे और उस माहौल की जबान को कहा अदा कर सके, उसकी तलाश थी। अच्छा, नए वो यूं ढूंढते थे कि पुराने ज्यादा पैसे लेते हैं
3: जी,
4: नया कम पैसे लेगा
3: जी।
4: चुनाचे उन्होंने मुझे अप्रोच किया और लिमिटली मुझे 500 रुपए माहवार पर सन 45 में नौकर लिखे। उस जमाने में 500 रुपए बहुत होते थे। तो जो गोया यूं मैं फिल्म लाइन में आया।
3: अब गाने बड़े मशहूर हुए थे
4: जी। हाँ,
3: जब दिल ही टूट गया
4: तो उनको सैगल मरहूम पसंद था, कि उन्होंने वसीयत की थी कि ये गीत मेरी अर्थी के साथ जाए, बचता हुआ चुना चला। और मैं ऐसा ही हुआ था कि ये गीत उनकी अर्थी के साथ गया था, जब दिल ही टूट गया हम जी के।
3: उससे तो और भी शोहरत।
4: जी हाँ, शोहरत हुई, बहुत काफी शोहरत हुई। लेकिन फौरन ही, मैं दिलचस्प बात जो कह रहा हूँ वो ये कि मेरी, देखिए 3-4 मोड़ हमारी जिंदगी के देखे आपने
3: जी,
4: वो सब बड़े दिलचस्प है और प्लैंड नहीं है
3: जी।
4: प्लैंड कोई नहीं है, सब खुशगवार हादसे के हिस्से से। अच्छा, फिर जब इससे मैं कुछ फायदा उठा सकता तो 47 पे फसादा शुरू हो गए। 6-8 महीने तक हमारी इंडस्ट्री बंद रही। फिर उसी जमाने में हमारा यहाँ की तरक्की पसंद मुसन्निफीन जो एसोसिएशन थी उनके मुसन्निफीन जो राइटर थे उनसे हमारा लिंक पैदा हुआ। और फिर हमने देखा कि एक शऊरी रवैया जो अब तक हमारे शऊर को कोई राह नहीं मिली थी वो एक समझ मिली हमें। और मैंने फिर ये देखना शुरू किया कि आज

0: जब से हमारे स्टेट्स में जमहूरियत का लफ्ज आया है, यानी हर शख्स को इस बात की आजादी है कि वो अपनी बात कह सके। पहले मुगल पीरियड में या बादशाही के पीरियड में होता यह था कि सियासत तो उस वक्त भी होती थी, मगर शाही सियासत होती थी, जमहूरी नहीं होती थी, इसलिए कोई शख्स आजादी से सोच नहीं पाता था। अब ये जरूरी हुआ कि एक शायर के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वो इश्क मोहब्बत की बातें करो चुप हो जाए, बल्कि उसका एक सामाजिक रवैया भी होना चाहिए, उसका सियासी रवैया भी होना चाहिए। चुनाचे मेरा एक शेर था कि दिल से मिलती तो है एक राह कहीं से आकर, सोचता हूँ ये तेरी राह गुजर है कि नहीं, ये है कि नहीं का जो क्वेश्चन मार्क था, मैं इस रास्ते पे खड़ा था,
1: वो यकीन और शक के दरमियानी रास्ते पर।
0: यकीन और यकीन के दरमियानी रास्ते पर।
1: लेकिन एक सवाल यहीं ये उठता है कि क्या कोई भी शायर बगैर किसी आइडियोलॉजी, बगैर किसी अकीदे, बगैर किसी नजरिए से वाबस्ता हुए क्या अच्छी शायरी नहीं कर सकता?
0: कर सकता है। मतलब आप दयाशंकर नसीम की मसले लीजिए, गुलजार नसीम
1: जी,
0: उसमें कौन सा आइडिया है? कोई आइडिया नहीं, सिर्फ अखलाकियात पर मबनी है
1: जी,
0: कि नेकी करो
1: जी,
0: नेक बनो, अल्टीमेटली इसी पे एंड है उसका, ये ह्यूमन अप्रोच है। वैसे तो किसी भी मुस्बत आइडियोलॉजी के बगैर कोई बात कोई मुतबर हो ही नहीं सकती। लेकिन जब हमने अर्थ जैसा कि अर्थ किया कि जब हमारी दुनिया ने जमहूरियत के नाम से अपने आप को जाना पहचाना, उस वक्त फर्द को जब आजादी मिली तब उसका अपना सियासी नजरिया हुआ, अपना सामाजिक नजरिया हुआ, अपना अखलाकी नजरिया हुआ। उसमें से अखलाक के बहुत से पुराने अकदार जो है उनको तोड़ फोड़ डाला गया
1: और नए अकदार बने।
0: हाँ, अंगारे लिख डाला हमारे अदीबों शायरों ने, जिसमें बहुत ज्यादा झिझोड़ने वाली बातें थी और जाहिर है कि वो जज्बाती ज्यादा थी, ताकुल कम था उनमें, लेकिन उस वक्त वक्त का रद्द अमल था और उस वक्त वो जरूरी थी उस तरह की बातें। इसमें लिहाफ लिख डाला, मंटो ने बू लिख डाली, तो इस तरह की चीजें थी।
1: लेकिन मजू साहब, आपकी शायरी का जो एक मजमूई असर होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे एक मुसाफिर है जो आगे बढ़ना चाहता है। मसलन आपका ये शेर कि सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग
0: जी,
1: जहां तलक ये सितम की सियाह रात चले, या ये मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
0: जी हां, ये
1: आप इस किस्म के बेशतर अशआर हैं जिनसे ये लगता है कि एक आदमी है जो जिसका सफर जारी है।
0: हमारे बहुत बड़े नक्काद थे
1: जी,
0: एहतशाम हुसैन साहब
1: जी,
0: उन्होंने बिल्कुल यही बात कही थी जो आप इस वक्त कह रहे हैं
1: जी।
0: इत्तेफाक
1: तो इसके पीछे क्या कोई शऊरी कोशिश है या ये एक अंदर से
0: शऊरी कोशिश? तो देखिए जनाब
1: जी,
0: किसी एक नुक्ते नजर के जैसे मैंने बताया सामाजिक सियासी वगैरह, उसको सामने रख के शऊरी कोशिश तो सिर्फ रही अच्छे शेर कहने की।
1: अच्छा,
0: लेकिन अकेलापन जो मेरा रहा उसकी हकीकत यह है कि जिस वक्त मैं तरक्की पसंद मुसन्निफीन से वाबस्ता हुआ तो गजल का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो जिगर और फानी और इनके साथ चलता था, जिसमें शकील मजारमी, कुमार अवारी, इस तरह के, उनसे मैं कट ऑफ हुआ। अब वहां से मैं गालियां पड़ी कि साहब ये जो है तरक्की पसंद हो गया, तो ये हो गया जिसकी वजह से मैं तन्हा रहा दोनों तरफ से। और मैं एक अजीब बात बताऊंगा आपसे कि उस जमाने में सन 45 से लेके सन 52 तक जो तरक्की पसंद अशार गजल में मैंने कहे हैं, तन्हा मैंने कहे हैं, और आपको अजीब लगेगा और मेरे सुनने वालों को भी शायद अजीब लगे, लेकिन मेरी उम्र के और मेरे उम्र से कुछ कम के अच्छे जानकार नक्कादों और पढ़े लिखों से अगर बात पूछी जाए तो साथ करेंगे मेरी इस बात की। 7 साल मैं अकेला रहा हूं, उस वक्त मैंने आपको शेर दिया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख, शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, मैं फराज दार से देख लूं कहीं कारवाने सहर न हो।
2: ये जो बातचीत अभी आपने सुनी, एक शायर जब दूसरे शायर से बात करता है तो बातों का जो स्तर होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, जो एक उसका मयार होता है, वो अलग ही होता है।
3: बिल्कुल,
2: वो बातचीत एक आम बातचीत से अलग होती है। और फिर बातचीत में अगर मजरू साहब हो तो फिर क्या कहने,
3: क्या बात।
2: अब मजरू साहब की एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मजरू साहब का लिखा गाना सुनता हूँ, हम है मताए कूचा बाजार की तरह, और उसके बाद अचानक याद आ जाता है हम थे वो थे और
3: समारंगीन, समझ गए ना।
2: हाँ, उसके बाद याद आ जाता है चलती का नाम गाड़ी का दूसरा गाना, हाल कैसा है जनाब का,
3: जी हाँ, जी हाँ।
2: पहले मेरा दे दो 5 रुपया 12 आना, इस तरह के जो
3: क्या
2: गाने
3: रेंज, क्या रेंज, क्या रेंज
2: है, देखिए ना। और भी कई फिल्में हैं, कई गाने हैं, लेकिन यहाँ हम एक गाना जो एक कॉमेडियन पे फिल्माया गया, जॉय मुखर्जी के साथ एक अपने जमाने के बड़े मशहूर कॉमेडियन थे इंद्रसेन साहब। अब मैं ये नाम जानबूझ के ले रहा हूँ।
3: आईएस जौहर साहब की बात कर रहे हैं आप, कमाल

0: हम से सुनो।
1: मजरूह साहब की कलम से निकला ये एक मजाहिया गीत और बहुत दिलचस्प गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। अमर जी अब
2: आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
3: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: को भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिलेक मंदिर
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
2: तुम भी मेरे मंदिर, तुम भी मेरी पूजा।
1: फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
0: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी।
3: साथिया, साथिया।
1: दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जय ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजु का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए।
0: फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू है भगत सिंह की माँ।

0: घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं।
1: फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए

0: पड़ेगा।
1: पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो।
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे, मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है।
5: नौराई माची लड़ाची लड़ाची गा, आपड़ ही ला चंद्राची चंद्राची गा।
0: सन 2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक,

0: भगवान की सूरत।
1: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
2: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
1: फिल्म ABCD 2।
3: जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
1: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
4: मेरे पास माँ है।
1: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: मुकेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दादा, आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नैन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी,
3: नैन हमारे सांझ सतारे देखे लाखों सपने सच ये कहीं होंगे या नहीं।
2: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख कर।
4: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हुई थी 15 मई 2026 को। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है हर शुक्रवार 11 बजे से 11:30 तक। अगर आप भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का STD कोड है 0771। तो अब फोन इन फरमाइश से शुभ्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन इन फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थी शुभ्रा ठाकुर। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दिन के 11:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री आज धमतरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज जगदलपुर में आकाशवाणी ने किया वक्थान का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 19 मई तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह डायल 112 आपातकालीन सेवा के तहत 18 मई को रायपुर में 400 नए वाहनों का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही एक नई फॉरेंसिक लैब और जांच के लिए 33 सर्व सुविधा युक्त वाहनों की सौगात देंगे। श्री शर्मा ने बताया कि बस्तर का नेतानार सुरक्षा केंद्र पहला ऐसा सुरक्षा शिविर होगा जिसे जन सुविधा केंद्र के रूप में बदला जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपने बस्तर प्रवास के दौरान इस केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायगढ़ जिले के कुसमुरा में करीब 103 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न विभागों के 24 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायगढ़ में जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ जिलों के विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में ईंधन बचत और मितव्ययिता को बढ़ावा देने के लिए जांजगीर चांपा और कोरबा के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री आज दोपहर सुशासन तिहार के तहत धमतरी की पुराना कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस्तर के बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए जगदलपुर में जल्द ही बस्तर की पहली आवासीय खेल अकादमी शुरू की जाएगी। खेल और युवा कल्याण विभाग की संचालक तनुजा सलाम ने कल जगदलपुर पहुंचकर अकादमी की तैयारियों का जायजा लिया। इस अकादमी में बालकों को एथलेटिक्स, फुटबॉल और आर्चरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रवेश के लिए जल्द ही चयन ट्रायल का आयोजित किया जाएगा। इसमें 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ ही आवास, डाइट और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी जगदलपुर द्वारा एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। यह दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी केंद्र परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस आयोजन में आकाशवाणी के अधिकारी, कर्मचारी, उद्घोषक, कंपियर और कर्मचारियों तथा परिजन के अलावा आम नागरिकों सहित लगभग 300 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगियों में बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की भी उल्लेखनीय सहभागिता रही। इस अवसर पर आकाशवाणी जगदलपुर की कार्यक्रम प्रमुख चंद्र ऋषि ठाकुर ने कहा कि वॉकथॉन के माध्यम से आकाशवाणी ने स्वास्थ्य, अनुशासन और सामाजिक सहभागिता का संदेश देने का प्रयास किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में 3री भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने उच्च रक्तचाप की जाँच करें और इस बीमारी को हराएं है। कल शाम राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अनेक जिलों में तेज हवा और आंधी के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में ओले गिरने की भी खबर है। शाम को हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। इससे कई स्थानों पर पेड़ गिर गए जिसके कारण बिजली और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। कल से मौसम साफ होने की उम्मीद है। उसके बाद तापमान में वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करेंगे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री आज धमतरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज जगदलपुर में आकाशवाणी ने किया वाकथान का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेटू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये थे ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। प्रकाश मेहरा के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल सुरों में गुलशन बावरा की रचना आपने सुनी। कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हाथ की सफाई फिल्म का ये गीत आपने सुना।

0: अख्तर रोमानी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे दो गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म थी हसीना मान जाएगी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

आप सुन रहे थे दयावान फिल्म का गीत, पंकज उदास अनुराधा पौडवाल के युगल सुरों में। अजीज काजी का लिखा यह गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। साजन फिल्म का यह गीत है पंकज उदास की आवाज में, समीर के बोल नदीम श्रवण की तर्ज।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म नाम में आप सुन रहे थे पंकज उदास और साथियों को, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। मेला फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों में, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाज़ों में ये युगल गीत आप सुन रहे थे फिल्म रल्ला वारिस से। अनजान के बोलों को सुरों में ढाला था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओ, यादों की महफिल इस कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर, इस प्रोग्राम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, तो अपने रेडियो सेट को जरा करीब लाइए, क्योंकि आपके रेडियो सेट पर अब इंतजार खत्म हो चुका है और शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुरीला सफर। दूर दूर से आपकी भेजी गई बातें हम तक पहुंच रही हैं, जिनमें कभी खुशी, कभी थोड़ी सी तलखी नजर आ रही है, कभी मुस्कुराहट है तो थोड़ी मायूसी भी नजर आती है। यानी हवाओं की पालकी पर सवार संचार के माध्यम से हम तक और आप तक जो संवाद पहुंचते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं, है ना? ये भी एक कमाल की बात। ऐसी ही प्यारी प्यारी भावनाएं गीतों की शक्ल में ढल जाती हैं, जिसे आप तक पहुंचाती है आपकी प्यारी प्यारी विविध भारती। जरा सोचिए ना श्रोताओं, कि अगर ये संचार, ये दूर संचार के माध्यम हमारे बीच न होते तो क्या हम और आप जुड़ पाते? अपना प्यार, अपनी नाराजगी और खूबसूरत गीतों का ये फसाना क्या गुनगुना पाते? तो मौका है अपने आप में लाजवाब, और देखते हैं कि आज हमारे कौन कौन से श्रोताओं के जो गीत हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में मिलते हैं। वैसे आपकी प्लेलिस्ट जो है वो बहुत सारे श्रोताओं की हम तक पहुंच चुकी है। मुझे देखकर ये बड़ा अच्छा भी लगा कि कुछ श्रोताओं के गीत तो लगभग पूरी पूरी तरह आज के कार्यक्रम से मिल रहे हैं। तो जल्दी से बता देते हैं आज की इबारत। वैसे ये इबारत आप फेसबुक पेज पर भी हमारे पढ़ सकते हैं। आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते से जुड़कर अपनी बातें, अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक भेज सकते हैं। तो इबारत आपको बता देते हैं। दूरी चाहे जितनी भी हो, हवाओं की पालकी पर सवार परदेसियों के सलाम आ ही जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि गीतों में छुपी प्यार की दास्तान कोई सुनता है, कोई कहता है। अगर मामला लिफाफे का हो तो पते की भी जरूरत होती है। रेडियो तरंगों पर बजते वो गीत तो जिंदगी भर नहीं भूलते, जो कुछ खास पलों के गवाह होते हैं। बेतार के तार से बंधे आते गीत कभी गम उठाने के लिए जीने का हौसला देते हैं, कभी ख्याल बनकर उभरते हैं। देश विदेश में अपनों से जो वीडियो कॉल पर होती बातचीत भी इन्हीं तरंगों पर सवार होकर हम तक पहुंचती है, फिर चाहे देहरादून हो या रंगून। सुरों का ऐसा साज जैसे चंचल नैन बात करें और छुप जाएं। सुर लहरियों पर सुनाई देते नगमे जैसे मन का नगर लूट लेते हैं। आह तूने कहा कोई मतवाला लगता है, मन कहता है सुनो। रेडियो तरंगों की लय पर ये गीतों की महकती खुशबू है, इसे बस महसूस करो।

वैसे आज जो गीत इस कार्यक्रम में हमने पिरोए हैं श्रोताओं, उनमें कुछ खासियत भी है जो आपको पहचाननी है और साथ ही बताना है कि हवाओं की पालकी पर सवार जब ये गीत आपके घर आंगन तक पहुंचते हैं तो आपको कैसा लगता है। इन्हीं तरंगों पर सवार अपनों की तो कभी किसी अजनबी से जो नज़र नहीं आते उनसे बातें होती हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसा हो पाएगा, है ना, कितनी अजीब सी बात। तो ये बात आपको बतानी है, बातें और जो आपकी लिखी हुई बातें हैं, आपकी खट्टी मीठी बातें हैं और विविध भारती की सुलहरियों पर झूमते गाते ये गीत जो आपके रेडियो सेट पर दस्तक लगभग दे चुके हैं श्रोताओं।

हवाओं पे लिखे हवाओं के नाम ये गीत जो हैं, जब छम से विविध भारती के जरिए आपके आंगन में आते हैं तो आपको कैसा लगता है, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं श्रोताओं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र के हम सफ़र साथियों को नमस्कार, और आज की भारत बदलते संचार माध्यमों में अपनों संग रिश्ते समेत रखने का जिक्र है। संचार बदलते आयामों ने दूरी को नज़दीक कर दिया है। कभी जो काल्पनिक उड़ान भर मन में याद कर प्रियतम प्रियसी के नज़दीक का आभास दिलाते थे, वो आज इंटरनेट युग में साक्षात रूबरू हो जाते हैं। ये वरदान भी है, मगर इन भौतिक सुविधाओं में वो विरह वेदना नहीं महसूस होती जो पहले होती थी। बहुत रोमांचक और प्रासंगिक इबारत है, संगीतमय सफ़र संग प्रश्न पहेलियों का इंतज़ार रहेगा। इनकी एक बात जो है श्रोताओं कि जो विरह वेदना है वो भौतिक सुविधाओं में नज़र नहीं आती, तो ये लाइन जो इन्होंने लिखी है ये बड़ी गहरी है, इसके कई मायने हो सकते हैं। वैसे हाँ, ये बात तो है कि जब हम दूरसंचार की बात करते हैं या टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मिनटों में लोगों से बातें हो जाती हैं, लेकिन शायद दिल की वो धड़कन कहीं महसूस नहीं होती या कहीं खो सी गई है जो जब खत आते थे उनमें रहती थी। बशर्ते जो बातें होती थी वो तो बड़ी कम लिखी होती थी, लेकिन जो दिल में एक वेदना सी महसूस होती थी वो कहीं गहरी होती थी। तो ऐसी कोई चिट्ठियाँ अगर आपने सहेज रखी हैं तो आप हमें बता सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने, वैसे तो बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों को पहचाना है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरे पिया गए रंगून और लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, और बाकी गीतों को भी देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे बाकी गीतों को भी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की बातें गीतों के होने वाली हैं, कि कैसे गीत हमारी हर बात को हमारे अपनों तक पहुंचा देते हैं। हमारे दिल की बात कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम गुनगुनाते हैं किसी और के लिए, मगर सुनते वक्त सबसे ज़्यादा खुद महसूस करते हैं। गीतों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो दूर बैठे इंसान को भी हमारे दिल का हाल बता देते हैं। किसी को अपना कहना आसान नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर अपनी मोहब्बत गीतों में छुपा देते हैं। एक पसंदीदा गीत कई बार पूरी कहानी इसमें छुपी होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल के बिना जीना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल है, ये दुनिया का अजूबा रिश्ता, ये ज़िंदगी का सफ़र, आज रेडियो से मोबाइल के बिना चैन कहाँ। और एक और श्रोता ने लिखी है कि जो आज की इबारत है वो संभावित गाने पालकी में होके सवार चली, और फिर इन्होंने और भी बहुत सारे जो गीत हैं उन्हें चुना है। तो हम देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत बजते हैं इस कार्यक्रम में। वैसे जो आज हमारी प्लेलिस्ट है वो आपकी प्लेलिस्ट से, मैं बताऊं श्रोताओं, कि लगभग मैच कर रही है। और कुछ श्रोता ऐसा भी लिख रहे हैं कि भाई एक या दो गीत हैं उनके लिए क्या परेशानी उठाई जाए। जी हाँ, ऐसी बात भी आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि वायरलेस उपकरण जैसे फ़ोन और रेडियो से उठती तरंगों की बातें होंगी। रेडियो तो पहले से ही था, उसमें भी बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन आज हाथ में एक छोटे से फ़ोन ने सभी कुछ एक मुट्ठी में कर दिया है। साधारण कॉल से लेकर वीडियो कॉल पर देश विदेश में बैठे परिजनों से बातचीत, रेडियो का जुड़ाव, मनोरंजन, दुर्लभ जानकारियों का जो वरदान दिया है उसका कोई हिसाब नहीं। ये सब तकनीक और आधुनिकता का दिया हुआ तोहफा है बदलती दुनिया को। जी हाँ, ये जो आधुनिकता है जो बातचीत के दरमियान हमें देखने को मिलती है, ये आपको कैसी लगती है ये आपको बताना है। साथ ही अगर आप एक बात बताना चाहें तो ज़रूर बताएं कि जब कोई नई चीज़ आती है हमारे घर में तो बड़ा कौतूहल होता है, बड़ा रोमांच होता है। तो एक ज़माने में जो टेलीफोन था वो, यानी कि जो वायर वाला टेलीफोन था वो आया, तो आपको कैसा लगा अगर आपके घर आया? या फिर अगर हम मोबाइल की ही बात करें तो आपने पहला फ़ोन किसको लगाया?

फिल्म शक्ति का ये प्यारा सा गीत श्रोताओं जो स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। वैसे एक सवाल आपसे पूछने का जी चाहता है कि क्या कोई ख़त ऐसा भी था जो आया नहीं और आज भी आपको उस ख़त का इंतज़ार है, या फिर इंतज़ार ख़त्म हो चुका है? यानी कभी कभी हम दिल हार जाते हैं कि भाई नहीं, अब तो ये ख़त नहीं आएगा या अब तो ये मैसेज नहीं आएगा। लेकिन जब अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो आप क्या करते हैं? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि किसी के मैसेज का या किसी की बातों का हमें इंतज़ार रहता है, ना वो ख़त आता है ना वो मैसेज आता है। तो क्या आप उदास हो जाते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि भाई ये ज़िंदगी है और आगे यूं ही चलती रहे, यानी आप गमगीन होते हैं या फिर गमों के समय भी मुस्कुराते हैं? वैसे हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि गीत हमारे मित्र हैं, हवाओं की पालकी पर सवार रेडियो से जो गीत बजते हैं वो हमारे सुख दुख के गहन साथी हैं। जीवन में जब प्रेम आया तो इन गीतों में विस्तार खोजते रहे और आश्चर्य कि हमें गीत में वो सब मिला जो हम मन से कहना चाह रहे थे, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, वो रेडियो से झरते इन गीतों में था। सुरों का ऐसा साज ये गीत कि अब हमारे अस्तित्व से जुड़ गए हैं, ये मन को लूट लेते हैं। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, आज भी इस गीत को सुनती हूँ तो मन किसी अनदेखी अनजानी दुनिया में पहुँच जाता है जहाँ कोई नहीं होता सिवाय इस गीत के। एक सवाल आप हमें बता दें श्रोताओं कि फिल्म आरती का एक गीत है जिसमें जो ये गीत जब शुरू होता है तो ये ग्रामाफोन के सेट पर नजर आता है, यानी इसकी शुरुआत ग्रामाफोन के सेट पर होती है। तो आप इस गीत को अगर पहचानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि मेरे पिया गए रंगून, चिट्ठी आई है वतन से और परदेसी, तुम कहाँ चले गए। फिर इन्होंने जो कुछ गीत लिखे हैं शायद वो गीत बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते हैं। तो इसके लिए तो ये ज़रूरी है श्रोताओं कि जो इबारत होती है ना उसे आप दो तीन बार अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब हम स्कूल में एग्ज़ाम देते थे, कॉलेज में एग्ज़ाम देते थे, तो जब हमारे सामने सवाल आता था तो यकायक लगता था कि नहीं भाई इसका तो जवाब हमें नहीं आता है। लेकिन फिर ये होता था कि मन होता था कि भाई शांत बैठ जाओ और इसे कई बार, यानी कि कम से कम एक दो बार तो जैसा समय रहे उस हिसाब से पढ़ लीजिए। तो फिर ये समझ में आ जाता था कि नहीं ये तो ज़रूर उत्तर हमें आता है या आंसर हमें आता है। तो ऐसा ही है ये टेक्स्ट भी, हमारी इबारत भी, ये मज़मून भी ऐसा ही है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन से नगमे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है सुरीला सफ़र में कुछ शब्दों के गीत बज सकते हैं, जैसे दूरी हवाएं, परदेसी, पालकी, रंगून, प्यार की दास्तान, सलाम मेरे पिया गए रंगून, दूरी न रहे कोई, तुम इतने करीब आओ, दूरियां नजदीक हैं परदेसियों से, इन हवाओं इन फिजाओं में लिखे जो खत तुझे, बहुत सारे गीत हैं। तो एक और श्रोता लिखती हैं आज के शब्दों से पता लग रहा है कि दूरी की बातें होंगी और गाने भी बजेंगे। जी हाँ, जहां तक दूरी की बातें हैं श्रोताओं, जब दूरियां नहीं होंगी तो नजदीकियों का क्या मजा, इसलिए दूरियां हैं तो नजदीकियां हैं, और जब नजदीकियां हैं तो उन नजदीकियों को हम बनाए रहें, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इनमें दूरियां ना आ पाए। ठीक ऐसे ही जैसे हमारी विविध भारती है, कभी ना नाराज होती है ना कभी बहुत ज्यादा खुश होती है, बस श्रोताओं को लेकर साथ हम सफर की तरह चलती रहती है। तो ये आगे लिखती हैं कि दूरी की बात होगी और गाने भी बजेंगे, जब कोई हमसे दूर होता है पर दिल के करीब होता है, और प्रदेश में होकर थी जो दिल को जोड़ रखता है वो फोन होता है, हम फोन पर बातें करते हैं, दिल की बातें करने से मन हल्का हो जाता है, हाल चाल भी पता चलता है। लेकिन एक बात यहाँ ये है श्रोताओं कि जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी जो आज जो विश्व दूर संचार दिवस यानी टेली कम्युनिकेशन डे है, तो ये जो दूरियां हैं यकीनन इन संचार माध्यमों से कम तो हुई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये कम हुई हैं या फिर और बढ़ गई हैं? आपको संगीतकार और अदाकारा बताने हैं।

जनक में यकीन मानिए श्रोताओं, जब रेडियो तरंगों की ताल पर बजते हैं तो जाने कितनी ही जो अपनी यादें होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, दिल में अंगड़ाइयाँ लेती हैं और जाने कितनी सारी बातें जो होती हैं जहन में ताज़ा हो जाती हैं। ये गीत चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, बेशुमार हो, दिल के बेहद करीब होते हैं। वक्त के सांचे में ढले ये गीत नायाब हैं श्रोताओं, जिन्हें हम और आप इनकी कीमत को बिल्कुल चुका नहीं सकते, हाँ इन्हें प्यार ज़रूर दे सकते हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दें कि बरसात की रात फिल्म का ये गीत था, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वीनस क्वीन मधुबाला पर फिल्माया गया, भारत भूषण भी नज़र आते हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं रोशन की तर्ज है। वैसे हमने आपसे शुरुआत में ये कहा था कि आज के गीतों की कड़ी में कुछ एक खास बात है, इसका जवाब अब तक मुझे नज़र नहीं आया है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि क्या आप इस कड़ी को या इस बात को पहचान पाते हैं क्या कि आज किस तरह के नगमे हैं। आज की भारत संचार माध्यम से जुड़ी लगती है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के जरिए पत्रों का आदान प्रदान, बाद में पोस्ट डाक खाने में चिट्ठियां पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल, उसके बाद डाके का साइकिल पर चिट्ठियां बांटना, बाद में टेलीफोन पेजर का इस्तेमाल शुरू हुआ। सन 2000 से तो मोबाइल का ऐसा ज़बरदस्त दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। पत्रों की जगह मैसेज टेक्स्ट ने ले ली, कुछ ही सेकंड में एक दूसरे से जोड़ देती है, चाहे कितना भी संचार क्षेत्र में हम तरक्की कर लें, लेकिन जो मज़ा पत्र चिट्ठी लिखने में आता है वो मज़ा मोबाइल में बातचीत में या टेक्स्ट में नहीं आता। श्रोताओं ये बात ज़रा सोच कर देखिए कि अगर एक मिनट में या कुछ सेकंडों में हमारे तक किसी की बातें पहुंच जाती हैं या हमारी बातें किसी तक पहुंच जाती हैं तो इतना ही समय लगता है रिश्ते जोड़ने में भी और इतना ही समय लगता है रिश्ते तोड़ने में भी। तो क्या इन रिश्तों के बीच कुछ जो मकाम है या कुछ समय जो है उसकी उसका महत्व है? यानी जो चिट्ठियां होती थीं वो थोड़ी देर से पहुंचती थीं, लेकिन ये जो मैसेज होते हैं तुरंत दोस्ती और तुरंत बिल्कुल कट्टी बट्टी हो जाती है। तो क्या आपकी आजकल किसी से नाराज़गी चल रही है यानी कट्टी हो गई है? कोई आपकी सहेली, कोई आपका दोस्त आपसे बातें नहीं कर रहा तो बस मौका है, जल्दी से मना लीजिए, क्योंकि आप भी इसी संचार से जुड़े हुए हैं और तुरंत तुरंत मैसेजेस भेजने में बिना सोचे समझे भी हम कई बार मैसेजेस भेज देते हैं, तो इस पर भी ज़रा सोचने की बात है। एक और श्रोता ने लिखा है, दूरी चाहे कितनी भी लंबी हो क्यों ना, भावनाएं हमेशा अपने रास्ते खोज लेती हैं। कभी हवाओं की पालकी पर परदेसियों के पैगाम आते हैं तो कभी बेतार तरंगों पर बहते दिलों को जोड़ देते हैं, बहते गीत दिलों को जोड़ देते हैं। रेडियो के सुर लहरियाँ केवल संगीत नहीं लाती, वो अपने साथ यादों की खुशबू, अपनापन और जीने का हौसला भी लेकर आती हैं। हमने आपसे पूछा था आरती फिल्म का वो कौन सा गीत है श्रोताओं जो ग्रामाफोन पे बजता हुआ जिसका शुरुआती मुखड़ा नज़र आता है, यानी जो इंट्रोडक्शन गीत का है वो। एक और श्रोता ने लिखा है कि हाथ के छोटे से फोन में अब दुनिया समाई हुई है, एक मिनट के लिए फोन नहीं मिलता या किसी वक्त बंद हो जाए तो बड़ी बेचैनी सी होती है। कोई भी विशेष समाचार आना, किसी को पेमेंट करना हो या किसी का पैसा मोबाइल पर आने की न्यूज हो, किसी का फोन आना हो, ये बहुत मुश्किल हो जाती है बगैर तार के, बगैर किसी बिजली कनेक्शन के, इस छोटे से फ़ोन से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफ़र कार्यक्रम में शामिल गद्यमयी इबारत की इबादत से निकले शब्द में दूरी चाहे रंगून देहरादून हवाओं पालकी सवार चंचल नैन और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो श्रोता हैं वो टेक्स्ट को इतनी खूबी से पढ़ते हैं और उनमें से शब्दों का चयन करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि संचार साधनों में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने पुराने साधनों को लगभग मानव स्मृति पटल पर केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना दिया है। प्राचीन काल में संदेश जब कपड़े पेड़ों के पत्ते पर लिखकर भेजे जाते थे, इस प्रथा में जो संदेशवाहक पत्र आदि लेकर आता था कहीं कहीं पर इस कार्य में प्रशिक्षित पक्षियों बहुधा बाज कबूतर से भी इस कार्य को अंजाम दिया जाता था। कोई एक ऐसी फिल्म आपको याद आ रही है क्या जिसमें कबूतर जो हैं वो पत्र लेकर जाते हैं? मुझे तो कई सारी फिल्में याद आ रही हैं
और एक फिल्म जो दिलीप कुमार साहब की है उसमें तो इसे बखूबी दिखाया गया है। अगर आपको ये फिल्म याद आ रही है तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज समय बदल गया है, देश विदेश में बसे अपने लोग वीडियो कॉल की तरंगों पर सवार होकर पल भर में हमारे सामने आ जाते हैं, मुस्कानें, आवाज़ें और भावनाएं स्क्रीन पर पार होकर भी दिल को छू जाती हैं। तकनीक ने दूरियों को छोटा कर दिया है पर रिश्तों की मिठास वही पुरानी बनी रहे। सच तो ये है कि प्रेम, अपनापन और यादें किसी तार या सीमा के मोहताज नहीं होती, वो बस महसूस किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो पर बजते किसी पुराने गीत की मधुर खुशबू जो मन के किसी कोने में हमेशा जीवित रहती है। ऐसी जो खुशबुएं हैं, ऐसी जो बातें हैं, उसको जीवित ही रहने दें, इसे दर्द ना बनाएं, क्योंकि दर्द भी गीतों में समाया है जो कहीं कहीं हमारे दिल में दस्तक देता है।

से दिल से महकती खुशबू महसूस कर रहे हैं। उनके ख्याल आए तो बस दीवाना बनाकर चले गए। उम्मीद है आज रेडियो पर बजते हुए गाने सुनने को मिलेंगे और कुछ गीतों को इन्होंने पसंद किया है, यानी कि अपनी जो बात है उसमें लिखा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी प्यार की दास्तान, गम उठाने के लिए लूटी कोई मन का नगर, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। क्या बात है श्रोताओं। वैसे अगर हम ये कहें कि हमारे कुछ श्रोता भी इबारत लिखने में काफ़ी अच्छा एक मुकाम रखते हैं तो ये कहने में तो कोई गुरेज नहीं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, सुरीले सफ़र में आज हम रेडियो की सुरीली तरंगों के साथ गीत संगीत का आनंद लेंगे। संगीत से हर किसी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि जीवन के महत्वपूर्ण पल संगीत से होकर गुजरते हैं, जब चाहे जैसा चाहे मूड जो बदल देता है। संगीत जब भी हम बेहद खुश होते हैं तो दिल से निकलता है, संगीत जब कभी उदास होते हैं तो खुश कर देता है, पलों में भावुक कर देता है और मन में अपने संजोने के लिए इन्होंने बहुत सारे जो आगे और भी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है। और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितनी मेहनत करते हैं, कितना सोचते हैं कि ये कार्यक्रम है इसमें किस तरह से शिरकत की जाए। और इन्होंने भी बहुत सारे गीत जो हैं वो चुने हुए हैं और ये गीत मेल खाते हैं यकीनन। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो आपने बहुत अच्छी लिखी और आपके लिखे पोस्ट या कहे गए वाक्य हमेशा दिल को छू जाते हैं, यही सब कारणों से हम सब के तार विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, और आपकी भी बातें बहुत अच्छी होती हैं श्रोताओं, जिससे हम भी आपसे जुड़े हुए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि दूरी की धुंध में लिपटे वो पुराने दिन आज भी रेडियो की धीमी सरगम बनकर दिल के किसी कोने में बज उठते हैं, जब शामें इतनी तेज़ नहीं भागती थी और इंतज़ार में भी एक मिठास होती थी, किसी अपने का सलाम हवाओं की पालकी पर बैठकर आता था, कभी ख़त बन कर तो कभी किसी फरमाइशी गीत की आवाज़ में, वो छोटा सा रेडियो जिसकी जाली पर उंगलियां फेरते हुए हम जाने कितनी दूरियों को छू लेते थे, तरंगों पर तैरते गीत कभी उदास रातों का सहारा बनते तो कभी भीगी आँखों में किसी बिछड़े चेहरे की रोशनी जगा देते। ये गीत उन परदेसियों के नाम बस इतना सुनते ही दिल की धड़कनों में पुरानी गलियाँ उतर आती थीं, लगता था जैसे देहरादून से रंगून तक फैली दुनिया एक ही धुन में सांस ले रही है। अब वीडियो कॉल में चेहरे तो दिख जाते हैं।

0: फर्जी अभिनेत्री अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था गूंज उठी शहनाई फिल्म का। और आप अगर संगीतकार बता दें तो क्या ही बात है। एक श्रोता ने लिखा है, दूरी कितनी भी क्यों ना हो, दूर दूर बिखरे हुए रेडियो मित्र एक परिधि में आ ही जाते हैं। जब विविध भारती से सुरीला सफर शुरू हो जाता है, ध्वनि तरंगों की पालकी से आता हर परदेसी अपना सा लगने लगता है और अपनी दास्तां बयां करता है। और धन्यवाद भी इन्होंने लिखा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं, दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिलों की आवाज और अपनापन कभी नहीं रुकता। हवाओं, तरंगों और सुरों के सहारे भावनाएं एक जगह से दूसरी जगह तरंगों से पहुंचती रहती हैं, कभी यादें बनकर कभी संदेश बनकर। रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि उन अनकहे एहसासों का साथी है जो लोग एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। बदलते समय में चिट्ठियों की जगह वीडियो कॉल ने ले ली है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट आज भी वही है। अपनापन, यादें, संवाद दूरियों के बावजूद रिश्तों की नजदीकी और सुरों की मिठास को बहुत खूबसूरती से महसूस रेडियो से किया जा सकता है। जी हाँ, और ऐसा ही टेलीफोन से भी होता है।
1: बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ।

श्रोताओ, फिल्मी दुनिया के एक बड़े दिग्गज सितारे थे जो रेडियो से ताल्लुक रखते थे। क्या आप उन सितारे को पहचानते हैं? तो हमें जल्दी से लिख भेजिए।

पतंगा फिल्म का ये गीत और जो टेलीफोन आया वो रंगून से आया, शमशाद बेगम चितलकर की आवाज़ें थीं। श्रोताओं, एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे दूर हो या पास हो, विविध भारती मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो, जहां हर रोज़ हवाओं पर लिखा जाता है सुरीला सलाम हम अनजान श्रोताओं के नाम। फिर वो बरसात की भीगी रात हो या दिन की फुहार, जिंदगी भर भुलाई नहीं जा सकती। सुरों की बरसात ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। जब उसे रूबरू देखा दिल बोल उठा, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, रेडियो से कर गया अजब इशारे, बस और कुछ नहीं कहना, दूरी न रहे कोई, तुम रेडियो के इतने करीब आ जाओ। आइए मिलते हैं 1 बजे, सुरीला सफ़र की बागडोर संभाल रही हैं, इन्होंने लिखा है हमारा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। और हाँ, ये बात तो ज़रूर है, आरती फिल्म का ये गीत है जिसे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना, और ये गीत था कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, जो रिकॉर्ड पर शुरू होता है। और आज जो कड़ी थी वो ये थी कि हमने रेडियो, माइक और टेलीविजन स्क्रीन के गीत चुने थे, ग्रामोफोन भी आरती फिल्म में दिखाई दिया, टेलीविजन स्क्रीन का जो गीत है कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, ये आज हम नहीं आपको सुनवा पाए। अगले कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि आप तक ये गीत ज़रूर पहुँचे।

हमारी एक श्रोता ने लिखा है, श्रोताओं की देखना है आपके टेक्स्ट से मेरे कयास लगाए हुए गीत कितने मिलते हैं, उसी हिसाब से मैं अपने आप को मार्क्स दूंगी। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, तो भाई आप अपने गीत देखिए और ये भी गीत आप सुन चुके हैं तो बस मार्क्स दे दीजिए।

खामोशी फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज़ में, गुलजार के बोल थे हेमंत कुमार की तर्ज थी। श्रोताओं, आपके सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: श्रोताओं नमस्कार, आज है विश्व दूर संचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। विश्व दूर संचार दिवस प्रत्येक वर्ष के 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन मानव सभ्यता के संचार के महत्व, उसकी प्रगति और उसके भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए समर्पित है। आज का युग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, यानी सूचना और प्रौद्योगिकी का युग, जहां दूरसंचार ने दुनिया को एक छोटे से गांव में परिवर्तित कर दिया है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को दूरसंचार के महत्व के प्रति जागरूक करना है, डिजिटल विभाजन को कम करने के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

दूर संचार का अर्थ है दूरी पर स्थित व्यक्तियों का या स्थानों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना। पहले के समय में संदेश पहुंचाने के लिए दूत, कबूतर या डाक का सहारा लिया जाता था, जिसमें काफी समय लगता था। परंतु आज के मोबाइल फोन, इंटरनेट, उपग्रह और अन्य आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कुछ ही सेकंड में संदेश दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है। यह परिवर्तन ना केवल तकनीकी विकास का प्रतीक है, बल्कि मानव

जीवन को सरल और गतिशील बनाने का आधार भी है। विश्व दूर संचार दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के द्वारा की गई थी और 17 मई 1865 को इस संगठन की स्थापना हुई। दूर संचार का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कक्षाएं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल पुस्तकालय ज्ञान को कितना सुलभ बना देते हैं। चिकित्सा के लिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों से सलाह ली जा सकती है। व्यापार उद्योगों के लिए ई कॉमर्स और डिजिटल लेन देन से आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है। सामाजिक जीवन में भी सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।

0: What is mobile number? What is your smile number? What is your style number? Karo kya dial number?
1: हालांकि दूर संचार के विकास के साथ कई सारी चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता की समस्या, डिजिटल असमानता, ऐसी कई सारी गंभीरता से विचार करने वाली बातें भी समक्ष आती हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तकनीकी सुविधाओं का अंतर एक बड़ी चुनौती हमारे समक्ष है, इसे भी दूर करना है। तो इन्हें दूर करने के लिए बहुत सरल सी बात है कि हम अपने आप को साइबर अपराधों से बचा कर रखें। यानी हमारे पास अगर कोई OTP नंबर पूछता है तो वह हम उसे ना दें, या फिर हमारी कोई अपनी गोपनीय बातें या गोपनीय जानकारी सभी के समक्ष प्रस्तुत ना करें। इसके साथ ही और भी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जिनके तहत हम हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। विश्व दूर संचार दिवस हमें अवसर प्रदान करता है कि हम इस क्षेत्र में उपलब्धियों का मूल्यांकन कर लें, भविष्य की दिशा तय कर लें और अपने जीवन को डिजिटलाइज करके तकनीकी रूप से निर्माण कर सकें। दूरसंचार आधुनिक जीवन की धड़कन बन चुका है और यह सूचना का ही नहीं रह गया माध्यम केवल, यह बन चुका है माध्यम प्रगति का, विकास का और वैश्विक एकता का। इसके महत्व को समझते हुए विवेकपूर्ण और सकारात्मक तरीके से हमें इसका उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और अधिक जुड़ी हुई दुनिया में जीवन व्यतीत कर सकें, ऐसा समाज देना है। आज के दिन का यही उद्देश्य है।

आधुनिक तकनीकी युग में चार कदम संभल कर चलिए और चार कदम आत्मविश्वास के साथ, और जी लीजिए अपने जीवन को पूरी पूर्णता के साथ में। आज की त्रिवेणी से आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
3: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
4: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
3: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
5: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
6: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
2: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5,00,000 लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
7: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य

0: संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर के युगल सुरों में, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज़,

0: तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज।
1: प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म थी गंगा की लहरें। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

कपूर की आवाज़ में अनमोल मोती फिल्म का ये गीत था, राजन कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत का। तो मनचाहे गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। हो चला है इस कार्यक्रम का वक्त। आपके ढेरों पत्र हम तक पहुंचे हैं श्रोताओ, और पहुंच भी रहे हैं, जिनमें आपके प्यारे प्यारे से नख़मे हैं। आपके कुछ इन्हीं सरगमी गीतों से हमने सजाया है आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम। तो सुनिए, कहीं ये आपकी पसंद का गीत तो नहीं।

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक ने।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे, और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी और अभिजीत गवाड़कर, राही भी यहीं से, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाड़कर की ये फरमाइश थी। मंचाई गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत।

इस गीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेड़ तहसील तेलहरा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार अढ़िया, सौभाग्यवती भारती अढ़िया, पारस पायल, श्वेता अढ़िया और उर्वी बेन अढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओ, लेकिन अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहाँ से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक और ज़िला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने, और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओं, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतज़ार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाज़त। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती। नाट्य तरंग,
1: आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला,
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है। ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
2: जी, अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा।
3: अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप?
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
3: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
3: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है।
0: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
3: हम निश्चिंत हुई आर्य।
2: अनसुया, देख तो वो मृगछौना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
3: हाँ, चलो इसे इसकी माँ के पास पहुँचाए।
1: अरे अरे, मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
3: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
1: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुया, चली गई।
0: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक यहाँ उपस्थित है
1: जी।
0: कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा छलूं या?
1: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
0: पाप?
1: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
0: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
1: अब जाने भी दीजिए मुझे।
0: क्यों जाने दूं तुम्हें?
1: पुरवंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
0: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
1: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूं आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
0: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
1: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
0: क्या उलझन है तुम्हारी, बताओ तो।
1: अब कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो।
0: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो पूरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
1: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
0: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
1: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। किंतु आप मेरा हाथ तो छोड़िए।
0: नहीं, अभी नहीं छोड़ूंगा।
1: तो फिर कब?
0: मुझ प्यासे भंवरे को तुम्हारे अधर पुष्प का रस मिल जाए तब।
1: ये क्या कर रहे हैं आप?
4: अरे चक्री, आप अपने प्रिय से विदा ले, रात आ पहुंची है।
1: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्या गौतम इधर ही आ रहे हैं। आर्या, आप इस वृक्ष की ओट में छिप जाइए,
0: ठीक है।
4: शकुंतला अब कैसी हो बेटी, शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
1: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ताप भी कुछ कम हो गया है।
4: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
1: अच्छा,
4: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
1: हाँ चलो माँ। चलना ही होगा, अब पछताने से रोने कलपने से क्या होता है। मन, जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बने रहे, अब तो अतृप्ति की इस पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाली रथा कुंज, विहार के लिए बहुत शीघ्र मैं फिर उपस्थित होंगी और तब तुम अतृप्त नहीं रहोगे।
0: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी मैं चूम नहीं सका। अब इस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर गिरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
5: बचाइए, बचाइए राजन, बचाइए, यहाँ वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर मंडराने लगे हैं। तपोवंती पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
6: ओ, इन राक्षसों ने फिर से उठा लिया, मैं अभी जाता हूँ।

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे, तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं?
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया। ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कण्व को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और सहयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुया, पिता कण्व भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है? कुटिया में कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।
2: अरे ओ दुष्टा, अतिथि का अपमान करने वाली शंसन, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसी तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा। वो तुझे भूल जाएगा। वो तुझे भूल जाएगा।
1: अनर्थ हो गया। लगता है अपने बेसुधपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
0: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटा ले। तब तक मैं अर्ध का जल लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी जा। ओह हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।

0: कल्पना के पास से ही आ रही हूँ। पिता कर्ण वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
1: आशीर्वाद दे रहे थे?
0: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
1: हे भगवान।
0: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
1: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंपदा, पिता कण्वा को इस घटना का पता कैसे चला?
0: आकाशवाणी से।
1: आकाशवाणी से?
0: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्वा जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे, आकाशवाणी हुई।
2: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
1: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली। तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
0: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
1: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
0: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
3: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
0: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
1: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देख तो अनसुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, ये पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है।
1: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
2: अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
1: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
1: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
2: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
2: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
1: माँ,
2: माँ, प्रियंपदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो। अच्छा।

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे ग्रस्तों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तात कर्म इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवन।
0: आ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

0: शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल हो, धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष हो, इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता हो, और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।
1: प्रियंवदा, मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
2: तपोवन से बिछुड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, ये तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो, औरों ने नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणियां भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही हैं। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
1: बाबा, बाबा, बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिल लूं। बाबा।
3: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
1: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो, आम के वृक्ष के अनुराग में अपनी बहन को भूलना नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या। अनुसुईया, मेरी सखी, तुम इसका ध्यान रखना।
3: बेटी, निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप वर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
1: अरे, ये मेरा आंचल कौन खींच रहा है?
4: ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।
1: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख, मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे।
5: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
3: हाँ शारंग्रह, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
6: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
3: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन, हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
1: बाबा,
3: बेटी, पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
2: बाबा,
3: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
4: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा।
2: प्रियमता आओ शकुंतला, हमसे गले तो मिलो।
4: सखी तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे?
3: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहाँ रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
4: अनुसुईया, शकुंतला, तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी? बोलो।
3: इतने अधीर न हो, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
2: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना।
4: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी?
2: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
4: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।
2: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
6: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
3: हाँ शरणक्रम, अब तुम लोगों को जाना ही चाहिए। जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक इस समूची पृथ्वी की सौत बनकर राज करो, और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ। यहाँ के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग

कन्या सचमुच प्रायधन होती है। शकुंतला को आज उसके पति गृह भेजकर

0: कितना संतोष है।
1: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।
2: जहां पे सवेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या?
0: 1993 फिल्म।

0: साहिबा।
1: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
2: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
1: जी जी जी।
2: हाथ पाथ देखा उन्होंने, गड़बड़ है क्योंकि जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म, और एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
2: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
1: पिछले एपिसोड में आपने सुना, रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं, जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
2: बसेरा का भी इसी तरह था भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई,
1: हाँ,
2: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया।
1: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की बात करते हैं।
2: करिए।

0: मतलब दीवार के बाद का थॉट था।
1: हाँ मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी वो, बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ। और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया। तीन चार फिल्मों में असिस्टेंट था ना मैं,
0: जी जी
1: सारी फिल्म में, त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर सिटिंग में स्टोरी सिटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
0: जी,
1: वो भी अमेरिका टूर की। तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा, ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ, और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूँ तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर। तो जो भी हो, आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट हैं, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटे भी जाएंगी वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था, मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटो एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी। तो एक काम करो, तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम, मैं करूँगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
0: जी।
1: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन वलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
0: जी। हाँ। जी जी,
1: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया। फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है। तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है, और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
0: ओके ओके,
1: जो सब्जेक्ट सुनाया
0: जी,
1: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर था राइटर
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर लें तो। मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर, और आप लिखे अगर तो ये स्टोरी आइडिया है। तो उन्होंने भी सुना, उन्होंने कहा ये आर्ट फिल्म का आइडिया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब ओरिजिनल तो जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो, बाकी जो है बहुत कम आया उसमें। तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर, मतलब कमर्शियल पिक्चर, बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं, कुछ और डालते हैं। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे तीन चार साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ
1: ये करे। तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी ही दोस्त, उनका ही करना है ये सब। तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उस तरह का।
0: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
1: रिस्की था
0: जी,
1: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
0: जी,
1: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था, हम लोग एक्साइटेड हो गए। तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
0: अरे बाप रे,
1: उन लोगों ने अपने ज़माने में मोहब्बत की थी,
0: हाँ हाँ,
1: और आज सेम चीज़ ये बच्चा कर रहा है, और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आहिस्ता से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग हैं, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी हैं उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
0: सही कहा जी।
1: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा कह रहे हैं, बोला हाँ यार ये तो है देख ले तू। तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में से, शुरू में जो सोच रहे थे हम, और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
0: जी,
1: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
0: जी,
1: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
0: जी जी जी जी,
1: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
0: जी।
1: तो मुझे राखी जी ने ऐसे ही पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
0: सीधे कह दिया।
1: हाँ
0: फिर सुनाया,
1: फिर उन्होंने कहा तुम बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूँगी
0: जी।
1: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना,
0: हाँ।
1: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा क्यों छोटा है, फला क्यों नहीं, मेकअप रूम अच्छा नहीं है, कभी कोई बात नहीं की
0: जी जी जी।
1: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया उन्होंने। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ही करूँगी।
0: वाह।
1: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा, वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी हैं।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
0: अरे वाह।
1: असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई?
0: हाँ।
1: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था ना,
0: बहुत बड़ी बात,
1: नया बन रहा था।
0: पहली फिल्म थी आपकी?
1: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस ढंग से। वो तो उस वक्त तक, आज भी और उस वक्त भी, जिसको नहीं करना वो जाओ भाई दूसरे के पास जाओ, हम नहीं करेंगे
0: जी।
1: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर, जो होना था 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
0: हाँ हाँ।
1: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे तो वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है यश जी, जैसा आपको लगे। उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन, अगली पिक्चर जो थी मेरे ख्याल शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन जी रिलीज कर रहे थे।

0: क्या मौसम है, चल कहीं दूर
1: अच्छा,
0: निकल
1: बहुत क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कर रहा है। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यश जी से थोड़ा सा रूठा था दूसरे आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए।
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम डाक के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिक बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा,
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली,
1: वो जूली भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप,
0: कुंवारा बाप मिली।

0: तो अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया, मैंने जैसी चीज़ कहा ये जी, तो ख़याम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा ज़रा मुश्किल होता है तुझे, बट एनीवे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तो मैं इससे मिलने गया। बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया, करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सेटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे। बोला करूँगा, और उसने पिक्चर ले ली। उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छे गाने चले।
0: बहुत नहीं, फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास,
1: अच्छा
0: करने के लिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूँगा।
1: ओ,
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था घर।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो कुछ हुआ था ऐसा।
1: हाँ, हाँ।
0: मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और लता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, ऐसा तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ,
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है। मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब।
1: बिल्कुल, उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर।
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है?
0: भाई इसमें सारे गाने अच्छे हैं
1: जी।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी,
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो जियोम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसरों ने कह दिया था आओ मेरे साथ करो पिक्चर, एक एक ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो है। हुआ ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, अगर साइन में रहता तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय वाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसने कहा शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था थोड़ी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलाते थे थोड़ी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर
0: हाँ
1: मेरी ये कंप्लीट हो तो शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अगली
0: हाँ।
1: वो करे तू भी कर एक पिक्चर, दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा, तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेज दे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है कि रमेश तलवार को नहीं ऐसा बोलता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे
0: हाँ।
1: उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली
0: हाँ।
1: बचेरा की। उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
0: मराठी
1: मराठी में,
0: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के
1: हाँ, हाँ। वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
0: जी,
1: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया। तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदत से फटाफट करते थे
0: जी,
1: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे एंजॉय
0: हाँ।
1: करते थे लाइफ को, वो छः महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस एक महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए।
0: यस
1: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, एक महीने बाद आऊँगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया था। तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं ये हैं, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा
0: बाबा
1: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
0: पुरानी दोस्ती है ही,
1: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी गुलजार पापा
0: जी,
1: सागर को सागर पापा बुलाता था, गुलजार पापा मिलने आऊँ, आ जा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे, आपका और आर डी बर्मन का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप।
0: बाबा
1: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं वो अजीब सा लगेगा डायलॉग एंड वो नहीं करना, तो मैं स्क्रीन प्ले लिख स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगे कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ, उन्होंने नहीं सुना। तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, तो मेरा मद्रास की तरफ ज़्यादा था मद्रासी फिल्म की तरह ज़्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, वो गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं
0: हाँ, ये कौन है?
1: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे, अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन
0: ओके,
1: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था, उनका उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूँगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो,
0: उन्होंने ही बोला
1: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा का कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को तो बोले मैं अभी फ़ोन करती हूँ, उन्होंने फ़ोन लगाया। रेखा ने कहा मैं यहाँ जू पार्लर स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ
0: हाँ।
1: तो रमेश को मेरे पास भेज दो, तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे पुराने किसी के देख रही थी और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा जी ऐसा सुना लो लंच पे खाना खाओगे, मैंने कहा नहीं खा के आया हूँ। अच्छा दो मिनट में मैं खाया, उन्होंने फटाफट खाना खा आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी, मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
0: डन हो गया।
1: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
0: वाह वाह वाह क्या बात है।
1: मैंने आके रमेश बैल को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया, रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं। अब सब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा। शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे, हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है और ऋषि कपूर, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक इलस्ट्रेटेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
0: वाह वाह वाह।
1: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया, सर एक प्रॉब्लम है बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चर उनके सामने, उन्होंने मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरी सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपका आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुँच गया सुबह उनके फ्लैट पे, उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना सिर्फ मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में। चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी, रोल छोटा था 420 की। मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को।
0: जी जी जी।
1: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड। गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ।
0: अरे बाप रे,
1: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊँ लोग कहें शशि कपूर, ऐसा होना।

0: मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया,
1: हाँ
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया।
1: ये दूसरे आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी में ये, मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है,
1: हाँ,
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आप कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके
1: हाँ,
0: सामने?
1: हाँ।
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो आ जाओ घर पे, आ जाओ सुबह हाँ। नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे
0: और फिर कर। अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे, करूँगा तेरे। ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहाँ पे थे, और मुझे उन्होंने कहा वहाँ पहुँचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूँगा मैं।
1: बसेरा के लिए हाँ हो गया?
0: हाँ हो गई। और मतलब यह है कि डेटें तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा, तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा डेटें, जनवरी में करो, दिसंबर जनवरी में। तो ये कुछ अप्रैल मई जून था ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है कि बोलो ठीक है रॉडी, वैसे भी तू एक सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर सब ये हो गया। ऐसे मतलब क्या कब दो और दो चार चीज़ें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं?
1: नहीं, बहुत अच्छे रहे थे मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी, अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, और ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे, दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया, स्पेशल डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूँगा। बैठे हुए हैं, सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, वो आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो, तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती हैं। सेट पे आओ, शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी।
0: वाह वाह।
1: चाहे ट्यूसडे है, चाहे सैटरडे है, या वो गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड। ट्यूसडे नहीं करूंगा, सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है।
0: जी जी जी जी।
1: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ।
0: क्या
1: और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे, करते थे वहाँ आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहाँ पहले शेव करते थे।
0: अच्छा, क्लीन लुक के लिए
1: एकदम।
0: वाह वाह वाह।
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट ही करनी शुरू की।
0: हाँ।
1: वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार।
0: हाँ।
1: मेरे तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो कहता यार रोल छोटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
0: जी,
1: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा
0: जी।
1: मैंने कहा ये शर्त भी मंजूर है। और वो आया आउटडोर में और उसने वहाँ शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ, ये भी आकर रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहाँ पे, अपना गुलशन बावरा, रमेश बैल, सब ये सब, और बातचीत करने में कुछ बोलते, बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए और 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे फिल्म दिखा सकता, ऐसे नहीं ट्रायल रख सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा कर, मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर वोट सीन वीन सब मैं रीडिंग करवाता था, सब करवाता था। और एंड तक उसने जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो, तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूँगा तेरी पिक्चर,
0: बाबा
1: वही बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, फिर मैं पालील पे आया तो 7 वाले बंगले में था वो, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है, वो क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं, बियर पिएगा। वहाँ पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहाँ बार थी ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बाहर बर्फ गिरी हुई है, और मैं ठंडू करके आया, ठंडी में कांप रहा हूँ, साले ये मर जाएगा, कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कोन्याक पी? नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता। अरे ये शराब नहीं होती।

0: फिर यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन में डाला हुआ है।
1: अच्छा,
0: यश जी को मैंने सुनाया था कोनेक शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोनेक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया था उसने मुझे। फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ। तो वो बुला लेता था बियर पीनी है, तो मैं गर्म बियर पीता हूँ।
1: अच्छा।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

FM 104.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: ಶಿವನೇ ಗಜಿರಾಜ್
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कल्याणपुर कोटबहरा घाघी टिकरा मोहनपुर हरिपुर सुंदरगंज बोझा मायापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये मिंडारी प्रेमनगर भगवानपुर नवापारा चिनिया महावीरगंज रामपुर कनक कुंदीकला जामदोहर अखोरा बदौली जवा खाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये लक्ष्मणगढ़ जगन्नाथपुर सायर ससकालो मुड़ापारा सुखरी भंडार सरगा ढोढ़ागांव बोड़ाझरिया घासीडी घड़गांव बैगहवा बरडाण कंडराजा चोरकी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर जामचुआ बिलासपुर चरईमारा रानी कोम्बो हस्तिनापुर खड़ा माचा पीठा आमा राजा आमा महेशपुर झिमकी कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ बाकारुमा कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये गिरसा पोटिया आमगांव रुपुंगा तेजपुर बेहरामार बनहर औरानारा पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कलमी टिकरा गिरारी गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा लालडी झुनकीडी कुकरी कादर डंग बोरा कोदवारी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये बंगूरसिया नवागांव चक्रधरपुर जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी नवापारा सरायपाली गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीद कोठारी गुड़ागढ़ फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारी पानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
0: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:05 हुए हैं। सुने कार्यक्रम विवरण, भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे 5:10 पर चित्रपट संगीत, लेकर आएंगे 5:30 पर जिले की चिट्ठी, 6:05 पर 6:30 पर कार्यक्रम कानून के बाद आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत होगा 6:20, 7:00, 8:30 और रात 10:00। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। चौपाल का समय रहेगा 7:20 का, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा ढैचा लगाएं और मृदा स्वस्थ बनाएं। नसीहत में सुनेंगे फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व। गैर फिल्म गीत 8:20 पर पेश करेंगे।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भजन संध्या भक्ति संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वीणा सहस्त्रबुद्धि के गाए कुछ भजनों को।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

वीणा सहस्त्रबुद्धि की गाय कुछ भजनों को अभी आप सुन रहे थे। संगीत दिया था पुरुषोत्तम उपाध्याय और वीणा सहस्त्रबुद्धि ने। श्रोताओं, इसके साथ ही भजन संध्या कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 14.7 MHz पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजों में सुनिए ऐतराज फिल्म के गाने को। हिमेश रेशमिया ने धुन बनाई है, समीर ने इस गाने को लिखा है।

0: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

0: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

श्रोताओं, संदेश से पहले आप सुन रहे थे अभिजीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में पहचान फिल्म के गाने को। समीर ने गीत लिखा था, आनंद मिलिंद ने धुन बनाई थी। अब सुनिए फूल फिल्म के इस गाने को। कुमार सानू और साथियों की आवाजों में गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत आनंद मिलिंद का।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: संदेश पहले आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल कुमार सानू को सड़क फिल्म के गाने में। समीर ने गीत लिखा था, नदीम श्रवण ने संगीत दिया था। कार्यक्रम में आप सुनिए सिर्फ तुम फिल्म के गाने में अनुराधा पौडवाल और हरिहरन को। नदीम श्रवण ने धुन बनाई है, शब्द रचना समीर के हैं।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के गाए गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है FM बैंड पर। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यवसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी में लीजिए सुनिए खैरागढ़ छुई खदान गंडे जिले की चिट्ठी। आलेख विनायक नागवंशी का है।
3: नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, सुशासन तिहार के तहत इन दिनों जिले में जन समस्या निवारण शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले दिनों सरोधी गांव के पूर्व माध्यमिक शाला परिसर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार सरकार की जवाबदेही और जनता तक सीधे पहुंचने का माध्यम है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। कार्यक्रम में वन अधिकार योजना के तहत हितग्राहियों को व्यक्तिगत पट्टे और सामुदायिक अधिकार पत्र वितरित किए गए। श्रोताओं, कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने हाल ही में जिले में संचालित विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में नियर निल्लानार योजना 2.0, समग्र शिक्षा अभियान, कैच द रेन अभियान, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। श्रोताओं, जनगणना 2017

0: इसके तहत जिले में 1 मई से शुरू हुए मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य, इसके तहत अब तक निर्धारित लक्ष्य का 33% से अधिक कार्य पूरा कर लिया गया है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कुल 7 चार्ज क्षेत्र बनाए गए हैं। इनमें खैरागढ़, चुईखदान, गंडई और साल्हेवारा तहसील के ग्रामीण क्षेत्र तथा नगर पालिका परिषद खैरागढ़, नगर पंचायत चुईखदान और गंडई शामिल हैं। जनगणना कार्य के दौरान प्रगणक लोगों के घर घर जाकर आवासीय और गैर आवासीय भवनों, उनकी स्थिति, उपयोग और बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार व्यवस्था से संबंधित जानकारी एकत्र कर रहे हैं। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा बीते 9 मई को लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस और आपराधिक मामलों सहित 39,000 से अधिक प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। इस दौरान लगभग 3,46,00,000 रूपये का अवार्ड पारित हुआ। श्रोताओं, खैरागढ़ के धर्मपुरा स्थित एक गौशाला में गौ विज्ञान, प्राकृतिक खेती और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित पुस्तक गाय एक अनुसंधान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। गौ विज्ञान और प्राकृतिक कृषि पर कार्य कर रहे अखिल जैन ने बताया कि गौशाला में गौ आधारित उत्पादों और जैविक खेती पर लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। वहीं फसल अमृत और मनोहर ऑर्गेनिक गोल्ड जैसे जैविक उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रोताओं, खैरागढ़ चुईखदान गंडई पुलिस द्वारा बीते 7 मई को जिले के सभी थाना और चौकियों में प्रथम थाना दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों के समक्ष लोगों द्वारा रखी गई समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में गातापार में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने लोगों को साइबर ठगी, महिला सुरक्षा, यातायात नियम और नए कानूनों की जानकारी दी। श्रोताओं, खैरागढ़ नगर पालिका द्वारा पिछले दिनों स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। सीएमओ पुनीत वर्मा के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग रखने तथा नियमित रूप से कचरा संग्रहण में सहयोग करने के लिए जागरूक किया। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। श्रोताओं, जिले के 5 केंद्रों में 1 मई से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 20 मई तक चलने वाले इस शिविर में करीब 130 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर में फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, जूडो, फेंसिंग, साइकिलिंग और एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेलों को शामिल किया गया है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले की चिट्ठी। आलेख विनायक नागवंशी का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
2: ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अनुरीमा शर्मा की जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काली रायपुर मा आपातकालीन सेवा डायल 112 के चलत नवा आधुनिक गाड़ी मन ला पठो ही हरा झंडी दिखा के। छत्तीसगढ़ जनगणना काम के चलत अब तक ले 60% ले ज्यादा घर कुरिया मन के गंती के काम कर ले गए है पूरा। और प्रदेश के जनजाति गवई मन तक सरकारी योजना के फायदा पहुंचाए बर काली ले 25 मई तक चलाए जाही जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के अपन 2 दिन के दौरा बेरा काली बिहनिया रायपुर स्थित पुलिस परेड ग्राउंड ले आपातकालीन सेवा डायल 112 के चलत नवा आधुनिक गाड़ी मल्ला हरा झंडी दिखा के पठोही। एकर बाद केंद्रीय मंत्री बस्तर जिला के नेतानार जाही जिहां ले ओमन जन सुविधा केंद्र के शुभारंभ करही। तहां पाछू श्री शाह जगदलपुर के अमर वाटिका मा अमर शहीद मल्ला श्रद्धांजलि देही। केन्द्रीय गृह मंत्री ह कालीच जगदलपुर के बादल अकादमी मा एक ठिन संवाद कार्यक्रम मा शामिल हुई, जिहां उमन शहीद मन के परिवार वाले नक्सल मोर्चा मा तैनात CAPF और राज्य के विशेष सुरक्षा बल पुलिस अधिकारी नक्सल पीड़ित और स्थानीय समाज के प्रतिनिधि मन ले भेंट मुलाकात करके गोड बात करही। अपन दौरा बेरा के दूसर दिन श्री शाह 19 मई के जगदलपुर मा होया मध्य

0: क्षेत्रीय परिषद के बैठका के पगरैती करही। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के चलत अब तक 60% ले ज्यादा घर कुड़िया के गिनती के काम पूरा कर लेगे है। ये अभियान में डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम ले अब तक 48,700 ले ज्यादा ब्लॉक मन ले 29,600 ले ज्यादा ब्लॉक में गिनती हो गए हवे। गिनती काम के मामला में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला सबले आगू है, जिहां 100% टारगेट पूरा कर लेगे है। ये जिला है अपन सबो 528 ब्लॉक में मकान लिस्टिंग के काम तय समय ले आगुज पूरा कर ले है। उन्हें जसपुर और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला में गिनती के काम पूरा हुआ है। एक हर संगे नगर निगम क्षेत्र मन में एक काम के रफ्तार धीमा गति ले दर्ज करेगे है। ये मामला में रायगढ़ नगर निगम सबले निचला पायदान में है, जिहां केवल 4% ले ज्यादा के काम पूरा हो है। उन्हें राजधानी रायपुर में 1,900 ले ज्यादा ब्लॉक मल ले खाली 203 ब्लॉक में गिनती के काम हुए हवे। यहाँ ये बता दन कि प्रदेश में 1 मई ले घर कुरिया की गिनती के काम शुरू हुए है, जो उन्हें 30 मई तक चलही। सुशासन तिहार के चलत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ दौरा बेरा क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला के शुभारंभ करीन। ये प्रयोगशाला के शुरू होए ले रायगढ़ शक्ति और सारंगढ़ बिराईगढ़ जिला मन के पुलिस जांच व्यवस्था ला मजबूती मिली। ये मौका मा मुख्यमंत्री हकीन कि रायगढ़ में ये अत्याधुनिक प्रयोगशाला के शुरू होए ले पुलिस ला सहूलियत मिली और अपराध अनुसंधान ज्यादा सुघर होही। अपन रायगढ़ दौरा बेरा मुख्यमंत्री काली कुसमुरा गाँव में करीबन 103 करोड़ रूपया के कई विकास काम मन के लोकार्पण और भूमिया पूजा करीन। रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ विकास खंड के गंवर घुटरी गांव में 100 दसना वाले अत्याधुनिक अस्पताल बनाए जाही। एला अजीज प्रेमजी फाउंडेशन हा बनाही। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग डहर ले जारी आदेश मुताबिक ये अस्पताल बर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ला 2 हेक्टेयर भूइया 30 बछर बर अस्थायी लीज मा दे गे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है अपन रायगढ़ दौरा बेरा फाउंडेशन ला भूइया आवंटन आदेश के कापी सौंपीन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है ए बछर 1 जुलाई ले कक्षा 9वीं के पढ़ैया लैका मन बर 3 भाखा के पढ़ाई अनिवार्य कर दे है। CBSE है क्लियर करीस कि कक्षा 10वीं में 3 भाखा R3 बर कोनो बोर्ड परीक्षा नहीं होही, उन्हें R3 बर पूरा मूल्यांकन स्कूल स्तर में होही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बू बांचे समाचार डहार। प्रदेश के जनजाति गांव तक सरकारी योजना के फायदा पहुंचाए बर अवैया 18 मई ले जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू होही। 25 मई तक चलैया ये अभियान है प्रदेश के 8,000 ले ज्यादा गांव मन में चलही। आदिम जाति विकास विभाग के ये अभियान में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान ले जुड़े गांव मन ला शामिल करेगे है। रायपुर जिला ला छोड़ के प्रदेश के सबो जिला मन में स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पोषण और पेयजल योजना के फायदा पात्र लोगन तक पहुंचाया जाही। अधिकारी मन गांव गांव में जाके जन सुनवाई करही और वादी सेवा केंद्र मन में मामला के निपटारा होही। ए दौरान सिकल सेल और टीबी जांच बर स्वास्थ्य शिविर घलो लगाए जाही। राज्यपाल रमन डे कहा कबीरधाम जिला के दौरा बेरा आज ढोलबज्जा गांव में बैगा विद्यार्थियों बिहान योजना ले जुड़े बैगा माइलोगिन मन ले मुलाकात करीन। ए दौरान उमन पढ़ैया लैका मन के उखर सपना पढ़ाई लिखाई और भविष्य की योजना मन ऊपर गोट बात करत उमन ला आगू बढ़े बर प्रेरित करीन। श्री डे कहा शिक्षा श्री डे कहा शिक्षा दूत के रूप में काम करैया शिक्षक और जवान लैका मल्ला कहन कि ओमन ड्राप आउट यानी स्कूल त्यागे लैका मल्ला एक घाव फेर ले स्कूल में लाए के प्रयास करें। राज्यपाल हा भोरम देव मंदिर के घलो दौरा करीन और भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करके प्रदेश के रहवैया मन पर सुख समृद्धि के बिनती बिनोइन। उन्हें राज्यपाल हा बेमेतरा जिला के घलो दौरा करीन ए दौरान उमन सर्किट हाउस कैंपस में एक पेड़ माँ के नाव अभियान के चलत पौधा लगाइन। स्थित नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संग्रह उद्यम NSPCL हा बालिका सशक्तिकरण मिशन के तहत एक ठीन आवासीय वर्कशॉप शुरू करे है। एकर शुभारंभ NSPCL के मुख्य महाप्रबंधक और व्यापार प्रमुख नील कुमार शर्मा हा करीन। ए वर्कशॉप में तीर्थखार के गवई जगह के 10 बछर ले 13 बछर तक के उम्र की नोनी मन भाग लेवत हैं। श्री शर्मा हा बतैन की करीबन एक महीना तक चलैया ए आवासीय ट्रेनिंग हा नोनी मन के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित रही। NTPC लिमिटेड के लारा और सीपक प्रोजेक्ट घलो बालिका सशक्तिकरण अभियान शुरू करे है। रायगढ़ जिला के लारा में यह अभियान के शुभारंभ उप पुलिस महानिरीक्षक शशि मोहन सिंह हा करीन। उन्हें बिलासपुर जिला के सीपत में बालिका आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक रजनेश सिंहा करीन। आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के मौका में आज आकाशवाणी जगदलपुर डहाल ले वॉकथन राखेगी। ये वॉकथन हा दंतेश्वरी मंदिर ले शुरू होके कई ठिन रद्दा ले होवत आकाशवाणी केंद्र जगह पहुंचीस। ये आयोजन में आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारी उद्घोषक कंपेयर श्रोता और कर्मचारी मन के परिवार वाले के संगे लोगन मन भाग लीन। ये मौका में आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम प्रमुख चंद्र ऋषि ठाकुर हकीन की वॉकथन के माध्यम ले आकाशवाणी हा स्वास्थ्य अनुशासन और सामाजिक सहभागिता के आरोदे के प्रयास करे है। बस्तर के लैका मन के खेल प्रतिभा ला निखारे बर जगदलपुर में बहुत जल्दी बस्तर के पहला आवासीय खेल अकादमी शुरू करे जाही। खेल और युवा कल्याण विभाग के संचालक तनुजा सलाम हा काली जगदलपुर पहुंच के अकादमी के तैयारी बारे में जायजा लीन। ओमन खेल अधिकारी मन संग बैठका में आवास भोजन खेल सामग्री शिक्षा परिवहन और अन्य सहूलियत के समीक्षा करीन। ए अकादमी में लैका मन ला एथलेटिक्स फुटबॉल और तीरंदाजी के ट्रेनिंग दे जाही। एडमिशन पर बहुत जल्दी चुनाई ट्रायल रखे जाही। इमा 13 से 17 बछर के उम्र वाले खिलाड़ी मन भाग ले सकी। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फेर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काली रायपुर मा आपातकालीन सेवा डायल 112 के चलत नवा आधुनिक गाड़ी मल्ला पठोही हरा झंडी दिखा के। छत्तीसगढ़ जनगणना काम के चलत अब तक ले 60% ले ज्यादा घर कुरिया मन के गिनती के काम कर ले गए है पूरा। और प्रदेश के जनजाति गवई मन तक सरकारी योजना के फायदा पहुंचाए बर काली ले 25 मई तक चलाए जाही जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
2: हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। तमन्ना फिल्म के गाने को सुनिए कुमार सानू की आवाज में। निदा फाजली के शब्द हैं, संगीत में प्रिया है अनु मलिक ने।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: कुमार सानू के गाइस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पल में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम कानून की बात। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: रायपुर केंद्र है, कानून की बात में लीजिए सुनिए जेलों में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदियों के विधिक अधिकार। इस विषय पर अधिवक्ता असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल दुर्ग श्री सौरभ शेंद्रे से ली गई भेंट वार्ता। यह आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति है।

0: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारा विषय है जेलों में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदियों के विधिक अधिकार, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं श्री सौरभ सेंद्रे जी, अधिवक्ता असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल दुर्ग। तो सेंद्रे जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जेलों में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदी कौन होते हैं?
1: जी बिल्कुल सर, कानून व्यवस्था के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति पर किसी अपराध को किए जाने का आरोप लगता है और उस व्यक्ति, जिसे हम आरोपी कहते हैं, उसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत किया जाकर प्रथम सूचना पत्र या FIR दर्ज की जाती है, या किसी न्यायालय में व्यक्तिगत शिकायत, जिसे हम परिवाद कहते हैं, लाया जाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ उस शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। उस व्यक्ति के विरुद्ध वह आपराधिक मामला जब तक न्यायालय के समक्ष लंबित रहता है, या साधारण शब्दों में कहे कि न्यायालय में चलते रहता है, तो वह आरोपी उस मामले में जब किसी भी जेल में निरुद्ध रहता है तो उसे विचाराधीन बंदी या अंडर ट्रायल या हवालाती कहते हैं।
0: जी,
1: इसी प्रकार जब उस आरोपी का अपराध विचारण न्यायालय के सामने प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के आधार पर प्रमाणित हो जाता है और उस न्यायालय के द्वारा जिसके सामने केस चल रहा होता है उस आरोपी को सजा दे दिया जाता है, जिसके बाद उसे निर्णय या जजमेंट के अनुसार सजा भुगताए जाने के लिए जेल भेज दिया जाता है, तब सजा भुगताने वाले व्यक्ति को हम दंडित बंदी या सजा प्राप्त बंदी कहते हैं।
0: जी सर, जैसे कि हमारा विषय ही है आज का जेल में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदियों के विधिक अधिकार, तो सर अब हम ये जानना चाहते हैं कि विचाराधीन बंदी एवं दंडित बंदी को क्या कानूनी अधिकार प्राप्त है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए सर।
1: भारत के संविधान के प्रावधानों अनुसार भारत के नागरिकों को विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा न्याय दृष्टांतों, जिसे हम साधारण भाषा में रूलिंग कहते हैं, के द्वारा भी नागरिकों एवं परदेशी व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है। इसी प्रकार जेल निरुद्ध विचाराधीन बंदी एवं सजा प्राप्त बंदियों के भी अधिकार भारत के संविधान एवं माननीय न्यायालय द्वारा सुरक्षित किया गया है। सर्वप्रथम अन्य प्राप्त अधिकारों में से एक अन्य प्रमुख अधिकार निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का होता है।
0: जी,
1: जेल में बंद व्यक्तियों के लिए यह एक समस्या होती है कि उचित समय पर उनको सही रूप से उनके मामले में क्या कार्यवाही किया जाना है या उनके मामले में आगे क्या कार्यवाही हो सकती है, इस बारे में मालूम नहीं हो पाता है। तब जेल में बंद व्यक्ति, जेल में जो हर सप्ताह बंदियों के लिए परेड होती है, तो विधिक सहायता के लिए वह बंदी जेल अधिकारियों के समक्ष विधिक सहायता लिए जाने की मांग कर सकता है। इसी प्रकार जो हवालाती या विचाराधीन बंदी होते हैं, वे न्यायालय में चल रहे अपने मामलों के संबंध में जेल विजिटिंग लॉयर से भी उचित कानूनी सलाह ले सकते हैं। यदि हवालाती बंदी किसी कारण से अपने मामले में निजी अधिवक्ता या प्राइवेट अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पाता है, तो विधिक सहायता से उसे अधिवक्ता मिलने का भी अधिकार होता है। ठीक इसी प्रकार सजा याफ्ता बंदी या कैदी को अपने प्रकरण में अपील किए जाने के लिए वरिष्ठ न्यायालयों में, जैसे सत्र न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लगाए जाने हेतु उचित विधिक सहायता का अधिकार प्राप्त है।
0: जी,
1: इस विधिक सहायता के अधिकार के अतिरिक्त जेल नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए विचाराधीन एवं सजा प्राप्त बंदियों को अन्य अधिकार, जैसे परिवार के सदस्यों एवं उस विचाराधीन बंदी या सजा या प्राप्त बंदी के अधिवक्ता से मुलाकात करने का समय दिया जाना व उनसे उचित रूप से मुलाकात हेतु उचित व्यवस्था किया जाना, जेल से चिट्ठी पत्र लिखे जाने का अधिकार, न्यायालय में चल रहे मामलों में त्वरित सुनवाई का अधिकार, विचाराधीन बंदी और सजा याफ्ता बंदियों के लिए उचित मेडिकल जांच, स्वास्थ्य परीक्षण करवाए जाने का अधिकार, अकारण हथकड़ी या जंजीरों से बांधकर नहीं रखे जाने का अधिकार, ये समस्त अधिकार बंदियों को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखा जाना है कि महिला जेल बंदियों के लिए एक अलग प्रकोष्ठ होगा, उन्हें किसी भी प्रकार से पुरुष बैरक के समीप नहीं बनाया जाएगा। इसी प्रकार 18 से 21 वर्ष वाले बंदियों के जेल निरुद्ध की व्यवस्था उन विचाराधीन या सजा प्राप्त गंभीर अपराध करने वाले बंदियों से अलग रखना है, ताकि युवा बंदियों पर किसी भी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव न होने पावे।
0: जी सर, जैसे अभी आपने जिक्र किया था हवालाती एवं सजायाफ्ता बंदियों के बारे में, तो सर क्या माननीय न्यायालयों एवं विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा हवालाती एवं सजायाफ्ता बंदियों के

0: अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है उसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी सर, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न मामलों के माध्यम से हवालाती एवं सजायाफ्ता बंदियों के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। पूर्व में जैसे बताया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रूलिंग दी जाती है, तो रूलिंग जो है वो बाध्यकारी होती है। यह बताना आवश्यक है कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम शॉर्ट में नालसा कहते हैं, उनके द्वारा विभिन्न स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी किया गया है, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से जेल में निरुद्ध बंदियों के वैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करने की बात कही गई है। जेल में पैरालीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति की गई है, जिसका एक दायित्व यह भी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बंदी का विधिक प्रतिनिधित्व, लीगल रिप्रेजेंटेशन, उसके न्यायालय में चल रहे मामले में उचित रूप से हो एवं उस जिले में स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण को नियमित रूप से अवगत कराते रहे। जेल विजिटिंग लॉयर्स की भी व्यवस्था की गई है
0: जी,
1: जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवालाती एवं सजायाफ्ता बंदियों को उचित विधिक सहायता एवं विधिक परामर्श मिल सके। इसी प्रकार माननीय नालसा द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम अंतर्गत डिफेंस काउंसिलों की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें वे आपराधिक मामलों में जेल में बंद हवालाती एवं सजायाफ्ता बंदियों को उचित विधिक सहायता, परामर्श एवं समाधान प्रदान कर सके।
0: जी सर, जैसे बंदी हैं जो जेलों में कैद है, उनको क्या निःशुल्क विधिक सहायता दी जा सकती है या उनको आवश्यक क्यों है?
1: जी सर, जेल में जो बंदी निरुद्ध रहते हैं, अमूमन हमें ये देखने आता है कि वो विभिन्न प्रकार से या विभिन्न कारणों से वो निजी अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पाते हैं, या उनको अपने प्रकरण में चल रहे जो कार्यवाहियाँ हैं उसके बारे में अपडेटेड जानकारी, अद्यतन जानकारी नहीं मिल पाती है, उचित समय में उनको सही परामर्श नहीं मिल पाता है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए ही माननीय नालसा एवं सालसा के द्वारा जो SOP जारी किए गए हैं, उसके तहत निःशुल्क विधिक सहायता का उनको अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो प्रवृत्त कानून है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, जिसे हम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कहते हैं, उसके प्रावधानों के अनुसार भी जो व्यक्ति जेल में निरुद्ध है उसको विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।
0: जी,
1: और जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं रहती है, आर्थिक परेशानियां रहती है, कई बंदियों के परिवार से संपर्क स्थापित नहीं हो पाते हैं, उनके परिवारजनों को मालूम नहीं रह पाता है कि वो किस जेल में निरुद्ध है या वो व्यक्ति का केस किन न्यायालयों में चल रहा है, तो यही सब कारणों को देखते हुए निःशुल्क विधिक सहायता देना उनको उचित प्रतीत होता है, और इसी कारण से उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता की पात्रता रहते हुए विधिक सहायता प्रदान की जाती है।
0: जी, विचाराधीन बंदियों को जमानत का अधिकार किन परिस्थितियों में मिलता है, इसके बारे में बताइए सर।
1: जी बिल्कुल सर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न न्याय दृष्टांतों में यह प्रतिपादित किया गया है कि जेल जाना एक अपवाद है और जमानत दिया जाना नियम है। उसी सिद्धांत के अंतर्गत विचाराधीन बंदियों के लिए यह व्यवस्था है कि वो अपने प्रकरण में जल्द से जल्द जमानत लगाए जाने का व्यवस्था अपने निजी अधिवक्ता के माध्यम से या विधिक सहायता के माध्यम से कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो नए आपराधिक कानून आए हैं, उसमें ये भी प्रावधान बताया गया है कि यदि व्यक्ति का एक से अधिक मामला है तो जमानत उसको मिलना मुश्किल हो जाता है।
0: जी,
1: उसके लिए थोड़ा सा जमानत मिलने में समस्या उत्पन्न हो जाती है, और जमानत दिए जाने के जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। वो परिस्थितियां ये रहती हैं कि 7 साल से यदि कम की सजा वाला व्यक्ति है, विचाराधीन है
0: जी,
1: तो उस पे माननीय न्यायालय, माननीय विचारण न्यायालय विचार कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को जमानत दिया जाना उचित है कि नहीं है। इसी प्रकार जमानत के जो अन्य ग्राउंड, अन्य आधार होते हैं, वह यह होते हैं, वह व्यक्ति आर्थिक रूप से अक्षम है, उसके प्रकरण में जो अपराध किए जाने का आरोप लगा है वो गंभीर प्रकृति का नहीं है, यही ग्राउंड्स पर माननीय न्यायालय द्वारा भी जमानत का लाभ आरोपी को या विचाराधीन बंदी को दिया जाता है।
0: जी जी सर, अंत में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, भारत के संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को सम्मानजनक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वह व्यक्ति जेल निरुद्ध हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं विधिक सेवा प्राधिकरणों के द्वारा हवालाती एवं सजायाफ्ता बंदियों के संवैधानिक व वैधानिक अधिकार सुरक्षित किए जाते हैं व उन अधिकारों के उल्लंघन होने पर दोषियों को उचित सजा भी दी जाती है। आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ कि आगामी दिनांक 12 सितंबर 2026 को तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। इसमें राजीनामा योग्य मामले, जिसमें पारिवारिक मामले, चालान के मामले, कम गंभीर प्रकृति के अपराध वाले मामले, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, राजस्व आदि मामले का निराकरण होता है। श्रोतागण से यही अपील है कि लोक अदालत के माध्यम से अपने न्यायालय में चल रहे मामलों को निराकृत किए जाने का प्रयास करें।
0: जी सर, आपने जेलों में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदियों के विधिक अधिकार विषय पर इतनी विस्तृत से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
0: तो श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे श्री सौरभ सेंद्रे जी, अधिवक्ता असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल दुर्ग के। इसी के साथ ही कानून की बात का अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

कानून की बात में अभी आप सुन रहे थे जेलों में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदियों के विधिक अधिकार, इस विषय पर अधिवक्ता असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल दुर्ग श्री सौरभ शेंद्रे से भेंटवार्ता। ये आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: आकाशवाणी का जो रायपुर केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का जो रायपुर केंद्र है, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में।
1: सेल्फी लेंगे,
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है, सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर

0: आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय प्रवास पर आज शाम पहुंच रहे हैं रायपुर। राजधानी रायपुर और बस्तर में अनेक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज धमतरी में करीब 465 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कल से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर अंधर चलने और गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान कल सुबह रायपुर स्थित पुलिस परेड ग्राउंड से आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए आधुनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री बस्तर जिले के नेतानार जाएंगे, जहां वे जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर की अमर वाटिका में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री कल ही जगदलपुर के बादल अकादमी में एक संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे शहीदों के परिजनों, नक्सल मोर्चे पर तैनात सीएपीएफ और राज्य के विशेष सुरक्षा बलों, पुलिस अधिकारियों, नक्सल पीड़ितों तथा स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंच रहे हैं। वे 19 मई को जगदलपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
5: माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 3 दिन का प्रवास है छत्तीसगढ़ का। आज शाम में वो आ रहे हैं, अगले 2 दिनों तक जगदलपुर में रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रम हैं। और 19 को मध्य क्षेत्र परिषद, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये 4 प्रदेश को लेकर एक परिषद है, उसकी मीटिंग है और उसकी अध्यक्षता माननीय गृह मंत्री जी करते हैं, श्री अमित शाह जी करते हैं।
4: सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज धमतरी में आयोजित समाधान शिविर में करीब 465 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर श्री साय ने कुरुद की कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन के लिए 1.5 करोड़ रुपए और पीएम श्री आत्मानंद स्कूल के भवन के लिए भी राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार के तहत रायगढ़ प्रवास के दौरान क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। इस प्रयोगशाला के होने से रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिलों की पुलिस जांच व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं श्री साय ने रायगढ़ में सिंदूर पार्क का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रायगढ़ के विकास के लिए लगातार नए कार्य किए जा रहे हैं और सिंदूर पार्क उसी सोच का परिणाम है। अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने कल कुसमुरा गांव में करीब 103 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड के गवरघुटरी गांव में 100 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। इस अस्पताल का निर्माण अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अस्पताल के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को 2 हेक्टेयर भूमि 30 वर्ष के लिए अस्थायी लीज पर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान फाउंडेशन को भूमि आवंटन आदेश की प्रति सौंपी। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कल 18 मई से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू होगा। 25 मई तक चलने वाला

0: यह अभियान प्रदेश के 8,000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। रायपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और पेयजल योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुँचाया जाएगा। अधिकारी गाँव में जन सुनवाई करेंगे और आदि सेवा केंद्रों में शिकायतों का निराकरण होगा। इस दौरान सिकल सेल और टीबी जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के तहत अब तक 60% से अधिक मकानों की गणना का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस अभियान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब तक 48,700 से अधिक ब्लॉक में से 29,600 से अधिक ब्लॉक में गणना का कार्य पूरा हो चुका है। गणना कार्य के मामले में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला सबसे आगे है, जहां 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। जनगणना के मामले में राज्य में ग्रामीण और दूरस्थ जिलों में काम की रफ्तार संतोषजनक है, लेकिन बड़े शहरों और नगर निगम क्षेत्रों में जनगणना कार्य की रफ्तार चिंताजनक रूप से धीमी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में 1 मई से मकानों की गणना का कार्य शुरू हुआ है, जो 30 मई तक चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमन डेका ने अपने कबीरधाम जिले के प्रवास के दौरान आज ढोल बज्जा गांव में बैगा विद्यार्थियों और बिहान योजना से जुड़ी बैगा महिलाओं से मुलाकात की। इस मौके पर राज्यपाल ने पीएम जनमन आवास योजना के तहत बैगा परिवार को आवास की चाबी सौंपी। राज्यपाल ने भोरमदेव मंदिर का भी दौरा किया और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं राज्यपाल ने बेमेतरा जिले का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। भिलाई स्थित नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम NSPCL ने बालिका सशक्तिकरण मिशन के तहत एक आवासीय कार्यशाला शुरू की है। इसका शुभारंभ NSPCL के मुख्य महाप्रबंधक और व्यापार प्रमुख नील कुमार शर्मा ने किया। इस कार्यशाला में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की 10 से 13 वर्ष आयु वर्ग की 80 बालिकाएं हिस्सा ले रही हैं। श्री शर्मा ने बताया कि करीब 1 महीने तक चलने वाले इस आवासीय प्रशिक्षण में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
1: हम सबने मिलकर इस बार करीब 45 लोकेशंस पे 10,000 बच्चियों को अपने साथ जोड़ने का एक प्रोग्राम बनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों की जो बच्चियां हैं, 4 वीक का एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम उनकी ग्रूमिंग के लिए करेंगे और जो उनके जीवन में जो लक्ष्य हैं, जो उनके सपने हैं, उसमें उनको बुनने में हम उनकी सहायता करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कला और बाकी मार्शल आर्ट्स, योगा, इस तरह की बहुत सारी और भी विधाएं उन बच्चियों को सिखाएंगी।
0: NTPC लिमिटेड के लारा और सीपत परियोजना में भी बालिका सशक्तिकरण अभियान शुरू किया गया है। बस्तर के बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए जगदलपुर में जल्द ही बस्तर की पहली आवासीय खेल अकादमी शुरू की जाएगी। खेल और युवा कल्याण विभाग की संचालक तनुजा सलाम ने कल जगदलपुर पहुंचकर अकादमी की तैयारियों का जायजा लिया। इस अकादमी में बालकों को एथलेटिक्स, फुटबॉल और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रवेश के लिए जल्द ही चयन ट्रायल आयोजित किया जाएगा। इसमें 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी जगदलपुर द्वारा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। वॉकथॉन दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी केंद्र परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस आयोजन में आकाशवाणी के अधिकारी, कर्मचारी, उद्घोषक, कंपियर, कर्मचारियों के परिजन तथा आम नागरिक ने भाग लिया। इस अवसर पर आकाशवाणी जगदलपुर की कार्यक्रम प्रमुख चंद्र ऋषि ठाकुर ने कहा कि वॉकथॉन के माध्यम से आकाशवाणी ने स्वास्थ्य, अनुशासन और सामाजिक सहभागिता का संदेश देने का प्रयास किया है।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी जगदलपुर द्वारा वॉकथॉन आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना और आकाशवाणी की जनसेवा की परंपरा को और अधिक मजबूत करना था। आकाशवाणी जो है वो पिछले 9 दशकों से समाज, संस्कृति और जन भावनाओं को जोड़ने का कार्य कर रही है और इसी श्रृंखला में ये आयोजन भी जन जागरूकता एवं जनसंपर्क का एक प्रयास था हमारा।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और चक्रवात के कारण आंधी तूफान और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इस बीच गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के राजमेरगढ़ गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से 11 मवेशियों की मौत हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा का निधन हो गया है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने शोक व्यक्त किया है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा में जिला कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमत के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने और रसोई गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। दुर्ग जिले में भिलाई नगर में आज तेज रफ्तार कार ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 1 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कबीरधाम द्वारा 20 मई को सुबह 10:30 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और जांजगीर चांपा जिले के कनस्ता और केवा गांव में खनिज विभाग की टीम ने रेत के अवैध उत्खनन करते 4 वाहनों को जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय प्रवास पर आज शाम पहुंच रहे हैं रायपुर। राजधानी रायपुर और बस्तर में अनेक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुशासन त्यौहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज धमतरी में करीब 465 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कल से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बजे हैं। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। उदित नारायण की आवाज में सुनिए वीर जारा फिल्म के गाने को। संगीत दिया है मदन मोहन ने, शब्द रचना है जावेद अख्तर के।

0: आकाशवाणी F90।
1: जय जोहार, मैं राहुल मरार, मैं रायगढ़ का रहने वाला हूं और काफी लंबे समय से आकाशवाणी का पक्का श्रोता रहा हूं। आज हमारा अपना आकाशवाणी 90 साल का हो गया है तो मुझे और मेरे परिवार को बहुत ज्यादा खुशी हुई। सालों से मैं रेडियो सिर्फ एक बजने वाली मशीन नहीं है बल्कि हमारे घर परिवार के एक सदस्य के जैसा है, जिसकी आवाज के बिना हमारा दिन पूरा नहीं होता। मुझे आकाशवाणी के लगभग सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन किसानवाड़ी मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम है। इसमें खेती किसानी से लेकर के काम की बातें, मौसम का हाल, सही जानकारी ये सब मिलती है, तो हमारे किसान भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे खेती के नए तरीकों को समझने में काफी मदद भी मिली है। मुझे हमर लोकगीत सुनना भी बहुत ज्यादा पसंद है। रेडियो पर अपने छत्तीसगढ़ के मीठे लोकगीत बजते हैं, हम अपनी मिट्टी से और गहराई से जुड़ जाते हैं। इसे सुनकर दिन भर की सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। आजकल के मोबाइल, टीवी, इंटरनेट के इस नए जमाने में भी रेडियो सुनने का जो असली मजा और सुकून है वो किसी और चीज में बिल्कुल नहीं है। आकाशवाणी ने पूरे 90 सालों तक हमारा हर कदम पर खूब साथ निभाया है। मैं आकाशवाणी रायगढ़ में काम करने वाले सभी लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यही चाहूंगा कि हमारा और आपका यह प्यारा रिश्ता ऐसा ही हमेशा हमेशा बना रहे।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
5: संदेश पहले आप सुन रहे थे शूरवीर फिल्म के गाने में कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत से सजाया था। SH बिहारी ने गीत लिखा था। सलीम बिंजोरी की रचना को सुनिए सोनू निगम की आवाज में। फिल्म का नाम है तुमको ना भूल पाएंगे। संगीतकार हैं दब्बू मलिक।

सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। 7:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल के बैठ की माँ कार्यक्रम सुनैया जम्बो संगी संगवारी मनला स्वप्निल के राम राम जय जोहार। त संगवारी हो आज के बैठ की में महामन आगे हन और आनी बानी के गोट बात के विषय अलग अलग लेके आने हन। त चला तो कुछ जानबो कि आज हमन काका बात करबो। आज हमन जानबो कि कैसे हमन ढेचा लगा सकत हन और माटी के स्वास्थ्य ला बढ़िया कर सकत हन। हमन बात करबो कि फसल में कैसे सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते ओहर कैसे काम करते। ओकर अलावा हमन ये भी जानबो कि कीटनाशक जो जहरीला हमन उपयोग करत हन ओकर जगह हमन जैविक कीटनाशी अभी के समय के हिसाब ले कैसे उपयोग कर सकत हन ओला हमन जानबो। कैसे ओकर उपयोग करना है ओहर कैसे पर्यावरण पर लाभकारी है एला भी हमन जानबो। संगे संग हमन जानबो कि आज के किसान में कौन हमार मुर्गी पालक संगी मन हमन ला मिले रहीन और काका गोट बातचीत हुई से ओला हमन सुनबो। गीत संगीत के तो बात होते च रही ता दो तीन ठीक हमन गीत भी सुन लेबो और आनी बानी के और भी विषय है जेकर बारे में हमन बातचीत करबो। चल आज के बैठकी के शुरुआत करबो और सबले पहली आप मन ला बताना चाहबो कि आपन जैसे कि जाना था गर्मी बहुत ज़्यादा बाढ़ी से अपन कोनो भी काम अगर बूता में जा था तो सुबह सुबह निकल जावा या फिर शाम के वो काम ला करा। मझनिया कोई भी काम ला मत करा काबर कि वो समय में धूप बहुत ज़्यादा रहते तापमान जो है वो हर अब्बड़ ज़्यादा है। अभी तो सूरज देवता सुबह 7-8 बजे ले ही बहुत ज़्यादा तेजी आगे से। अगर हमन पशुधन के बात करबो तो आप मन के जो पशुधन है ओला बढ़िया सुबह सुबह नहलावा चारा वारा खिलावा और धूप में चरे बुले बर जान झन देवा। और अगर आप मन ओला चरे बर बुले बर जानना देना चाह था तो या तो सुबह सुबह ही दे देवा या फिर शाम के समय में थोड़ कुन टाइम पर देवा। मगर दिन के समय में आप मन कोशिश करा कि ओला गौठान में या फिर आप मन जहाँ ओला राख था बांध के वहाँ बढ़िया राखा। वो मन के रहे के जगह में आपन कोशिश करा या तो कूलर लगा देवा या तो पंखा लगा देवा। जालीदार हवादार जगह रखा वो मन साफ सफाई पानी के सफाई साफ ठंडा पानी भरना दोनों टाइम वो मन के सफाई करना हरा चारा की उपलब्धता ये सब ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि मन से तका है चीज़ ला बता सकत है कह सकत है ओकर तबीयत बार बार खराब होते तो वह डॉक्टर करा जा सकते मगर हमार पशुधन मन कैसे बताही। तो आपन ला ध्यान रखना पड़ी कि ओमन के जो स्थिति परिस्थिति है कैसे है ओमन के दिनचर्या में का बदलाव आते और वो बदलाव ला देखत हुए आपन ला ओमन के देखभाल करना चाहिए। आपन ला कोनो भी स्थिति में लगा थे कि ओमन नॉर्मल नहीं है ओमन कम खाते या ओमन अलसियाते या कोनो भी ऐसी स्थिति है तो आप मन ला चिकित्सकीय सलाह जरूर लेना चाहिए और कोनो भी दवाई के उपयोग आप मन के पशुधन में बिना चिकित्सकीय सलाह के नहीं लेना चाहिए। और जैसे गर्मी में भी कोनो खाना बाजगी से बासी होगी से तो अगर आप मन ओला नहीं खाता तो अपन पशुधन ला भी ओला झन खावा काबर कि अगर आप मन की तबीयत खराब हो सके थे तो ओकर भी तो तबीयत खराब हो सकते और फिर ओकर जो नुकसान है ओला आप मन ला ही झेल ना पड़ी। और दूध की उत्पादकता अगर कम हो जाते अभी के समय में तो अपन ला ध्यान देना है कि अपन कैसे ओमन ला हरा चारा और आनी बानी के चीज ला खावा सका था जेकर ले ओमन के दूध उत्पादकता के जो क्षमता है वो हर बढ़ जाही और ओमन भी हष्ट पुष्ट रही। तो ये तो बात रही पशुधन के। ओकर अलावा जैसे आप मन कोनो चिड़िया पाले हा या फिर चिराई चुगुन भर आप मन पानी डाला था पानी रखा था तो अपन कोशिश करा कि रोज दिन माटी के बर्तन में ओमन बर पानी भर के रखा सुबह भी पानी भर के रखा और ओमन के दाना ला थोड़कुन छाए वाले जगह में रखा ओमन के पानी ला जो है ओला बदलत रहा सुबह शाम दोनों टाइम ताकि ओमन चारा चुगे बर आए तो वो ठंडा ठंडा पानी ला पिए। और कोशिश करा कि अगर ओला आप मन पाले है या आप मन के घर में ओमन रहते तब पेड़ पौधा कना कोनो जगह बना देवा जहाँ ओमन आके रह सके दाना पानी खा पी के बढ़िया ले आराम से रह सके। ओकर अलावा अगर मनसे की बात करो तो हमन ला सबले ज़्यादा नुकसान होते हमन काम के बेरा ला देखतन और कोनो भी समय में निकल जातन तो आप मन ला ऐसा नहीं करना है थोड़कुन खुद के भी ध्यान रखना है। आप मन ला आम रस आम पना गन्ना के रस नींबू पानी बेल पना ये सब के सेवन जरूर करना है। दूध दही छाछ होगी दही होगी मट्ठा होगी पखाल होगी बोरे बासी ये सब के आप मन ला सेवन करना चाहिए। हरा सब्जी है फल ये सब खाना है। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड तैलीय पदार्थ ला आप मन ला खाए बर ले बचना चाहिए। हो सके तो नींबू पानी नारियल पानी या फिर ORS इलेक्ट्रॉल घोल ग्लूकोन डी ऐसे चीज़ के आप मन जो तरल पदार्थ है ओकर उपयोग आप मन कर सकत है जेकर ले आप मन हाइड्रेट रही है और आप मन के शरीर में पानी के जो कमी है ओहर बिल्कुल भी नहीं हुए ता आउ एकर अलावा जैसे आप मन निकला था कोनो काम में तो आप मन ला ध्यान देना है कि अपन चश्मा लगा लेवा हैंड ग्लव्स लगा लेवा और गमछा टावल जो भी है ओला ओढ़ के जावा ताकि धूप के जो पराबैंगनी किरण है ओकर आप मन डायरेक्ट संपर्क में नहीं आवा था आप मन के तबीयत खराब नहीं हुए आप मन लू लगे ले बच सका था तो ये तो होगी आप मन के देखभाल करेगी। अब हम बात कर वो ढेंचा लगाए और मृदा स्वास्थ्य ला कैसे बनाए तो संगवारी और ढेंचा एक ऐसे पौधा है जिला मन से अपन खेडोली में लगाते कोनो मन बीजों कर फसल उपज भर भी ओला लगाते और जैसे आप मन अगली फसल लेना चाहता ओकर उपज ला आप मन बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता और मैं आप मन चाहता कि रोग राई के समस्या नहीं हुए ओहर बहुत जल्दी तैयार हो जाए और बहुत अच्छे ले होकर ग्रोथ हो सके तो एकर बार आप मन ला कोनो भी फसल जैसे कि धान होगी या फिर आप मन गेहूँ लगाता ओकर पहली या फिर सब्जी भाजी जो भी आप मन जो भी पौधा के चुनाव करा था फसल के ओकर पहली आप मन ला ढेंचा लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खबर कि ढेंचा के फसल ला उगाकर आप मन माटी ला ऊंचा नहीं उठा सका था ओकर बेहद स्वास्थ्य और उपजाऊ बनाए के बढ़िया रास्ता खोल सका था। ढेंचा एक उत्कृष्ट हरी खाद हावे जो कि बहुत कम समय में बहुत अच्छा उपज देते और माटी के भौतिक रासायनिक और जैविक गुण में सुधार लाते। आप मन ढेंचा लगा हा तो ओकर जो बढ़वार रहते ओहर लगभग 5-6 फीट हो जाते ओकर बाद आप मन ओला माटी में चलवा सका था। अगर हमन बात कर वो ओकर फ़ायदा के बारे में तो कार्बनिक कार्बन जो होते ओला अगर लगा था आप मन तो ढेंचा में बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होते जो हर माटी के उत्पादकता ला बढ़ा देते और माटी के कार्बनिक प्रतिशत जो रहते ओला सुधार करते और जो कि आज के समय में अगर हमन बात करबो तो रसायन के वजह ले घटगी से। एकर अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये एक फलीदार पौधा होते जेकर वजह ले एकर जो जड़ होते इमें हवा ले नाइट्रोजन ल सोख के माटी में जमा करे जा सकते और अगली फसल बार हमन बात करबो तो पोषक तत्व के उपलब्धता जो रहते ओहर बहुत बाढ़ जाते। एकर अलावा माटी के जो संरचना है ओहर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाते एहर माटी के संरचना में सुधार करते पानी ला रोके के क्षमता ला बढ़ाते। क्षारीय भूमि अगर आप मन के हावे तो ढेंचा ओला बहुत ज़्यादा पुनर्जीवित कर सकते। आप मन ढेंचा ला रबी के कटाई के बाद गर्मी में अप्रैल मई में बो सका था एला आप मन ला जोतना है और फसल में जब बढ़िया ऊपर उठ जाए 5-6 फीट तक फिर आप मन हल चला के ला जोत सका था। फिर जोते के बाद अगर आप मन जब जोतदार या फिर ओकर बाद आप मन सड़े भर एला 7 या 10 दिन तक पानी डाल के छोड़ दिया तो और पानी में मिल के जो है पौधा ओहर सड़ के बढ़िया ले मिल जाए और फसल चक्र भर रसायन के कम उपयोग भर आप मन ढेंचा लगा सका था। एकर अलावा ढेंचा लगाए ले बढ़िया ले मल्चिंग हो जाते कंपोस्ट के आप मन ला उपयोग कम करना पड़ते और आने वाला समय में जुताई के काम भी आप मन ला थोड़कुन कम करना पड़ी। और अगर हमन माटी के बात करबो तो माटी में जब हरा घात पड़ते तो ओकर अगर हमन जो भी स्थिति के बात करबो तो ओकर विकास जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाते और ढेंचा कोनो भी जलवायु में लगाए जा सकते और एकर जो पैदावार है वह बहुत उत्तम होते इला आप मन रबी के फसल में खरीफ के फसल में दोनों समय में लगा सका था। इमें गर्मी और सर्दी के कोनो ऐसे अलग ले प्रभाव देखे पर नहीं मिले अंकुरण बढ़िया हो जाते और आप मन जैसे 8 डिग्री ले अगर नीचे जाही तभी आप मन ला एकर नुकसान होएला देखे पर पड़ी नहीं तो आप मन ला कोनो भी परेशानी नहीं हुए। और पंत ढेंचा जो होते ओला आप मन हरी खाद पर उपयोग कर सका था एकर जो वनस्पति विकास है एहर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़वार में होते। अगर हमन खाद के बात करबो या फिर उर्वरक के बात करबो तो 20 ले 25 किलोग्राम नाइट्रोजन 50 किलोग्राम फास्फोरस डाल के आप मन एकर जुताई कर सका था। सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े एकदम सूखा भुइयां अगर रहते तभी आप मन ला ए में सिंचाई करना पड़ते 4-5 सिंचाई के बाद ढेंचा के जो फसल है ओहर तैयार हो जाते। खेत में अगर हमन फसल ल पलटे के बात करबो त जब ओहर 5 ले 6 फीट के हो जाथे त रोटावेटर ले बढ़िया ले अपन ला जुताई करना है और फिर अपन माटी पलट के बढ़िया ले देखना है। फिर धीरे धीरे अगर 7 ले 10 दिन तक अगर अपन ओमें पानी पलट दिया तो ओहर का होही जो पौधा गले लगी ओहर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी गल जाही और ओकर बाद जो है फिर आपमन अगले ओहर थोड़कुन सूखे लगी फिर धीरे धीरे आपमन नमी बरकरार रही तभी आपमन अगले फसल के तैयारी कर सका था। तो संगवारी हो ये तो रहीस ढेंचा के फसल के बाद चला संगी हो समय होगी से आज के कृषक प्रश्न मंच के प्रश्न पूछेगी। तो संगवारी हो आज के कृषक प्रश्न मंच के प्रश्न हावे ढेंचा लगाए के कोनो फायदा बतावा। तो आप मन ला हमन ला एकर उत्तर ला लिख के ईमेल के माध्यम ले या फिर चिट्ठी के माध्यम ले भेज सका था। आप मन ला बताना हावे कि ढेंचा लगाए के का का फायदा हो सका थे। आप मन ईमेल के माध्यम ले या फिर चिट्ठी पत्री के माध्यम ले हमन ला एकर उत्तर लिख के जरूर भेजिया। चला संगवारियों सुनबो एक ठीक संदेश।
1: किसान भाई मन का आप मन रासायनिक उर्वरक के खर्चा ला कम करना चाहता तो आज ही अपनावा हरी खाद ढेंचा सनई लोबिया जैसे फसल ला उगावा और फूल आए के पहली खेत मा जोत देवा। यह माटी ला भरपूर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ देते जेकर ले बंजर जमीन मा उपजाऊपन बढ़ते कम लागत बेहतर पैदावार। अधिक जानकारी पर अपन लखठा के कृषि केंद्र ले संपर्क कराओ।
0: संगवारियों अभी हमन सुनत रहे संदेश। देखा संदेश के माध्यम ले आप मन ला कतकी ठीक जानकारी मिल जाते देखरे से तीर हमन बीच बीच में आप मन ला संदेश गला सुनात रहतन। अब हमन बात कर वो फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व के महत्व का होते। कोनो भी प्रकार के पोषक तत्व हावे चाहे वो सूक्ष्म है या फिर ओहर बड़ा है फसल बर ओहर बहुत ज़्यादा आवश्यक होते और ओकर महत्व जो है ओला फसल ला मिलत रहते। जैसे कि अगर हमन सूक्ष्म पोषक तत्व के बात करबो तो एमे आते जिंक बोरान आयरन तांबा जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते। एकर कम मात्रा होए के बावजूद एमन पैदावार गुणवत्ता रोग प्रतिरोधक क्षमता और चयापचय प्रतिक्रिया जो रहते उनमें एमन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। एमन नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ मिलकर संतुलन बनाते और फसल के बढ़िया ले विकास करते हैं जेकर ले माटी के स्वास्थ्य में सुधार होते और मानव और पशु के पोषक के जो भोजन है ओहर हमन ला मिल पाते। अगर हमन सूक्ष्म पोषक तत्व के कार्य के बात करबो तो सभी जो भी पोषक तत्व हावे ओकर अलग अलग महत्व होते। एमन हमन ला बोरान जैसे कि अगर बात करबो तो फूल आवे में हेल्प करते। एमर के जो महत्वपूर्ण भूमिका है ओहर हमार फसल में देखे बर मिल जाते। सूक्ष्म पोषक तत्व की वजह ले हमन ला कई ऐसी प्रतिकूल मौसम बीमारी ले लड़े बर हमन ला सहायता मिल जाते। एकर अलावा जैसे कि जिंक होगी इला अपन यूरिया के साथ उपयोग कर सका था बुरान ला अपन माटी के साथ छिड़काव करके लगा सका था। अगर उपयोग के बात करबो तो अपन बुआई के समय दानेदार उर्वरक के संग एकर छिड़काव कर सका था। अपन इला खड़ी फसल के कमी में तरल के रूप में भी डाल सका था। अगर हमन बुरान के बात करबो तो बुरान जो है ओहर पादप कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक कार्य ला बनाए रखते। बोरान के कमी ले का होते कि बहुत कुछ दाना दाना दिखेला लगते। अगर कॉपर के बात करबो तो कॉपर ले हमन ला विटामिन ए के उत्पादन बहुत ज़्यादा मिले लगते और एकर ले हमन ला फायदा भी होते। तो आप मन ला ध्यान देना है कि सूक्ष्म पोषक तत्व के जो कमी है ओला आप मन ला देख देख के पूर्ति करत रहना चाहिए। अगर हमन जस्ता के बात करबो तो जस्ता में एंजाइम बहुत ज़्यादा मिलते। जस्ता अगर नहीं मिले तो पत्ती के छिड़काव में इला मिलाए जाते और पौधा में ऑक्सीन के उत्पादन जो है एकर ले बहुत ज़्यादा ठीक हो जाते। बुरान के बात करबो तो स्टार्च के निर्माण बुरान के वजह ले होते। कार्बोहाइड्रेट के जो नियंत्रण है ओहर भी बुरान करते। पौधा में सरकरा और स्टार्च के संतुलन जो है ओहर बुरान ही करते। अगर हमन तांबा के बात करबो तो तांबा एक पादप एंजाइम है जो कि क्लोरोफिल के निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। जो पौधा के पत्ती में हरा रंग होते ओहर प्रकाश संश्लेषण पर बहुत महत्वपूर्ण है जेकर बर तांबा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हावे। एक तांबा के पोषक तत्व के वजह ले अमीनो एसिड के उत्पादन होते और ऊर्जा जो है ओहर बहुत ज़्यादा परिवर्तनकारी हो जाते। कार्बनिक अम्ल ला जोड़ के एहर कई और दूसर अम्ल बनाते जेकर ले प्रोटीन मिलते। लोहा के बात करबो तो क्लोरोफिल के विकास बर उत्पादन बर ये बहुत ज़्यादा गतिशील होते। एंजाइम के परिवहन प्रणाली पर यह सक्रिय होते और साइक्रोटोम विकसित करे में यह आवश्यक होते। मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम जो है ओहर पौधा ला नाइट्रेट नाइट्रोजन में अमीनो एसिड बनाए बर बहुत ज़्यादा मदद करते। एहर भी सरकरा के मात्रा ला नियंत्रण करते और ऊर्जा वाहक लियासिन के उत्पादन करते। नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर नोएडल बैक्टीरिया पर यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते। तो ये सब तो रही फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व के महत्व के बारे में। संगवारी हो आज के समय में सिर्फ किसान संगी संगवारी मन ही काम नहीं करे, आप मन के किसान संगी संगवारी के अलावा आजकल महिला वर्ग के मनसे मन भी काम कर रहे थे, ओमन भी रोजगार के साधन ला ढूंढ रहे थे। ओमन अगर बाहर नहीं जा सकत है तो ओमन घर इच में बैठ के कतको ठीक काम ला करते हैं और ये काम ला करके ओमन अपन आजीविका ला चलाते। ओमन भी महिला सशक्तिकरण के जो काम है ओमन जुड़त है और आगे बढ़ाते। तो यही क्रम में हमन गे रहे ग्राम टारपाली, जी हाँ हमार मुर्गी पालक दीदी मिले रही बबीता साहू, जेकर ले हमन जाने कि अंडा और मुर्गी ले कैसे हमन आय बढ़ा सकत हन, महिला मन कैसे भविष्य सजाए बर मुर्गी पालन अपना सकत है। तो चला ये जो बातचीत हुए रही हमार के ओला सुनबो और आप मन भी एकर ले जानी हा।
2: जय जोहार संगवारी हो, मैं नाम देव हमार आकाशवाणी परिवार के सार्थक प्रयास रहते कि हमार अपन आसपास के जगह में जानू हा के गांव शहर के दीदी भैया मन का काम बूता करते, हमार किसान संगवारी मन का काम करते, ओकरला जानन, ओमन ले बात करन, ओमन के काम बूता के बारे में जानन। तो इस क्रम में अब हमन आए हन रायगढ़ के आगू एक गाँव और हमार दीदी हमार संग खड़ीन है, ओमन पशुपालक है। चला ओमन ले जानबो कि ओमन अभी का पालन करते और कैसे अपन काम बूता ला सरियाते। राम राम दीदी।
3: राम राम।
2: तुम्हार का नाम है दीदी?
3: बबीता साहू।
2: अच्छा, और अभी के बखत बेरा में आप मन का काम बूता करा था दीदी?
3: बॉयलर मुर्गी पालन कर था।
2: अच्छा, मतलब अभी आप मन मुर्गी पालक हा। हाँ। कौन किस्म की अभी आप मन मुर्गी रखे हा?
3: बॉयलर मुर्गी को कहते हैं।
2: अच्छा अच्छा, बॉयलर मुर्गी रखे। तो अपन थोड़ा छोटे रूप में करा था कि बड़े रूप में करा था?
3: बड़े रूप में करता।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो दिन के वही छोटे ले बड़े करे ज्यादा दिक्कत होती।
2: अच्छा अच्छा,
3: हमेशा पैसा नहीं बचत हुई, ज्यादा पैसा फसा लगते है तो बड़े चला करे ला ना।
2: हाँ हाँ,
3: रोज दिन के ओर इनकम।
2: अच्छा, रोज दिन आप मन बेचता। तो आप मन जो पशु ला बेचता, मतलब मुर्गी ला आप मन बेच, या छोटे छोटे मुर्गी ला बेचता कि बड़े पूरा बड़े करके खाए इसके से तीर बेचता?
3: खाए के से।
2: अच्छा, तो एक मुर्गी ला बड़े हुए में कतका दिन लगा थो ही दीदी?
3: मैंने एक महीना में और एक किलो हो जाते और 15 दिन में 45 दिन में मतलब 2 किलो हो जाते।
2: तो आपन एक किलो के होने के बाद में ओला बेच ले शुरू कर देता। तो आपन एला अंडा ले लाने रहता कि छोटे छोटे मुर्गी ला बिसा के लान था?
3: छोटे मुर्गी चूजा ले हुई भी होते।
2: अच्छा अच्छा,
3: और रोज बिक्री बार बड़े मुर्गी ला मंगा था गाड़ी में।
2: अच्छा, गाड़ी में। तो कहाँ ले आप मन मुर्गी के चूजा या बड़े मुर्गी ला मंगा था?
3: रायगढ़ ले।
2: अच्छा, और ये जो चूजा भी रहते ओहर भी आप मन के रायगढ़?
3: रायगढ़।
2: तो चूजा ला बड़े आप कहा आप मन के फार्म बनाए हैं वहाँ करता की घर के पाछू में करता?
3: बड़े फार्म में करता।
2: अच्छा,
3: हाँ। घर के पाछू चिल्हर वाला बेचता।
2: अच्छा, चिल्हर वाला ला घर में बाड़ी में रखे है और बड़ा फार्म जो है आप मन के ओहर खेत डोली को?
3: हाँ, और ज्यादा मैंने 1.5 महीना तक ले लगते।
2: अच्छा, ओला 1.5 महीना तक आप मन ला रखे ला पड़ते।
3: हाँ।
2: और बेचे बार जैसे बता था आप मन चिल्हर में रोज दिन बेचा, तो यहाँ घरे चले बेचा की कोनो में लेके जाता?
3: नहीं नहीं, घरे चले बेचता,
2: गोटा में सब ले जाते हैं।
3: हाँ।
2: ये तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब आप मन ला व्यापार करे बार गाँव ले आगू कोनो में जाए के जरूरत है?
3: नहीं, घरे चला सामान आते घरे चले बिक्री हो।
2: अच्छा, मतलब बिक्री बार ओमन खुदे चा जाते जो भी व्यापारी हावे। अच्छा, तो सबले पहले ये जानबो की चूजा ला बड़े करे बार अपन का खावा था, कैसे ओमा पानी वानी देता?
3: दाना डालथन, छोटे चूजा मन ला छोटे के चीज दाना आते।
2: हाँ।
3: और बड़े धीरे धीरे करके बड़े होते तो दाना हर बदलत जाते।
2: अच्छा, मतलब ओमन के उम्र महीना हिसाब ले? हाँ,
3: दाना चेंज होती।
2: अच्छा। हाँ। और जैसे कि दाना में आप मन जो पैकेट वाला दाना आते ओला खावा था कि घर के भी कुछ चीज ला?
3: नहीं, घर के नहीं, खाली पैकेट वाला चीज।
2: अच्छा, मतलब सिर्फ दाना खाते और ओमन पानी पीते?
3: हाँ, पानी में दवाई डालता और पानी साफ करे के रेगुलर डाले वाला।
2: अच्छा, तो आप मन ये जो रोज दिन एमन के जो फार्म है ओकर सफाई करता?
3: रोज दिन नहीं करा, मैंने पानी डब्बा ला खाली साफ करता, पानी के मन के सफाई रहते जरूरी।
2: अच्छा,
3: और भूसा एक घाट मुर्गी हट जाते तो एक घाट साफ करे वाला।
2: अच्छा अच्छा, और एमन जैसे एक दिन में एक घंटा ना डाले ला पड़ते की दूध दी बार इतनी बार डालता?
3: दो बार डाले वाला लगते।
2: अच्छा, सुबह में और शाम के?
3: हाँ, और गर्मी महीना भर आने वही करके वातावरण लड़ा के बर लगते।
2: ठंडी में गर्मी में अभी आप मन करे हा कि वातावरण ला अनुकूल करे, तो आप मन का चला था कार लगा था वहाँ फार्म में?
3: नेट टंग था तरह तरह में साइड में, ऊपर में पानी के साबर वही करके लगा था ना, पानी हमेशा कूलर भी लगते।
2: अच्छा अच्छा, ताकि वो मन ला वहाँ ठंडा लगे। और जैसे ठंड में अगर बात करबो तो ठंड में कैसे होकर बचाव कर?
3: लाइट की संख्या बढ़ा हुआ लगती भीतरी में।
2: अच्छा, ताकि गर्मी हो जाए।
3: पॉलिथीन के वही पूरा सील करे वाला।
2: अच्छा, मतलब पूरा पैक कर देवा ताकि ठंडा हवा
3: बाहर के हवा
2: लाने पड़े। और अगर बरसा के दिन, तो बरसा के दिन में भी कोनो काम करेला पड़ते कर बराव?
3: बरसा में वो पन्नी झिल्ली सही
2: आती है, लगती पानी नहीं
3: अंदर, पानी जाए तो चूजा मन भीग जाए तो सर्दी बुखार सब होती है, परेशानी होती है, भूसा भी गीला हो जाए नीचे हर, तो बीमारी फैलते है मन।
2: अच्छा, मतलब वो मन जमीन में नहीं रहे, भूसा के ऊपर आप मन भूसा के पूरा परत बिछा देता ऊपर ऊपर ही मन
3: भूसा में रहते।
2: अच्छा, तो रात जैसे दिन में तो बन जाते, रात में आओ कुछ फार्म ला बंद करे बार लगते की?
3: हाँ, सील करे बार लगते रात के ज्यादा वातावरण होते, दिन का दिन में खुला करे वाला लगते ताकि अंदर के हवा हर सब साफ हो करके, गैस नहीं बने अंदर में।
2: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: और रात के फिर क्लोज करे वाला लगते, बंद करे वाला।
2: अच्छा अच्छा, और ये जो दाना है आप मन, तो एमन आप मन हिसाब ले डालता कि एक दाना हर कितनी देर में खत्म हो जात हो मन के?
3: मैंने उमन के बढ़ाई हिसाब से उम्र हिसाब से डाले वाला लगते दाना।
2: अच्छा अच्छा, मतलब छोटे रही तो छोटे रही तो कम दाना खाते हैं, और बड़े रहते तो
3: उम्र हिसाब से डाले वाले लगते।
2: अच्छा अच्छा, और दाना ला कहाँ ले रहा था दीदी आप मन?
3: रायगढ़ ठिले जाकर ठिले चूजा मंगा था।
2: अच्छा अच्छा, तो खाए पिए और पानी की तब बात होगी। और जैसे कि रोग राई के मन से ला समस्या होते, पशु मन ला भी समस्या होते, तो आप मन जैसे कि मुर्गी में कोनो समस्या आते, आप मन कैसे पता पाता कि एला कुछ दिक्कत समस्या होते करके?
3: मैंने ज्यादा दिन तक ले पालन करी तो वाला समझ में आ जाती कि कुछ ओहर झुमरा थे कि खाना नहीं खा थे कि ओहर लापच हो थे कि उल्टी करा थे कुछ भी वाला। हाँ, देखा तो पता चल जाती
4: है रोग।
2: तो जैसे कोनो रोग समस्या होते तो आप मन का करता फिर ओकर उपाय बर?
3: ओला फाड़ के देखते पहले का समस्या पानी भर पेट में कुछ समझ में नहीं आए, रायगढ़ के डॉक्टर करा।
2: अच्छा, रायगढ़ के डॉक्टर है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि मतलब आप मन जागरूक हो, अपन डॉक्टर करा जाता कुछ भी अपन ले नहीं करा। अच्छा, और मुर्गी पालन जैसे अभी आप मन करा था, आप मन तो दीदी है घर के संग की मन के संग में काम बूता कर, तो आप मन ला एक फायदा होते की नहीं होते? मुर्गी पालन के विषय में अतका बढ़िया सुखर जानकारी दे है दीदी, तेकर बर अब्बड़ कन धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार।
3: जय जोहार।
0: तभी हमन जानत रहे कि कैसे आप मन मुर्गी पालन कर सका था, और मुर्गी पालन करके भी आप मन पैसा कमा सका था। संगवारी हो, चल अब थोकुन बात करबो हमन जैविक कीटनाशक के बारे में। तो अभी जैसे आप मन देखा था कि पर्यावरण में आनी बानी के प्रदूषण होते, तो हमन ला ओकर ले बचना और अपन पर्यावरण ला बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार आप मन ला का करना है, तो एक बार आप मन ला जहरीला जो कीटनाशक है ओकर उपयोग ला आप मन ला कम करना है, और आप मन ला फिर ले जैविक कीटनाशक के उपयोग करना है, जैविक तरीका ले खेती करना है, पेड़ पौधा के रोपण करना है, ताकि हमारे पर्यावरण में जो फैला थे प्रदूषण ओहर कम हो सके, और आने वाने के बीमारी ले हमन पशुधन मन और हमारे पर्यावरण जो है ओहर बच सके। संगवारी हो, हमन एकर बारे में और गुड बात करबो, मगर ओकर ले पहली चला सुनबो एक टी लोकगीत।

संगवारी हो अभी हमन गाना सुनत रहें लोकगीत संगवारी रे। एमा स्वर देहे रहें गंगादास मानिकपुरी अनीता मानिकपुरी। तो हमन लोकगीत सुने के पहले बात करत रहें कि जैव कीटनाशक के बहुत कन फायदा होते, जैसे कि यह पर्यावरण ला सुरक्षित रखते, माटी पानी हवा में प्रदूषण ला नहीं फैलाए, मित्र कीट के भी सुरक्षा हो जाते, ओकर ले परपरागण के जो क्षमता है ओहर भी बढ़ जाते, कीट मन ला नुकसान नहीं होए, हमार मित्र कीट मन के जो संख्या है ओमा बढ़ोतरी हो जाते, जेकर ले पारिस्थितिकी संतुलन जो रहते ओहर बने रहते, अवशेष रहित रहते, फसल और फल के हानिकारक रसायन या फिर अवशेष एमन में छूटे नहीं, जेकर ले स्वास्थ्य पर उत्पाद जो हमन ला मिलते ओहर बहुत स्वास्थ्य पर हानिकारक नहीं हो और फायदा साबित होते, कीट में प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़े, खबर की अगर बार बार आप मन ये कीटनाशक के उपयोग करिए तो प्रतिरोधक क्षमता जो है और विकसित नहीं हुए, और लागत के तो बात ही मत करा, खबर की लागत में अतकी ज़्यादा कमी आ जाएगी कि आप मन के फायदा के प्रतिशत जो हावे ओहर बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप मन जैविक कीटनाशक के उपयोग करना चाहा था तो बहुत कन जैविक कीटनाशक है जेकर आप मन उपयोग कर सका था, एक बार आप मन माटी के गोबर के नीम खाद के सबके उपयोग ले एकर खाद ला तैयार कर सका था और एला उपयोग कर सका था। जैविक कीटनाशक के उपयोग ले जो कीट मन होते ओला कोनो भी प्रभाव नहीं पड़े, जबकि रासायनिक कीटनाशक के अगर हमन प्रयोग करते तो कीट मन ला बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते। एकर अलावा जैविक कीटनाशक जो है ओहर मनुष्य पशु पर्यावरण कोनो ला भी हानि नहीं पहुँचाए, जैसे कि अगर आप मन ट्राइकोडर्मा के उपयोग करता तो ट्राइकोडर्मा जो है और

0: फफूंदीनाशक घुलनशील जैविक रथ है। यह बहुत सारे प्रकार के फसल ला सब्जी ला जड़ सरण तना सड़न डैम्पिंग आउट झुलसा ये सब फफूंदजन जो रोग रथे ओमें मन फायदा पहुँचाते। गेहूं धान दलहनी फसल गन्ना कपास सब में भी आप मन एकर उपयोग कर सकते हैं। एकर अलावा बीजोपचार बार भी ट्राइकोडर्मा के उपयोग करते हैं जेकर ले फसल में वृद्धि हो जाते हैं। ट्राइकोडर्मा ला आप मन बीज शोधन के रूप में भी उपयोग कर सका था, कंद या नर्सरी में भी उपयोग कर सका था, डायरेक्टली आप मन भूमि में भी एला प्रति हेक्टेयर के हिसाब ले छिड़क सका था। बहुवर्षीय पेड़ के जड़ में अपन चारों तरफ एला छड़ तक सका था। खड़ी फसल में भी आपन फफूंद नियंत्रक बर एकर उपयोग कर सका था। स्यूडोमोनास फ्लोरोसिरिसेंसिस के भी आपन उपयोग फल सब्जी गन्ना के जड़ सड़न तना सड़न बर उपयोग कर सका था। एकर अलावा बैरिसलस यूरिन जेयथिसिम जेला बीटी गथन ओकर भी आपन उपयोग कर सका था। ये सब जैविक कीटनाशी एकर उपयोग खड़ी फसल बर बहुत बढ़िया पानी में घोल के करे जाते। एकर अलावा नीम के जो प्रयोग है जिला निम्बोली का थे ओकर बीज ला कूट के बढ़िया पाउडर बना के अपन पानी में भिगो के ओला छान के प्रति हेक्टेयर के हिसाब ले 350 लीटर पानी में घोल के अपन ओकर उपयोग कर सका था। नीम के तेल के अपन उपयोग कर सका था। तो ऐसे अपन आने वानी के जो जैविक कीटनाशक है ओकर उपयोग करा। तो संगवारी हो चला बेरा होगी से संदेश सुने के।
1: QR कोड स्कैन करो 5000 का कैशबैक पाओ। वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: माटी के सांस लौटा ही हरी खाद, अंधाधुंध रासायनिक खाद ले थक चुके हैं जमीन, इला करना है फिर ले जिंदा। हरी खाद माटी के संरचना सुधारते, नमी ला बनाए रखते, पैदावार ला 20% तक बढ़ाते, सस्ता सरल और टिकाऊ खेती के आधार हरी खाद। आज ही शुरुआत करो हरी खाद पर, बीज मा ढेचा सनई मूंग जैसे बीज के उपयोग करो और धान के फसल लेहे के पहली एकर बुआई जरूर करो। ज्यादा जानकारी पर अपन के लखठा के स्थानीय कृषि कार्यालय ले संपर्क करो।
1: संदेश के पहले आप मन सुनत रह सुग्घर कन लोकगीत, त संगवारी हो मोर पिया गे परदेश, एमा स्वर दे रहिन सपना सिंह। आउ चला भी अमन बात करबो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, अनेक रोगों के कारक उच्च रक्तचाप, त संगवारी हो आज हावी 17 मई जिला हमन विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में हर बच्चर मनाथन। रक्तचाप जिला हमन हाइपरटेंशन कथन, एकर प्रति जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। एकर समय ले रोकथाम पहचान और नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी है, काबर की एला हमन मौन हत्यारा साइलेंट किलर भी कथन, काबर की ये हर कोनो भी विशेष लक्षण ला बताए बगैर शरीर के अंगला नुकसान पहुंचाते। हर बछर एला मनाए के एक थीम एक विषय रखे जाते। 2026 मतलब ए बछर के एक थीम हावे उच्च रक्तचाप ला नियंत्रित करा। एक उद्देश्य हावे व्यक्तिगत सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली के स्तर में मनसे मन ला प्रोत्साहित करना, नियमित रूप ले बीपी के जांच करवाना और समय समय में उपचार करवाना, स्ट्रोक हृदय रोग किडनी के विफलता जिसे बीमारी के बारे में लोगों ला समझाना। एकर ले कई रोग हो जाते जैसे कि हृदय रोग, दिल के दौरा पड़े ले हार्ट फेलियर के जोखिम बढ़ जाते, रक्तवाहिका के दबाव बढ़ते और ओहर मस्तिष्क में जाके स्ट्रोक के खतरा ला बढ़ाते। उच्च बीपी ले गुर्दा के धमनी में नुकसान पहुँचते जेकर ले किडनी फेल हो जाते। आँख की रोशनी जो है ओहर नस में का होते ओहर धीरे धीरे बंद होए लगते और अंधापन के भी कारण बन सकते। धमनी के जो सख्त होना है, धमनी में सूजन संकुचन के कारण रक्त के प्रवाह जो रहते ओहर रुक जाते। ये सब जो हावे एहर उच्च रक्तचाप की वजह से होते। उच्च रक्तचाप के बहुत ज़्यादा कारण है जैसे कि अधिक नमक के सेवन करना, बहुत ज़्यादा तला खाना, वसा युक्त भोजन के ग्रहण करना, एकर अलावा व्यायाम ना करना, आलसी जीवन शैली के होना, अत्यधिक मानसिक तनाव, शराब के सेवन, धूम्रपान और अगर अनुवांशिकता परिवार में कनो मनसे लगर उच्च रक्तचाप होते तो एक जोखिम के खतरा जो है और ज़्यादा बढ़ जाते। एक रोकथाम या नियंत्रण कैसे करना है, तसंगवारी हो 18 बछर या फिर ओकर ले ज़्यादा बछर के जोन भी व्यक्ति है, कम से कम महीना में 2-3 महीना में आप मनला अपन रक्तचाप के जांच करवात रहना चाहिए। आप मनला नमक के सेवन कम करना हावे, आप मनला कोशिश करना है कि सोडियम के जो सेवन है ओला कम कर देवा, कम से कम एक दिन में 5 ग्राम ले कम। फल और सब्जी के सेवन बहुत ज़्यादा करा, रोज रोज आप मनला शारीरिक व्यायाम करना है, कोनो भी स्थिति में चाहे आप मन चला था, योग करा था, ध्यान करा था, ऐसे काम आप मनला जरूर करना हावे। आप मनला धूम्रपान और शराब ले बहुत ज़्यादा बचना हावे, काबर कि यह बीपी ला बहुत ज़्यादा बढ़ा देते। तो ये तब बात रही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की। एकर अलावा चला भी हम सुनबो एक ठीक संदेश।

0: संगवारी अभी हम सुनत रहें एक ठीक सुघर कन लोकगीत जमा स्वर देह रही ममता चंद्राकर आऊ मिथिलेशा हो संगवारी हो आज हावे विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस जिला WTISD भी कथे हमन हर बछर 17 मई के एला मनाथन। ये दिन 17 मई 1865 के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के स्थापना के याद दिलाते हमन ला और डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम ने समाज में सुधार और डिजिटल डिवाइड जिला हमन तकनीकी अंतर कथन उला कम करे बर जागरूकता बर बढ़ावा देते। एला मनाए के बहुत कन उद्देश्य हावे जेमें एक हावे इंटरनेट और सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT के लाभ के बारे में बताना और मनसे ला जागरूक करना। स्थापना के अगर हमन बात करबो तो 1959 से ये हर मनाए जाते जिला बाद में 2006 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिले से हर बछर एला अलग अलग थीम दे के मनाए जाते। ये दिवस ला मनाए के बहुत ज़्यादा महत्व हावे संचार की तकनीक हमार जीवन ला कैसे आसान बना सकते और कैसे हमन विकास की गति ला अपन जीवन में देख सकत हन ये दिन हमन ला दिखाते। अगर हमन बात करबो संचार के तब विश्व दूर संचार और सूचना के बिना हमार जीवन अधूरा हवे काबर कि हमन आजकल जीवन में अतकी डिजिटल हो गए हन चाहे वो फ़ोन में बात करना हो दूर के जानकारी प्राप्त करना हो कौन विषय में का परेशानी हो थे का योजना थे सब के बारे में हमन ला विश्व दूर संचार और सूचना के बारे में हमन ला मन से ला जागरूक करे बर सरकार हर रेडियो हर सब कोतीले हमन ला सहायता करत है। तो ये तो रही विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस के बारे में चला अब हमन सुनबो एक टिक और संदेश।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल। वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
3: हर लेन देन अब है आसान।
0: तो संगवारियों अभी आप मन सुनत रह संदेश और चला अब हमन बात करबो कि फसल अवशेष के प्रबंधन ओकर विकल्प ला आप मन ला कैसे अपनाना हावे और फसल के कटाई के बाद आप मन ला खेत डोली ला जलाना नहीं है फसल अवशेष ला जलाना नहीं है एकर ले पर्यावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होते जेकर नुकसान सिर्फ मनसे ला नहीं सब ला उठाए ला पड़ते। पराली जिला हमन फसल अवशेष कथन ओला जलाए के जगह हमन ला और दूसर उपयोग करना है जैसे कि प्रबंधन करना है ओकर जेकर ले माटी के उर्वरता बढ़े पर्यावरण ला सुरक्षित बनाए रखे जा सके एकर बार बहुत कन मशीन मिला थे ओकर आपन उपयोग कर सका था। इन सीटू खेत के अंदर आपन हैप्पी सीडर के उपयोग कर सका था एहर पराली के अगले फसल के बुआई कर देते और जेकर ले अवशेष खेत में ही सड़ के खाद बन जाते सुपर SMS जिला मल्चर भी कहते। कटाई के तुरंत बाद पराली जो है वाला छोटे छोटे टुकड़ा में काट के मिट्टी में मिला दिए जाते और जो हर जैविक खाद बन जाते और हर ह्यूमस के मात्रा ला बहुत ज़्यादा बढ़ाते थे। पूजा डिकम्पोजर एहर एक जैविक घोल होते जे लग कर छिड़काव पराली में करे जाते और जेकर ले ये होते कि 20 ले 25 दिन में ही खेत में ये हर सड़ जाते और ओहर खाद में तब्दील हो जाते। बायोगैस या फिर बायोमास बायोगैस प्लांट अगर आप मन अपन घर में या खेत डोली के आसपास में लगाना चाहता या तो बायोमास तक फसल अवशेष के उपयोग करके आप मन एकर ले ईंधन के भी उपयोग कर सका था और ईंधन के निर्माण कर सका था जेहर बहुत ज़्यादा पर्यावरणीय विषय में बहुत सफलता हासिल करत हावे। फसल अवशेष जलाए ले बहुत का नुकसान होते जैसे कि पोषक तत्व के विनाश हो जाते नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और सल्फर जैसे पोषक तत्व जो हावे वो हर पूरा नष्ट हो जाते। माटी के गुणवत्ता में कमी आते अत्यधिक गर्मी ले माटी फटे लगते मित्र कीट और सूक्ष्म जीव जो है ओहर जल के मर जाते। वायु प्रदूषण होते धुआं ले स्मोक पैदा होते जो कि मानव और सब पर बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य हानिकारक होते। अगर हमन अनुदान के बात करबो तो सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एकर मशीन खरीदे में हमन ला 50 प्रतिशत तक के अनुदान राशि भी देते। अब एकर अलावा अगर हमन बात करबो तो काकर काकर फसल के कौन कौन हिस्सा के उपयोग होते तो देखा था, धान के अनाज हो उपयोग हुई, फिर पैरा और भूसा के अलग उपयोग कर सका था, अरहर के दाल होगी फिर डंठल या पत्ती के उपयोग कर सका था। ये जो फसल अवशेष है एकर ले अपन का कर सका था, मिंजाई के बाद में एला माटी में पलटे पर या फिर मल्चिंग भी आप मन उपयोग कर सका था। इन सीटू वो होते कि जहाँ पर फसल के उत्पादन हो से उस जगह में आपमन एकर उपयोग करता, और एक्स सीटू वो होते जिला आपमन दूर दराज के जगह में यूज करता, और माटी में मिला दे ले आपमन जो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव हावे ओहर ओकर मात्रा हर बढ़ जाते था, आप मन ला ओकर उपयोग करना चाहिए। एकर अलावा आप मन कंपोस्ट खाद, मशरूम उत्पादन, मल्चिंग, ईटा भट्टा, लुगदी के जो इंडस्ट्री होते ई में आप मन एला दे के बढ़िया ले पैसा कमा सका था। माटी में मिलाए ले सूक्ष्म जीव बढ़ जाही और 500 अरब तक के टन अवशेष के बढ़िया उत्पादन में उपयोग हो सका थे। तो आप मन माटी में मिलाए बर डिस्क प्लाउ, तवादर हल, मल्चर, रोटरी टीलर ये ओकर उपयोग कर सका था। बीज बुआई बर जीलो टील, ड्रिप, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर के उपयोग कर सका था। हेरेक, हार्वेस्टर ला आप मन एकर अलावा उपयोग कर सका था। तो संगवारी हो घड़ी के काटा ला देखत हुए हम ला अब जाए के तबेरा होगी से, तो सबो संगी संगवारी मन ला स्वप्निल के जय जोहार।

किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:20 हुए हैं। वक्त हो चला है गैर फिल्मी गीत का। साज भट्ट की आवाज़ में सुनिए इस गाने को, जिसे लिखा है युंगवीर ने, धुन बनाई है मनदीप पंघाल ने।

पलक मुच्छल उत्कर्ष शर्मा को आप सुन रहे थे इस गाने में, जिसे लिखा था सतीश त्रिपाठी ने, धुन बनाई थी सतीश त्रिपाठी ने ही। इसके साथ ही गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र को। 8:30 हुए हैं, सुनिए फिल्म संगीत। लता मंगेशकर को सुनिए तुम्हारे लिए फिल्म के गाने में, जिसे लिखा है नक्शलियाल पुरी ने, धुन बनाई है जयदेव ने।

0: आकाशवाणी F90।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लता प्रधान है। मैं खैरागढ़ की राजनांदगांव जिले से हूँ। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी को 90 वर्ष पूर्ण होने की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि हम सब मिलजुल कर इस यात्रा में आगे बढ़े, अनंत वर्षों तक कार्य करते रहे। आकाशवाणी तब से हमारे साथ है जब बहुत कम सीमित संसाधन हुआ करते थे। एकमात्र सहारा रेडियो हुआ करता था, जो कि पूरे देश दुनिया की जानकारी और रोजमर्रा में उपयोग होने वाली चीज़ों को जान पाते थे। बचपन में याद है हमें, हम मनोरंजक बॉलीवुड के गाने सुनने के लिए, चुटकुले कविताएं सुनने के लिए कितने उत्सुक हुआ करते थे, जो रेडियो के माध्यम से ही हमें सुनने को मिलता था। इसी प्रकार हमें नई नई जानकारियां और अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: संदेश से पहले आप सुन रहे थे तुम्हारी कसम फिल्म के गाने को मुकेश की आवाज में राजेश रोशन ने धुन बनाई थी, आनंद बख्शी ने गीत लिखा था। तकदीर फिल्म के गीत को सुने लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

0: लता मंगेशकर और साथियों के गाए गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि की 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में

0: डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
3: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
4: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
3: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडली नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबुधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबुधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वी ए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म देवा से। आवाज़ें मीका सिंह, विशाल मिश्रा और ज्योतिका टंगरी की थी। गीत के बोल राजेश शेखर के और संगीत विशाल मिश्रा का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: हॉरोस्कोप।
1: तुम्हें याद करते करते
0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म बैंग बैंग से, आवाजें बेनी दयाल और नीति मोहन की, गीत के बोल अन्विता दत्त और कुमार के, और संगीत विशाल और शेखर का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोताओं, एक गीत आपने सुना फिल्म युद्धा से, आवाज़ें विशाल मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बा नहीं होती।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: बेहतर हो।
1: ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार, जी हाँ ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

1980 का दौर होगा, जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की समझ में आ जाए।

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट होटलों में गूंजने लगी।

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन

गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उदास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उदास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए। कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

अब बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

ये दिल लगी नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उधास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में K.L. सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादाभाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

0: आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्री का।
1: FM 107 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। मन्ना डे महेंद्र कपूर और श्यामा चित्तर की आवाजों में सुनिए शोर फिल्म के इस गाने को। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, इंद्रजीत सिंह तुलसी ने गीत को लिखा है।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक, मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी

0: और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका 2 स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका 2 स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था, जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
0: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

संध्या से पहले आप सुन रहे थे किशोर कुमार साधना सरगम की आवाजों में रुक्षत फिल्म के गाने को कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सजाया था। अनजान के बोल थे कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं रूप तेरा मस्ताना। फिल्म के इस नगमे को लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की युगल आवाजों में असद भोपाली ने गीत को लिखा है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक, मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें।

0: आपको याद सब है जरा जरा,
1: मुझे याद सब है जरा जरा।
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
0: सुरीली संदली।
3: लता मंगेशकर महेंद्र कपूर के गाए गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। कार्यक्रम सूर्यामिनी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं VG जोग का वायलिन पर बजाया राग श्याम कल्याण। तबले पर संगत कर रहे हैं श्यामल बोस।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honour that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honour for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defence, critical minerals and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defense, sustainability and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Centre at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi said India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatt in a single day. In a conversation with a private English news daily, Mr. Joshi said nearly 33% of the power demand met through renewable energy sources. He said India's power infrastructure has become stronger, more resilient and future ready. The minister added that this transformation reflects the rapid expansion of energy capacity, grid strengthening and the growing contribution of clean energy in powering country's growth journey. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today launched various development projects worth approximately 100 crore rupees in Dwarka Assembly constituency of National Capital. Addressing the gathering, the Chief Minister said that after completion of these projects, there will be significant improvement in problems such as water logging, damaged roads, sewer overflow and power supply in the area. Delhi Police has issued a memorandum regarding rationalization of government vehicle usage in its offices and units and measures for reduction of fuel consumption. The memorandum has been issued by the Office of Police Commissioner in view of the prevailing international situation and Prime Minister Narendra Modi's appeal for austerity measures and reduction in fuel consumption. In IPL cricket, Rajasthan Royals have set a target of 194 runs for Delhi Capitals in Delhi.